मीडियम वीप 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 31वीं तिथि। तदनुसार 21 जून सन 2026 सुबह के 5:59 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। प्रातःकालीन सभा में आप सभी का स्वागत है।

0: आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर

केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना के आरंभ में ध्यान करते हैं मां भारती का, हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो, अज्ञान की निशा में दुख से भरी दिशा में संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो।

परमात्मा की कृपा सभी पर बरसती है, लेकिन हम सभी अपने अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हमें सत्कर्म करके इस जीवन को सार्थक करना है।

मनुष्य रूपी जीवन बड़ा अनमोल है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये काया हमें प्राप्त होती है। इस शरीर को परमार्थ के कार्यों में लगाकर हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं।

यही परमार्थ कार्य हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा, नई तरंग, नई स्फूर्ति लेकर हमें आनंदित करते हैं, प्रफुल्लित करते हैं।

जिस प्रकार जीने के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन में भजन की भी आवश्यकता है। भजन हमारे मन को निर्मल बनाता है, हमें परमात्मा से जोड़ता है।

जी माता रानी की आरती के साथ ही आज की वंदना संपन्न हुई। इसमें आज आपने समूह स्वर में देशगान, जगजीत सिंह से भक्ति रचना, मां की आराधना ऋचा शर्मा के स्वर में, नरेंद्र चंचल के स्वर में देवी भजन और कार्यक्रम के अंत में तुलसी माता रानी की आरती महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में सुनी। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। श्रोताओं, हम आपको बता दें

दिन में 11:40 पर भोपाल से हम रैली करेंगे। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर का 36वां दीक्षांत समारोह का सीधा प्रसारण। सुबह 7:30 पर भोपाल से ही हम रैली करेंगे। जबलपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। सुबह 6:35 पर आप सुनेंगे खेती किसानी कार्यक्रम। 6:40 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार होंगे सुरेश वाडकर। संगीत संयोजन होगा सतीश भाटिया का। चिंतन का प्रसारण होगा सुबह 6:50 पर। सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे हिंदी महक के अंतर्गत वार्ता योग का महत्व। वार्ताकार होंगे जगदीश प्रसाद भट्ट। एक बार हम आपको पुनः बता दें, सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे भोपाल से रैली कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में जबलपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण।

दिन में एक बजे सुनिएगा भोपाल से रेले कार्यक्रम महिला सभा। भोपाल से ही हम रिले करेंगे 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम। 1:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। 2:30 पर भोपाल से ही रिले करेंगे बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा। इसमें बच्चे सुनेंगे नन्हे अंकुर, आर्या खरे को और रोचक जानकारियां।

शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा। शाम 5:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। संध्या 6:00 आप सुनेंगे भजन संध्या, कलाकार होंगे शर्मा बंधु। शाम 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में कलाकार होंगी विमला देवी परिहार। संध्या 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे धारावाहिक चिट्ठियां देवर भौजाई की, वाचन प्रीति प्रत्येकरा, प्रस्तुति होगी शंभुदया लहरवार की। इसके अलावा सुनिए वार्ता ग्रामीण विकास में युवाओं की भूमिका, वार्ताकार होंगे शरद कुमार रेखवार और आज की सीख का विषय होगा जोड़ी तो ऊपर बारो बनाऊत है। रात्रि 8:00 सुनिए फिल्म संगीत। रात 9:30 पर दिल्ली से अमरेली करेंगे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 10:00 आप सुनेंगे मन भावन कार्यक्रम। श्रोताओ, हम आपको एक बार पुनः बता दें, सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में जबलपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण।

0: कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है खेती किसानी कार्यक्रम।
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज के परिवेश में प्राकृतिक संसाधनों का कृषि में महत्व के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कृषि मानव जीवन की प्राचीन संस्कृति है। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, कृषि भी उन्नति की ओर आगे बढ़ती गई। और आज हम खेती के बारे में कुछ ऐसे भी छुपे हुए तथ्यों के बारे में बात करेंगे जिसका के सीधा कृषि की उपज पर प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में किसान भाई यही सोचते हैं कि कृषि में उपज सिर्फ रासायनों के ऊपर टिकी हुई है, जैसे कि रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक ही कृषि की उपज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ हद तक तो इनका उपयोग कृषि में लाभ दे सकता है, लेकिन टिकाऊ ढंग से नहीं। अच्छा, इन रसायनों के अधिक उपयोग से वर्तमान में खेती में अनेक समस्याएं भी पैदा हो रही हैं, जैसे कि लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या घट जाती है, जिसका प्रभाव सीधा मृदा स्वास्थ्य पर पड़ता है और पैदावार भी बुरी तरह से अनिश्चित समय के लिए प्रभावित होती है, और जिसका समाधान हम प्रकृति से बाहर खोजते हैं, जबकि कृषि का पूरा दामोदार प्रकृति के वैभव पर निर्भर करता है। यदि कोई किसान कम उपज को लेकर के समस्या बताता है तो यकीन मानिए कि उसका समाधान भी जमीन के अंदर छुपा हुआ है। किसान भाइयों को इसका विश्लेषण थोड़ा प्रकृति को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। और किसान जब जमीन में कोई फसल बोता है तो उसे पालने और बढ़ाने का काम जमीन में मौजूद अनेक प्रकार के सूक्ष्म जैव, जैसे कृषि उपयोगी जीवाणु हुए, कवक हुए, यही पौधे को सींचने का काम करते हैं, तथा जलवायु कृषि उपज बढ़ाने में साथ भी देती है। और जब हम किसान भाई मिट्टी की उर्वरता को तथा प्राकृतिक जलवायु को खराब कर देते हैं तो खेती की अनेक समस्याएं और भी जटिल होती चली जाती। हम बात करते हैं प्राचीन काल में, इससे पूर्व में प्राकृतिक संसाधन ही कृषि उत्पादन के लिए पर्याप्त थे। जैसे जैसे हमारा रहन सहन बदलता गया, हमारी कृषि की उपज भी बढ़ती गई, जो कि किसी ना किसी रूप में जैव विविधता से जुड़ी रहती थी, जिसमें सूक्ष्म जीव जो फसलों में रोग नहीं लगने देते थे और साथ में पौधों में पर्याप्त पोषक तत्व भी उपलब्ध कराते थे। केचुआ जमीन को भुरभुरा बनाता था और उसमें हवा के लिए छिद्र, मिट्टी में छिद्र के रूप में हवा भी पास होती थी और मिट्टी को बहुत अच्छा बनाता था और उपजाऊ बनाता था। इसकी दूसरी तरफ बहुउपयोगी कीट जैसे तितलियां हुई, जो परागण में बहुत सहायता करती थीं और जिसके कि घर में गाय, भैंस व बैल पाले जाते थे, जिनका गोबर, मूत्र खाद के रूप में खेती में उपयोग किया जाता था। खेतों की मेड़ पर जो पौधे लगाए जाते थे वो भी बहुत फायदेमंद होते थे। यह खेत की मिट्टी का कटाव तो रोकते थे, साथ साथ में हवा की तेज गति को भी कम करने में सहायक होते थे, तथा भूमि में प्राकृतिक रूप से उपजाऊ व टिकाऊ उर्वरकता बनाए रखने के लिए प्राकृतिक कृषि करने के साधनों को अपनाने की अधिक आवश्यकता है। जैसा हम आज के समय में देख रहे हैं, मृदा का स्वास्थ्य हमारा बिगड़ता जा रहा है। और बिगड़ क्यों रहा है, इसके पीछे कुछ जो जिम्मेदार है वो सिर्फ रसायनों का अत्यधिक प्रयोग ही इसमें मुख्य भूमिका निभा रहा है। भूमि को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ व टिकाऊ उर्वरकता बनाए रखने के लिए प्राकृतिक कृषि करने के साधनों को अपनाने की बहुत अधिक आवश्यकता है, जिसमें कीटनाशकों के रूप में गोबर की खाद उपयोग कर सकते हैं, जीवाणु खाद उपयोग कर सकते हैं, फसल के अवशेष व प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट हुआ, जिप्सम आदि द्वारा पोषक तत्व दिए जा सकते हैं। इससे आपकी कृषि की उपज बढ़ेगी और मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इसके साथ साथ प्राकृतिक खेती में उपलब्ध मित्र कीट व जैविक कीटनाशक द्वारा फसलों को हानिकारक पादप रोगजनक कारकों से भी बचाया जा सकता। इसके साथ साथ प्राकृतिक पद्धति द्वारा कृषि पर भी भारत सरकार बहुत जोर दे रही है। पंचगव्य का उपयोग किसान भाई 5 लीटर पंचगव्य लेकर के प्रति बीघा के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर पौधों के तने के पास छिड़काव करें, जिससे उनकी पैदावार बहुत अच्छी होगी और जो उससे उत्पाद होगा, जो उससे बीज मिलेगा, वो भी अधिक स्वादिष्ट होगा। तो आशा करते हैं हम किसान भाइयों से कि बताए गए प्राकृतिक संसाधनों को कृषि में अपनाएंगे और

0: और अपनी मातृ रूपी भूमि को स्वस्थ रखेंगे तथा मृदा को भी सहेजेंगे।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खेती किसानी कार्यक्रम। विषय था प्राकृतिक संसाधनों का कृषि में महत्व। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, सुबह 7:30 पर भोपाल से हम रैली करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में जबलपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस कांड।

पिता दक्ष के यज्ञ में पति के निरादर से अपमानित होकर सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला। देवाधिदेव महादेव ने जब ये समाचार सुना तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उनसे आदेश पाकर अनुचर वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करके सभी देवताओं को दंडित किया। दक्ष की वही गति हुई जो शिवद्रोही की होती है। मरते समय सती ने हरि से यह वर मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव चरणों में उनका अनुराग बना रहे। इस वरदान के फलस्वरूप सती ने पर्वतराज हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से उमा जन्मी तब से ही पिता के घर सारी सिद्धियों और संपत्ति की भरमार हो गई। चहुं ओर सुख तथा समृद्धि का साम्राज्य फैल गया। पर्वतराज के घर नित्य नए मंगलोत्सव होने लगे। पार्वती के जन्म का समाचार सुन नारद मुनि एक दिवस हिमाचल के घर पधारे। आदरपूर्वक मुनि के चरण धोकर पर्वतराज ने पुत्री को मुनि चरणों में डाल दिया तथा त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ नारद जी से उन्होंने कन्या के गुण दोष बताने का निवेदन किया। मुनि ने मंगल वचन कहे, तुम्हारी कन्या स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। लोग उमा, अंबिका तथा भवानी के नाम से इसकी वंदना करेंगे। ये अपने पति को अत्यंत प्रिय होगी तथा इसका सुहाग अचल रहेगा, किंतु इसकी हस्तरेखाएं संकेत करती हैं कि इसका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेशधारी होगा।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर, संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: आज हम देखते हैं कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का विरोधी है। एक समाज अपने साथ साथ चलने वाले दूसरे समाज को कोसता है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने की भरपूर चेष्टा करता है। परंतु ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का मित्र है। एक जाति दूसरी जाति का अभ्युत्थान चाहती है। एक समाज दूसरे समाज का आदर करता है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए अपना सर्वस्व दे डालता है। एक ओर अशुभ प्रवृत्ति का प्रवाह है, दूसरी ओर शुभ का। प्रत्येक सद्भावना रखने वाला मानव यही चाहेगा कि शीघ्र ही जगत में अशुभ प्रवृत्ति का अंत हो जाए और शुभ का अधिक से अधिक तथा शीघ्र से शीघ्र विस्तार हो। किंतु इस अशुभ का विनाश एवं शुभ का विस्तार तब तक संभव नहीं है जब तक हलचल से जुड़े हुए हम इसी के साथ बह रहे हैं कि हम चाहे अत्यंत शुभ से शुभ उद्देश्य को लेकर ही किसी सत्कर्म में प्रवृत्त क्यों न हुए हों, यदि प्रभु का आश्रय किए बिना ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो निश्चित है कि हमारा शुभ उद्देश्य बदलकर धीरे धीरे अशुभ में परिणत हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे हमारा उद्देश्य ही सीमित हो, हम केवल अपनी ही सुख शांति चाहते हो, अथवा हमारा उद्देश्य अत्यंत विशाल हो, समाज की जाति की राष्ट्र की और सारे विश्व की सुख शांति हमारा लक्ष्य हो, इन दोनों परिस्थितियों में जब तक हम इनके लिए किए गए बाहरी प्रयास पर ही निर्भर करते हैं, प्रभु पर नहीं, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो जो चेष्टाएं होती हैं उन्हीं पर हमारा ऐसा विश्वास है, इन्हें करते रहो, केवल इनके करते रहने से ही हमारा उद्देश्य सिद्ध हो जाएगा। प्रभु की कृपा की हमें क्या आवश्यकता है, प्रभु को भूले हुए हैं तब तक तो हम भटकते ही रहेंगे। यदि हम किसी के प्रतिकूल ना बने, किसी के भी विरुद्ध काम ना करें, अपने स्वार्थ के लिए अथवा अभिमान में आकर हम दूसरे का निरादर कर दें, तिरस्कार कर दें, अपमान कर दें और दूसरे को बुरा समझें, तो फिर दूसरा हमारा आदर सम्मान करे, हमें अच्छा समझे, इसके योग्य हम नहीं हैं। इसके हम हकदार तभी होते हैं जब हम किसी का बुरा न सोचें। किसी के द्वारा हमें दुख हुआ हो तो वो हमारे प्रारब्ध का फल है, परंतु यदि हम उस आदमी को खराब समझेंगे या उसकी निंदा करेंगे, तिरस्कार करेंगे, दुख देंगे, दुख देने की भावना रखेंगे तो अपना अंतःकरण मैला हो जाएगा और हमारी हानि हो जाएगी। प्रायः मनुष्य ऐसा मानता है कि संसार की रचना हमारे लिए हुई है तथा इसके सारे पदार्थ हमें सुख देने के लिए ही निर्मित हुए हैं, किंतु यह धारणा बिल्कुल गलत है। वास्तविकता तो यह है कि ये जागतिक वस्तुएं प्राणी मात्र भी सेवा के लिए निर्मित हुई हैं। इन जागतिक वस्तुओं को परमात्मा ने संसार के लिए प्रदान किया है, ये हमारे लिए नहीं है। इन्हें अपनी मानकर हम अपने पास रखकर भी नहीं सकेंगे। यदि हम दूसरों के अधिकार की वस्तुओं से सुख लेना चाहेंगे तो सुख नहीं मिलेगा, उल्टे दुख ही उठाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ये शरीरगत मन प्राण बुद्धि शुद्धियां आदि भी हमारे नहीं है तथा न हम इनके लिए हैं। ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेने पर इनकी ममता विनष्ट हो जाती है। हित की भावना तभी हो सकती है जब हम अपने सुख का त्याग करेंगे तथा सुख प्राप्ति की भावना का त्याग करना सुगम भी है। इसके लिए बार बार यही निश्चय करना चाहिए कि किसके सुख की आशा करें, तभी तो प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहे तथा अस्थिर अनित्य और नाशवान है।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, या आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका साधना शर्मा।

0: आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: सर्वे संतो निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में, बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व

0: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
1: इसके अलावा सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय, चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में ही नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। वहीं INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टॉरपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉकड्रिल का अभ्यास किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस को लगातार दूसरे वर्ष पासपोर्ट सेवा के लिए राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार पासपोर्ट सत्यापन में तेजी, लोकोन्मुखी सेवा उपलब्धता और सुशासन में जम्मू कश्मीर पुलिस के उत्कृष्ट योगदान की मान्यता के तौर पर है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में ये पुरस्कार प्रदान किया। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामूहिक योग सत्र में ले रहे हैं भाग। कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के

0: राज्य स्तरीय कार्यक्रम में करेंगी शिरकत। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज, भोपाल में 32 केंद्रों पर 13,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी शुभकामनाएं। और प्रदेश में मानसून 6 दिन लेट, आज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत 37 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहर के रेड रोड पर सामूहिक योग सत्र में हिस्सा ले रहे हैं।
1: 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है।
0: इसके बाद प्रधानमंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर 3 स्वदेशी नौसैनिक पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। इन पोतों का डिजाइन नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है, वहीं INS संशोधक जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए और INS अग्रह पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत के रूप में तैयार किया गया है। नौसेना ने बताया कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जिसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। ज्यादा जानकारी दे रही हैं जबलपुर से हमारी संवाददाता सुरभि तिवारी।
2: सेना की विशेष विमान से शनिवार की शाम संस्कारधानी पहुंची महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का डुमना विमानतल पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल समेत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने स्वागत किया। महामहिम राष्ट्रपति अब से कुछ ही देर में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को उपाधियां और स्वर्ण पदक प्रदान करेंगी। कार्यक्रमों के समापन के बाद महामहिम राष्ट्रपति विशेष विमान से ग्वालियर के लिए प्रस्थान करेंगी। जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी।
0: जबलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम के साथ साथ राजधानी भोपाल, पांडुना, झाबुआ, छिंदवाड़ा, आगरमालवा, धार, पन्ना, बैतूल, बड़वानी, खंडवा और शिवपुरी सहित प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज नीट यूजी पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल में 32 केंद्रों पर 13,774 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। प्रशासन ने सभी केंद्रों पर CCTV कैमरे और जैमर लगाए हैं और प्रत्येक केंद्र पर डॉक्टरों की तैनाती भी की गई है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी, जबकि बायोमेट्रिक सत्यापन और फ्रिस्किंग की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केंद्रों पर मोबाइल फोन, घड़ी व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। परीक्षा से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी।
3: आप लोग खूब अपने अपने स्थान पर अपनी परीक्षा की तैयारी के अनुसार से नीट की एग्जाम दें। नीट के एग्जाम में आपको सब परमात्मा सफल करे। सरकार के सारे प्रबंधन है, जहाँ जहाँ जैसी जरूरत पड़ रही है, जहाँ हमारे पंजीयन कराने से लेके अंदर भी जो हमारे मित्र जाएंगे उनके लिए भी हर एक जिला प्रशासन को विशेष निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि नीट का एग्जाम निर्बाध रूप से सानंद संपन्न होगा।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे, जिसमें वे कई महत्वपूर्ण रेलवे अधोसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। इसके बाद जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। इसी कार्यक्रम में रेल मंत्री मेगा कोचिंग टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे, जो रेलवे रखरखाव कार्यों को आधुनिक बनाने के लिए तैयार की गई सुविधा है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल इंदौर जिले के सांवेर में प्रधानमंत्री आवास योजना के

0: अंतर्गत 42,000 से अधिक पात्र हितग्राहियों को 2,500 करोड़ रूपये से अधिक की आवास स्वीकृतियां प्रदान की। इस अवसर पर 38,000 से अधिक परिवारों को उनके नवीन पक्के आवासों में गृह प्रवेश भी करवाया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने 2,935 करोड़ रूपये की लागत वाली 48.10 किलोमीटर लंबी इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड फोर लेन परियोजना का भूमि पूजन भी किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रायसेन जिले के बाड़ी में आयोजित जनकल्याण शिविर को संबोधित किया। श्री चौहान ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि किसानों के सम्मान का प्रतीक है, यह राशि छोटे किसानों के लिए वरदान है।
1: यहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने जन कल्याण शिविर भी लगाया है और कोशिश है कि अपनी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान के लिए जनता को भटकना ना पड़े इन जन कल्याण शिविरों में हो जाए। विकास की अनेकों सौगात पहाड़ी को भी मिली है, विशेषकर तहसील भवन का है लोकार्पण हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने मूंग खरीदी की स्वीकृति मांगी थी, वो मूंग खरीदी की स्वीकृति हमने दे दी है।
0: उन्होंने कहा कि केंद्र की राशि के साथ प्रदेश सरकार भी इतनी ही राशि जोड़कर किसानों को हर साल 12,000 रूपये की सहायता दे रही है। इसके साथ ही भोजपुर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 31 नई सड़कों की स्वीकृति की घोषणा भी की गई। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल भोपाल के बरखेड़ी कला स्थित कृषि विस्तार प्रशिक्षण संस्थान में प्राकृतिक खेती की कार्यशाला को संबोधित किया। डॉ यादव ने कहा कि कीटनाशक और रासायनिक खाद के उपयोग से कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती हैं, इसलिए सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ रही है। उन्होंने बताया कि गौपालक किसानों को सरकार हर महीने 1100 रूपये प्रति गाय की दर से आर्थिक सहायता दे रही है। सागर जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ग्राम सरखड़ी साजी और ताजपुर में 10 करोड़ रूपये से अधिक की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र का वास्तविक विकास जनता की सक्रिय सहभागिता से ही संभव है और उनका लक्ष्य सुर्खी के हर गांव को सुविधा युक्त बनाना है। प्रदेश सरकार की भावांतर योजना को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये योजना ई मंडी एप्लीकेशन के साथ एकीकृत डिजिटल ढांचे के अंतर्गत लागू की गई है, जिसके तहत सोयाबीन की खरीदी पूरी तरह से ऑनलाइन की गई है। इस योजना के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य और वास्तविक बिक्री दर के बीच के अंतर की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है। अब रुक करते हैं क्रिकेट की खबर का। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मानसून 6 दिन की देरी से चल रहा है और इसके आने में अभी 4 दिन और लगेंगे। मौसम केंद्र ने 25 जून तक प्रदेश में मानसून की दस्तक देने का अनुमान जताया है। इससे पहले प्री मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी। आज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के 37 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल, सागर, उज्जैन और रतलाम समेत कुछ जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत पवन चौक में गृह प्रवेश कार्यक्रम में 167 हितग्राहियों को नए घरों की सांकेतिक चाबियां, चेक और प्रमाण पत्र बांटे गए। शिवपुरी के मानस भवन, पांडुना के ग्राम रामाकुना और डिंडोरी में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। झाबुआ के ग्राम बिल्डोज में अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कटनी में नीट परीक्षार्थियों के लिए एक विशेष हेल्प सुविधा केन्द्र शुरू किया गया। बड़वानी जिले में नीट परीक्षा के 11 परीक्षा केंद्रों पर 3,845 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामूहिक योग सत्र में ले रहे हैं भाग। कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। नीट यूजी की पुनः परीक्षा आज, भोपाल में 32 केंद्रों पर 13,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने दी शुभकामनाएं। और प्रदेश में मानसून 6 दिन लेट, आज इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर समेत 37 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हिंदी महक के अंतर्गत वार्ता योग का महत्व। वार्ताकार हैं जगदीश प्रसाद भट्ट।
1: पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 21 जून को योग दिवस के नाम से मनाया जाता है। इसमें सभी शासकीय संस्थाएं योग दिवस के रूप में मनाते हैं और योग कार्यक्रम करते हैं। योग में प्राणायाम प्रमुख है। योग के आध्यात्मिक जीवन में परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व का कल्याण यह हमारा एकमात्र लक्ष्य एवं संकल्प है। जब राष्ट्र एवं विश्व योगमय होगा तो संसार में रोग, नशा, हिंसा, अतीत एवं कोई भी अमानवीय कृत्य नहीं होगा। साथ ही अश्लीलता एवं हिंसा या युद्ध नफरत का कारोबार करने वालों की लूट सुता ही बंद हो जाएगी और एक बहुत सुंदर, स्वस्थ, समृद्ध, खुशहाल वातावरण बनेगा। योग क्रिया में 5 प्रकार के प्राणायाम प्रमुख होते हैं, जिसमें प्रथम भस्त्रिका है, जिसमें ध्यानात्मक योगासन में बैठकर दोनों नासिकाओं से श्वास को पूरा अंदर डायफ्राम तक कर भरना तथा बाहर भी पूरी शक्ति के साथ छोड़ना भस्त्रिका प्राणायाम भस्त्रिका योग कहलाता है। इससे सर्दी, जुखाम, एलर्जी, श्वास रोग, दमा, साइनस, नजला आदि समस्त कफ रोग दूर होते हैं। फेफड़े सबल बनते हैं। हृदय और मस्तिष्क को शुद्ध वायु, प्राण वायु मिलने से आरोग्य लाभ होता है। थायराइड एवं गले के समस्त रोग दूर होते हैं। द्वितीय योग में कपालभाति है, जिसमें योग क्रिया द्वितीय रूप उक्त योग प्रक्रिया में मस्तिष्क यानी माथे पर आभा, ओज एवं तेज बढ़ता है, इसलिए इस योग क्रिया को कपालभाति कहते हैं। इससे मधुमेह में गैस, कब्ज, अम्लपित्त, किडनी या प्रोस्टेट से संबंधित रोग निश्चित रूप से दूर होते हैं। कब्ज जैसा खतरनाक रोग भी इस योग क्रिया प्राणायाम से नियमित रूप से लगभग 5 मिनट तक प्रतिदिन करने से दूर हो जाता है। योग क्रिया में तृतीय अनुलोम विलोम प्राणायाम की इस योग क्रिया से 72,72,10,200 नाड़ियां परिशुद्ध हो जाती हैं। संपूर्ण नाड़ियों की शुद्ध होने से देह पूर्ण स्वस्थ, कांतिमय एवं बलिष्ठ बनता है। आम बात, कफ बात आदि समस्त बात रोग, मूल रोग, धातु रोग, क्षय, अम्ल पित्त, शीत पित्त आदि समस्त पित्त रोग, सर्दी, जुखाम, पुराना नजला, खांसी, टोन्सिल आदि समस्त रोग दूर होते हैं, दोष खत्म हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल संबंधी एवं HDL आदि की अनियमितताएं भी दूर होती हैं। नकारात्मक चिंतन में परिवर्तन होकर सकारात्मक विचार बदलने लगते हैं। आनंद, उत्साह एवं निर्भयता की प्राप्ति होने लगती है। चतुर्थ योग क्रिया में भ्रामरी है। मन की चंचलता दूर होती है भ्रामरी कार्य करने से, भ्रामरी योगा करने से। मानसिक तनाव, उत्तेजना, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग आदि में लाभप्रद है। वृद्ध अवस्था में होने वाली भूलने की बीमारी भी ध्यान के लिए विशेष उपयोगी है। पांचवा ओंकार जब इसी योग क्रिया में आता है। सोते समय ओंकार का ध्यान जब करने से ध्यान करते हुए सोने से निद्रा की योग कमी हो जाती है, दुस्वप्न से भी छुटकारा मिलता है, तभी नींद शीघ्र एवं प्रगाढ़ आती है। योगमय आध्यात्मिक जीवन, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व का निर्माण ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है और संकल्प है। योग के तारतम्य में भगवान सूर्य भगवान के प्रमुख नाम है, जिनका सुबह प्रातः सूर्य नमस्कार के समय योग क्रिया में जोड़ा जाता है। प्रमुख नाम 12 नाम इस प्रकार से रहते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण गर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य नमस्कार की पृथक पृथक योग क्रियाएं प्राणायाम, हस्त उच्चालन, पाद संचलन, अश्व संचलन, दंडासन, अष्टांग, भुजंगासन, स्वसासन, पाद हस्तासन, हस्त उच्चासन, इस तरह सूर्य भगवान के 12 नामों के साथ साथ उच्चारित किए जाते हैं एवं सूक्ष्म व्यायाम के तहत योगा किया जाता है। क्रमशः 108 बार भगवान राम के नामों के साथ योग क्रिया एवं भजन संग्रह किया जाता है। योग क्रिया सामूहिक रूप से बैठकर इन 5 क्रियाओं को क्रमशः करते हैं, जिससे सभी वरिष्ठ नागरिकों को बराबर लाभ मिल रहा है। भूलने की शक्ति तो ये भ्रामरी योग करने से

0: इसमें कई लोगों को फायदा हुआ है। परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व का निर्माण ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है, संकल्प है। जब राष्ट्र एवं विश्व योगमय होगा तो संसार में रोग, नशा, अनीति एवं कोई भी अमानवीय कृत्य नहीं होगा एवं स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। साथ ही अश्लीलता स्वतः ही बंद हो जाएगी एवं एक बहुत सुंदर, स्वस्थ, समृद्ध, सकुशल वातावरण निर्मित होगा। छतरपुर शहर में नगर पालिका के अंतर्गत रविशंकर पार्क में प्रातः भ्रमण कार्य के अलावा पार्क में बने क्लब हाउस में प्रतिदिन सुबह 6 बजे से योग का संचालन किया जाता है। विगत 10 वर्षों से चल रहा है। सीनियर सिटीजन आकर योग संचालन में भाग लेते हैं। उक्त संचालन कार्य भगवान सूर्य को 12 नमों से शुरू होता है। सूर्य नमस्कार की विभिन्न 12 विधाओं के साथ योगा कार्य किया जाता है। भगवान सूर्य जो प्रकृति के संचालक हैं, उनके नाम क्रमशः इस प्रकार कहे जाते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम खगे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण गर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम हिरण गर्भाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। इस तरह भगवान सूर्य के 12 नामों से योग का संचालन होता है। उपरोक्त 108 बार ताली बजाकर मन में उच्चारण करते हुए योग संचालन करते हैं, जो कि योगा कार्य के पूर्व एक स्वास्थ्य एवं प्रसन्नता का माहौल बन जाता है। योगा कार्य में सूर्य नमस्कार के बाद मयूरासन, कपाल भारती, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। उसके साथ में इसके दूसरे याम भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, आकार, नाड़ी शोधन, शीतली प्राणायाम, कर्ण रोधन प्राणायाम किए जाते हैं। 8 या 10 प्रकार के आसन लगाकर हम लोग प्रतिदिन योगा कार्य करते हैं, जिसमें पहला है वज्रासन में बैठते हैं, फिर दूसरा पद्मासन, फिर तीसरा अष्टासन, चौथा बालासन, तीसरा मयूरासन। मयूरासन, बक्रासन, नौकासन, भुजंगासन, सुखासन एवं ध्यान कार्य करते हैं। ध्यान कम से कम 2 या 3 मिनट का करते हैं, जो अपने इष्ट देव के नाम से होता है। जो व्यक्ति तीर्थ यात्रा करके लौटे होते हैं, तीर्थ यात्रा जिन्होंने की हो, तो वहाँ का भी पूरा मन में ध्यान करते हुए, जहाँ जहाँ भी जिसने यात्रा की है वहाँ का ध्यान करते हुए, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए और उनका भगवान का ध्यान करते हैं। उसके बाद सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुःखात् का ध्यान करते हुए समापन कार्य करते हैं।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हिंदी महक के अंतर्गत वार्ता योग का महत्व। वार्ताकार थे जगदीश प्रसाद भट्ट। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओ, हम आपको याद दिला दें, सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। सहयोग भूपेंद्र कुमार वर्मा का, प्रस्तुत करता होंगे रविन्द्र कुमार प्रजापति। इसके अलावा 10:30 पर आप सुनेंगे पत्रोत्तर का साप्ताहिक कार्यक्रम भवदी, प्रस्तुतकर्ता रविन्द्र कुमार प्रजापति। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की ओर।

ശക്തി ആകാശവാണിക്ക് ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റീവ്.

जयपुर एक ऐसा शहर है जो समय के साथ चलते हुए भी अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोकर रखे हुए है। यहाँ का दशहरा अब पूरे देश में अपनी जगह बना चुका है और मुहर्रम यहाँ जिस अनूठे अंदाज में मनाया जाता है उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। और आज ये शहर मना रहा है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का अमूल्य उपहार है। ये केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि बारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऐतिहासिक और गरिमा में समारोह में मैं चमन तालवार आकाशवाणी जबलपुर की ओर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उप महानिदेशक श्री वलीउल्लाह खान के कुशल निर्देशन और कार्यक्रम प्रमुख श्री श्यामलाल चहलानी और कार्यक्रम अधिकारी श्री किशन यादव के मार्गदर्शन में आकाशवाणी की जिस क्रिएटिव टीम के माध्यम से यह प्रसारण आप तक पहुंच रहा है उसमें शामिल है वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक श्री नित्यानंद त्रिपाठी और श्री आशीष पाल, सहायक श्री गुरुदास सिंह ठाकुर और कार्यक्रम अनुशासी श्री लीला वाजपेयी। जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास के इस कार्यक्रम में शामिल हजारों लोग इसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हैं। पलक पावड़े बिछाए समारोह की मुख्य अतिथि देश की प्रथम नागरिक और भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे कब आधारें और इस कार्यक्रम की गरिमा को और ऊंचाई प्रदान करें। मित्रों, संस्कार और संस्कृति का मरकज है शहर जबलपुर, जिसे भूदान आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे ने जहाँ के लोगों की शालीनता संयम और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से प्रभावित होकर संस्कार धनी के नाम से विकोषित किया था। यहाँ से प्रदेश के जीवन रेखा माँ नर्मदा समृद्धि लुटाती हुई गुजरती है, जिसका अभिमान है कि रेवा के हर शंकर को शंकर का प्रतिरूप माना जाता है। पतित पावनी नर्मदा के तट पर बसा जबलपुर आस्था और भक्ति की नगरी है। ये शहर न सिर्फ पर्व त्योहारों को मनाता है वरन उन्हें जीता भी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उस पर्व त्योहार को मनाने वाले शहर में कितने हैं, बस ये शहर उस रंग में खुद को रंग लेता है। अमन चैन और इंसानियत हर धर्म का मर्म है, जिसके बिना त्योहार और पर्व सिर्फ रस्मदायगी बनकर रह जाते हैं। जबलपुर एक ऐसा शहर है जो समय के साथ चलते हुए भी अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोकर रखे हुए है। यहाँ का दशहरा अब पूरे देश में अपनी जगह बना चुका है और मुहर्रम यहाँ जिस अनूठे अंदाज में मनाया जाता है उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। और आज ये शहर मना रहा है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का अमूल्य उपहार है। ये केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर मन और आत्मा के संतुलन का विज्ञान है। योग संपूर्ण जीवन शैली को परिष्कृत करने की विधा का नाम है। हजारों वर्षों से योग भारतीय पद्धति का अभिन्न अंग रहा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने का श्रेय जाता है देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अपने संबोधन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को अभूतपूर्व समर्थन मिला और 177 देशों ने इस प्रस्ताव का सह प्रायोजन किया, जो संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सबसे अधिक समर्थित प्रस्तावों में से एक है। और अब हम सारे लोग सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे

राष्ट्रगान देश की अस्मिता और गरिमा का पर्याय है, और ये पावन ध्वनि हम जहाँ पर भी हैं, जिस हालत में हैं, अगर हमारे कानों तक पहुँचती है तो हमें सावधान की मुद्रा में खड़े होकर उसे सम्मान देना चाहिए, क्योंकि ये देश की गरिमा और उसके सम्मान का पर्याय है। समारोह स्थल पर माननीय राष्ट्रपति महोदया का आगमन हो चुका है, और समारोह के स्थल के दाहिनी ओर मीडिया को स्थान दिया गया, जिसमें आकाशवाणी की टीम भी है, और मंच के बिल्कुल सामने मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित है। मुझे दिखाई दे रहे हैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव, उनके बहुत सारे मंत्रिमंडल के सदस्य साथ में ट्रैक सूट में तैयार हैं योगाभ्यास के इस समारोह में और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। आज की भागदौड़ और तनाव भरी जीवन शैली में सेहत को बनाए रखना एक बहुत

0: बड़ी चुनौती बन गया है, और योग एक ऐसा समाधान है जो हर चुनौती का समाधान लेकर हमारे सामने आता है। योग सिर्फ व्यायाम की पद्धति नहीं, वरन पूरी जीवन शैली है, जिसमें मन की शुचिता का भी एक अहम रोल है, अहम भूमिका होती है। और योग के माध्यम से जीवन के बहुत सारे सवाल, जीवन के बहुत सारे तनाव और जीवन की बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव,
1: आज के इस कार्यक्रम की उत्सव मूर्ति महामहिम माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय महामहिम राज्यपाल श्रीमद मंगभाई पटेल साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, इस अवसर पर मौजूद सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, महापौर, अन्य गणमान्य अतिथिगण, जबलपुर के प्यारे भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, विश्व भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस वर्ष की थीम भी योग फॉर हेल्थी एजिंग, हमारे लिए स्वस्थ आयु के लिए योग इस वर्ष की थीम है। वैश्विक कल्याण, वैश्विक शांति, वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता योग दिवस प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण होने पर संयोग है ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। इस वर्ष योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी कलकत्ता से बंगाल से किया जा रहा है। विश्व भर के लगभग 2500 स्थानों पर 210 से अधिक भारतीय दूतावास इस कार्यक्रम के भागीदार हैं। योग के रूप में भारत ने दुनिया को सौंपा है मानवता के कल्याण का उपहार। योग का अर्थ जोड़ना, भारत ने अपने ज्ञान, विवेक, विचार से सदैव विश्व को जोड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा, आध्यात्मिक चेतना वैश्विक पटल पर स्थापित कर विश्व को हमारी समृद्ध सनातन संस्कृति से परिचित कराया है। प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव रखा तो इसे रिकॉर्ड 175 से ज्यादा देशों ने एक साथ ऐतिहासिक समर्थन करके 2015 में पारित कराया था। इस वर्ष दुनिया भर में 30 से 35 करोड़ लोगों ने एक साथ सामूहिक योग सत्रों में भाग लेने का हम सबको इसका एहसास है। मध्यप्रदेश के कोने कोने में यह आयोजन लोगों को योग से जोड़ने का और जागरूक करने के लिए हर घर योग अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। और वैसे तो योग के प्रथम व्याख्या था आदि गुरु भगवान शिव को प्रणाम, अष्टांग योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि के चरणों में भी प्रणाम, नर्मदे महारानी की यह नगरी संस्कारधानी जबलपुर में वैश्विक चेतना के महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर समस्त योग साधकों और प्रदेशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। यह हमारा सौभाग्य है 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर माननीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच उपस्थित है। हम करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं मध्यप्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से माननीय महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी माननीय राष्ट्रपति का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम को अपनी गरिमा में उपस्थिति से सुशोभित कर रहे हमारे मार्गदर्शक माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमान मंगूभाई पटेल जी का भी हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सबके मौजूदगी से हम सबके लिए ये सौभाग्य की बात है, हमें गर्व है। हमारी जड़ें भारतीय संस्कृति से जुड़ी है। हमारी संस्कृति सनातन ऋषि परंपरा ने संसार को सदैव एक परिवार के रूप में देखा है। हमने कभी भी भौगोलिक सीमाओं को सोच में सीमित नहीं किया है, बल्कि संपूर्ण विश्व को वसुदेव कुटुंबकम का अमर संदेश दिया है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। योगियों की तपस्थली मध्य प्रदेश, श्री कृष्ण जी को यहीं योग का ज्ञान मिला। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक संपन्नता यहाँ के गौरवशाली इतिहास का अभिन्न

0: अंग रही है। यह भूमि अनादिकाल से योगियों की तपोभूमि रही है। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मध्य प्रदेश की पावन धरती उज्जैनी स्थित महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। यहाँ उन्होंने 64 कला 14 विद्याओं का गहन अध्ययन किया। इन कलाओं और विद्याओं में योग विज्ञान सबसे प्रमुख था। विश्व भर में हो रहे आयोजन से भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा हम सबके लिए सौभाग्यशाली और गौरव दिलाती है। आज दुनिया के 200 से ज्यादा देशों ने सहभागिता करते हुए 2500 से ज्यादा विशाल आयोजन, लगभग 35 करोड़ लोगों ने सामूहिक योग अभ्यास से हमें इस बात के लिए पुनः उस भाव को परिलक्षित करने के लिए प्रेरित किया है जब भारत पुनः विश्व को शांति सौहार्द्रता और उदारता के साथ हमारी सनातन संस्कृति से परिचित करा रहा है। अत्यंत गर्व और प्रसन्नता का विषय है। मैं आज के इस अवसर पर सच में ये जो हमारे लिए माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने आज के इस योग दिवस के अवसर पर हम सब पे उपस्थित होकर के ये जो कृपा की है, हम हृदय से उनका पुनः वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं पुनः मध्य प्रदेश की धरती पर आप सबके माध्यम से सभी योग साधकों को पुनः इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रातः काल के सत्र में। और वैसे एक और योग के साथ संयोग भी है, आज 21 जून है। 21 जून ही हमारे लिए ऊर्जा के अनंत भंडार भगवान सूर्यनारायण जी की कक्षा परिवर्तन का दिन भी है। आज ही के दिन 21 जून को सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। दिन तिल तिल करके कम होगा और रात्रि की निशा बढ़ती जाएगी, लेकिन हमारे उत्साह और उमंग में दिनों रात बराबरी से हमारी अपनी ऊर्जा का इस भंडार के अनंत स्रोत को मानवता की सेवा के लिए हम अपने जीवन का क्षण क्षण लगाएं, इसी कामना के साथ योग से निरोग रहें, जीवन भर योग को अपनाएं, इसी भावना के आधार पर पुनः आप सबको योग दिवस की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम सादर निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आप माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का सम्मान करने का कष्ट करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को शॉल और योग मुद्रा का प्रतिरूप भेंट करें। करतल ध्वनि के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का योग में मध्य प्रदेश में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पुनः अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी का सम्मान करने का कष्ट करें, आपको शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट करके, योग मुद्रा का प्रतीक चिन्ह भेंट करके अभिनंदन करें। करतल ध्वनि के साथ माननीय राज्यपाल महोदय जी का हृदय से स्वागत है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। योग की इस पावन साधना में सहभागी बनने हेतु मैं विनम्रता पूर्वक माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं, कृपया वे सामने की ओर अभ्यास स्थल पर अपनी गरिमामय सहभागिता प्रदान करने का कष्ट करें। और अब हम मंच पर आमंत्रित करेंगे योग अभ्यास हेतु प्रशिक्षणकर्ता को, जो कि मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार से हमारे बीच हैं, जो कि योगाभ्यास करवाएंगे। योग है जीवन का आधार, स्वस्थ तन मन का यह उपहार है। ऋषियों की अनुपम विरासत, भारत की गौरवशाली धरोहर है योग। योग से तन में शक्ति आती है, मन में नई उमंग जागती है और श्वास श्वास में चेतना भरकर जीवन को संतुलित बनाती है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, ओम सहवीर्यम करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा मन और शरीर के सामंजस्य का दिव्य विज्ञान है। भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा से प्राप्त यह अमूल्य धरोहर आज संपूर्ण विश्व को स्वास्थ्य, शांति और संतुलन का संदेश दे रहा है। माननीय राष्ट्र

0: राष्ट्रपति महोदया जी की गरिमा में उपस्थिति हम सभी को प्रेरित करती है कि हम सभी को योग से जुड़ना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए।
1: रेडी मैम, रेडी कर रही हूँ।

0: योग एक ऐसी जीवन शैली है जो जीना सिखाती है। आप सबने गौर किया होगा कि तेज आंधी तूफान में जो मजबूत पेड़ होते हैं जड़ से उखड़ जाते हैं, लेकिन जो लचीले पेड़ पौधे होते हैं वो बचे रहते हैं, और योग शरीर को लचीला बनाने का काम करता है।
1: कमर गर्दन को सीधा रखिए, आंखों को कोमलता से बंद करिए। ओमकार के लिए श्वास भरिए।

धीरे से आंखों को खोलिए। अब हम चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। इसके लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। चालन क्रियाओं का अभ्यास शरीर को लचीला बनाता है। गर्दन की क्रियाओं के अभ्यास से प्रारंभ करेंगे। जिन्हें गर्दन में दर्द है वे इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। पैर में 2 इंच का फासला बना लीजिए। दोनों हाथ को कमर पर रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे की तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को बीच में लाइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे की ओर झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। दाईं तथा बाईं ओर गर्दन को मोड़ने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को बीच में लाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस लाइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाइए। पुनः श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाइए। अगला अभ्यास है सिर को गर्दन को दाहिने से बाएं और बाएं से दाएं घुमाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की सुई की दिशा में दाहिने से बाईं तरफ घुमाते हुए वापस लाइए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहरा जाइए। श्वास भरते हुए पुनः इसी अभ्यास को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 2 बार दोहरा जाइए। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए और हाथों को वापस पुनः अपनी जगह पर ले आइए। अगला अभ्यास है स्क

अंग संचालन का अभ्यास, जिन्हें फ्रोजन शोल्डर की परेशानी है, वे इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाइए, हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हुई। श्वास छोड़ते हुए हाथ को वापस लाइए। पुनः श्वास लेते हुए भुजाओं को ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए। अगला अभ्यास स्कंध चक्र का अभ्यास है, शोल्डर रोटेशन। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधे की ऊंचाई तक ले आइए। हथेली को पलटकर ऊपर की तरफ करिए। हाथ की उंगलियों को कंधे पर रखिए। कोहनी को सामने से जोड़ लीजिए। श्वास भरते हुए एक शून्य का आकार कोहनी से बनाइए। श्वास भरते हुए कोहनी ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कोहनी नीचे। एक बार और इस अभ्यास को दोहरा जाइए। इसी प्रकार घड़ी की विपरीत दिशा में भी दो बार दोहरा जाइए। अगला अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए, भुजाओं को वापस लाइए। अगला अभ्यास है कटिचालन का अभ्यास। इसके लिए अपने पैरों में कंधे के बराबर दूरी बना लीजिए। दोनों हाथों को सीधे रखते हुए सामने की तरफ से उठाइए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाहिनी तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाइए। इसमें आपका दाहिना हाथ की हथेली आपके बाएं हाथ के कंधे के सामने आएगी। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को बीच में लाइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं लेफ्ट साइड घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। दोनों हाथों को वापस लाते हुए विश्राम कीजिए। अब हम योगासनों के अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रोटोकॉल विशेषतर आपके लिए 30 मिनट का बनाया गया है। पहला योगाभ्यास है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए अपने पैर को मिला लीजिए या 2 इंच का फासला बना लीजिए। जिन्हें घुटने में दर्द है वे एड़ी ना उठाएं। दोनों हाथों को समस्थिति में नीचे रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधे के स्तर तक लाइए। श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेली को बाहर की तरफ उलट लीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। अब एड़ी को उठाते हुए पंजे के बल खड़े हो जाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में रहने से शरीर में संतुलन तथा दृढ़ता आती है। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाइए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास पादहस्त आसन का अभ्यास। इसके लिए जिनकी भी कमर में दर्द है वे इसे सावधानी पूर्वक करें। दोनों पैरों में इसी प्रकार 4 इंच का फासला बनाकर रखिए। दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाइए और अच्छा खिंचाव पूरे हाथ में दीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए पीठ को खींचते हुए सामने की तरफ से नीचे झुक जाइए और दोनों हाथ को अपने पैर के बगल रखने का प्रयास कीजिए। जितना संभव हो उतना ही कीजिए। यह आसन शरीर की रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है तथा पाचन शक्ति में सुधार करता है। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आइए। दोनों हाथों को बगल से वापस लाइए और विश्राम कीजिए। अब हम अर्ध चक्र आसन का अभ्यास करेंगे। अर्ध चक्र आसन, दोनों हाथों को कमर पर रखिए, उंगलियां आगे की तरफ, अंगूठा पीछे। अब अपनी कोहनी को पीठ के पीछे की तरफ ले जाइए और समानांतर करने का प्रयास कीजिए। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे ले जाइए और श्वास छोड़ते हुए जितना संभव है पीछे झुकने का प्रयास कीजिए। यह अभ्यास श्वसन क्षमता को बढ़ाता है।
श्वास भरते हुए वापस

वापस आइए और दोनों हाथों को वापस लाते हुए विश्राम कीजिए। अपने स्थान पर दंडासन की स्थिति में बैठ जाइए। दंडासन अर्थात दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लीजिए। दोनों हाथों को नितंब के पास रखिए। कमर गर्दन एक सीध में रहे। यह है दंडासन। भद्रासन बैठकर करने वाली सीरीज में पहला आसन है भद्रासन। पैर को मोड़ते हुए दोनों तलवे को मिलाइए। अब श्वास छोड़ते हुए अपने पैर के पंजे को पकड़ लीजिए। एड़ी को शरीर के और पास लाने का प्रयास कीजिए। यह आसन घुटने और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है और महिलाओं के लिए अत्यंत ही लाभदायक है। पुनः धीरे से दंडासन में वापस आइए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास है वज्र आसन का अभ्यास।

घुटने और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है और महिलाओं के लिए अत्यंत ही लाभदायक है। पुनः धीरे से दंडासन में वापस आइए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास है वज्र आसन का अभ्यास। अपने पैर को मोड़ते हुए एड़ी के बीच में बैठने का प्रयास कीजिए। दोनों पैर के अंगूठे इस स्थिति में मिले हुए, दोनों हाथ घुटने पर रखिए, कमर गर्दन को सीधा रखिए। यह आसन पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है तथा पैर की मांसपेशियों को भी मजबूती प्रदान करता है। यहीं से अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। इसके लिए अपने घुटने पर खड़े हो जाइए, दोनों हाथ कमर के पीछे रखिए। अब श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे और सिर को पीछे की तरफ ले जाइए। कमर के निचले हिस्से से श्वास छोड़ते हुए झुकने का प्रयास कीजिए। यह आसन कमर दर्द को ठीक करने में सहायक है। श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाइए और विश्राम कीजिए। यहीं से हम शशक आसन का अभ्यास करेंगे। शशक आसन, जिसके घुटने में दर्द है, वे आराम से सुखासन की स्थिति में भी बैठकर शरीर आगे ले जाते हुए इस अभ्यास को कर सकते हैं। शशक आसन के लिए दोनों हाथों को, दोनों घुटनों को फैलाते हुए दोनों हाथों को अपने घुटने के बीच में रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे इस प्रकार ले जाएंगे कि छाती और ठोड़ी जमीन से लगे हुए रहे। यह आसन तनाव और घबराहट को कम करने में मदद करता है। पुनः इसी स्थिति में बैठे रहें और धीरे से श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। शशक आसन में पैर जिस प्रकार खुले हुए हैं, उसी में ही हम उत्तान मंडूक आसन करेंगे। उत्तान मंडूक आसन के लिए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए। दोनों हाथों से अपोजिट विपरीत कंधे को पकड़िए। दाहिने हाथ से बाएं कंधे को और बाएं हाथ से दाहिने कंधे को। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसमें बने रहिए। यह आसन पीठ तथा गर्दन की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। श्वास भरते हुए पुनः वापस आइए और पेट के बल लेट जाइए। अब हम पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे, जिसमें पहला आसन है मकर आसन। मकर आसन के लिए अपनी हथेली के ऊपर हथेली को रखिए, ठोड़ी या गाल को टिकाते हुए पीछे दोनों पैरों में उचित दूरी बनाइए और विश्राम कीजिए। यह आसन शरीर और मन को विश्रांति देता है। अगला अभ्यास है भुजंग आसन का अभ्यास। भुजंग आसन के लिए अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए आगे की तरफ सीधा खींचिए। श्वास छोड़ते हुए हाथ को मोड़ते हुए हथेली को सीने के पास लाइए। अब श्वास भरते हुए ठोड़ी और छाती को नाभि वाले भाग तक उठा लीजिए। यह आसन श्वसन क्षमता में सुधार लाता है, पेट की चर्बी घटाता है तथा कब्ज से राहत दिलाता है। पुनः श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आकर मकर आसन की स्थिति में विश्राम कीजिए। शलभ आसन, दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथों को जंघाओं के पास ले जाइए या जंघाओं के नीचे हथेलियां जमीन की तरफ रखते हुए दोनों पैरों को बिना घुटना मोड़े उठाने का प्रयास कीजिए। इसमें ठोड़ी जमीन से लगी हुई रहे। यह आसन साइटिका तथा पीठ दर्द में आराम दिलाता है। धीरे से पैर को वापस लाइए और करवट लेते हुए अपने पीठ के बल किए जाने वाले आसनों की तरफ आ जाइए। इसके लिए करवट लेते हुए अपने पीठ के बल आ जाइए।

अभ्यास है सेतु बंध आसन का अभ्यास। जिन्हें गर्दन में दर्द हो वे इस आसन को सावधानी पूर्वक करेंगे। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एड़ी को नितंब के नजदीक लाइए। अब दोनों हाथों से अपने टखने एंकल जॉइंट को पकड़िए। श्वास भरते हुए पीठ को उठाइए और पुलनुमा आकृति बनाइए। यह आसन अवसाद की रोकथाम में सहायक है। पुनः श्वास छोड़ते हुए वापस आइए और पीठ के बल ही विश्राम कीजिए। उत्तान पाद आसन, पैरों को मिला लीजिए। हाथों को शरीर के बगल सीधा रखिए। हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर 35 टू 45 डिग्री उठाइए। पैर के पंजों को खींच के रखिए। यह श्वसन क्षमता में सुधार लाने में सहायक है। पुनः यहीं से अर्ध हलासन करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैर को 90 डिग्री लाइए। कुछ क्षण के लिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहिए। यह अभ्यास उच्च रक्तचाप को में सहायक है। यहीं से पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जंघाओं को सीने के पास लाइए। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए टखनों के नीचे पकड़िए। अपने घुटने के नीचे दोनों हाथों को फंसाते हुए पकड़िए। अब श्वास छोड़ते हुए अपने सर को उठाते हुए ठोड़ी को दोनों घुटनों के बीच में लगाइए। यह आसन पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। श्वास छोड़ते हुए सर को नीचे रखिए और पैर को वापस ले आइए तथा शवासन में विश्राम कीजिए। शवासन, दोनों पैरों में उचित दूरी, दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, आंखें कोमलता से बंद। गहरा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए। गहरा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखिए और शिथिल हो जाइए। यह आसन चिंता और तनाव को दूर करने में सहायक है। किए हुए अभ्यास के प्रभावों को महसूस करिए। अब धीरे से दाईं या बाईं करवट लेते हुए अपने स्थान पर उठकर बैठ जाइए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाइए। दोनों हाथों को अपने घुटने पर रख लीजिए। आंखों को कोमलता से बंद करिए। हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए। उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए झटके से श्वास छोड़िए। इसकी 15 आवृत्ति एक साथ करेंगे। गहरा श्वास छोड़ते हुए शांति का अनुभव करिए। कपालभाति का दूसरा चक्र करने के लिए शारीरिक मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। पुनः गहरा लंबा श्वास भरिए। प्रारंभ।

गहरा लंबा श्वास छोड़िए। कपालभाति श्वसन अंगों का कार्य सुचारी पूर्वक करवाता है तथा कफ विकारों को दूर करने में मददगार है। अगला अभ्यास प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं, अनुलोम विलोम का अभ्यास। अपने दाहिने हाथ की राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा बना लीजिए। अंगूठे से अपने दाहिने नासिका

नासिका को बंद करिए। बाई नासिका के माध्यम से धीरे धीरे श्वास भरिए। बाई नासिका लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए दाहिनी नासिका राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। पुनः राइट नॉस्ट्रिल दाहिने नासिका रंध्र से धीरे धीरे श्वास को भरिए। दाहिना नासिका रंध्र बंद करके बाएं नासा रंध्र से धीरे धीरे श्वास छोड़ दीजिए। एक चक्र और कर जाइए। बाएं नासिका रंध्र से श्वास को भरिए। बाएं नासिका रंध्र को बंद करते हुए दाहिने नासिका रंध्र से श्वास को छोड़िए। पुनः दाहिने नासिका रंध्र से श्वास को भरिए तथा बाएं नासिका रंध्र से श्वास को छोड़िए। यह अभ्यास रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। धीरे से दोनों हाथ को वापस लाइए ज्ञान मुद्रा में और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम का अभ्यास है। अपनी जीभ को बाहर निकालते हुए जीभ के माध्यम से श्वास को भरिए। जीभ को ट्यूब का आकार दीजिए। जीभ को अंदर ले जाते हुए नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। एक बार और इस अभ्यास को दोहरा जाइए। यह अभ्यास एकाग्रता शक्ति को बढ़ाता है तथा उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए धीरे से लंबा गहरा श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि से गुंजन करिए। जिनको शांभवी मुद्रा या षणमुखी मुद्रा आती है वो उस मुद्रा के साथ भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। पुनः श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि कीजिए। एक बार पुनः श्वास लीजिए।

यह प्राणायाम तनाव को दूर करने में सहायक है तथा आंतरिक आनंद की प्राप्ति कराता है। दोनों हाथ को वापस लाइए। ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा अर्थात बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर गोदी में रखिए। दोनों हाथों को गोदी में रखिए। धीमा लंबा गहरा श्वास लीजिए। धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़िए। आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। कंधे को और शिथिल कर दीजिए। ध्यान योग का सबसे जरूरी अंग है। सारी प्राथमिक प्रक्रियाएं ध्यान के ही लिए हैं। ध्यान आत्मा का अमृत यात्रा है। ध्यान प्रातःकाल स्वर्णिम सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ रही हैं। हमारा रोम रोम सविता का तेज सूख रहा है। प्रखर तेजस्वी प्राणवान हम बन रहे हैं। ध्यान की गहराइयों में जब साधक प्रवेश करता है तो वह अनुभव करने लगता है कि समस्त सृष्टि एक ही चेतना प्रवाहित हो रही है। वह अपना आत्मस्वरूप है जिसे वेद अहम ब्रह्मास्मि, उपनिषद तत्वमसि कहता है। ध्यान की पूर्णता का परिणाम है मन की शांति, हृदय में करुणा तथा आत्मा का प्रकाश। यही भाव अपने मन में लाइए। अपने शुद्ध विचारों के प्रति और सजग होते जाइए। अब अपनी सामान्य श्वास प्रश्वास के प्रति सजग हो जाइए और मन ही मन संकल्प लीजिए, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया हुआ है। संकल्प लीजिए, मैं मानव मूल्यों का पालन करते हुए स्वयं

के प्रति, समाज के प्रति, विश्व के प्रति, शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। अब शांति पाठ के लिए अपने दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। ओमकार के लिए श्वास को भरिए। ओम।

0: दोनों हथेलियों को अपने आंखों पर रखिए। हथेली के अंदर आंखों को धीमे से खोलते हुए दोनों हाथ को वापस ले आइए। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय उज्ज्वलमय हो। धन्यवाद।
1: धन्यवाद। और अब हम बहुत ही आदरपूर्ण निवेदन करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से, माननीय राज्यपाल महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप पुनः मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज संपूर्ण विश्व में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है और इसी उत्सव को मनाने हेतु आज हमारे बीच माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का मुख्य आतिथ्य। हम पुनः हृदय से स्वागत करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का। और जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि योग की उत्पत्ति भारत की प्राचीन परंपरा है, हजारों वर्षों पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने योग के माध्यम से शरीर मन और आत्मा के संतुलन का मार्ग खोजा जो आज संपूर्ण विश्व को स्वस्थ और सुखी जीवन का संदेश दे रहा है। योग है भारत की पहचान, स्वस्थ जीवन का है वरदान, तन हो निरोग मन हो प्रसन्न, योग बनाए जीवन धन्य। और जहां योग है वहां स्वास्थ्य है, जहां स्वास्थ्य है वहां उत्साह है। योग से जुड़े निरोग रहें, यही जीवन का सच्चा प्रवाह है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, हमारे बीच योगाभ्यास के माध्यम से हम सभी को प्रेरित किया, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और अब पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदया जी मंच पर पधार रही हैं और आज मध्य प्रदेश के लिए परम सौभाग्य है कि योग दर्शन की प्रणेता महर्षि पतंजलि की कर्मभूमि के रूप में इस पावन धरा का उल्लेखनीय किया जाता है। महर्षि पतंजलि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट स्थित है और आज जबलपुर की भूमि एक और ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन रही है जब माननीय राष्ट्रपति महोदया जी इस धरती पर योग साधना कर समूचे विश्व के समक्ष भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और मध्य प्रदेश की आध्यात्मिक चेतना का संदेश देगी। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने की विधा नहीं बल्कि जीवन को संतुलन, संयम और सकारात्मकता से भरने वाली जीवन पद्धति है। जनसेवा, सामाजिक समरसता एवं मानवीय मूल्यों के प्रति सतत समर्पित मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी से अब हम विनम्र निवेदन करते हैं कि आप अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करने का कष्ट करें।
2: सभी को नमस्कार। 12वां अंतर

0: राष्ट्रीय योग दिवस जबलपुर के कार्यक्रम में उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्रीगण, सांसदगण, महापौर श्री, विधायक श्रीओ, अधिकारीगण, उपस्थित महानुभावों एवं भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, भारत की पहचान को विश्व मंच पर ऊंचाई पर करने वाले हमारे महान धरोहर योग के 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का उपस्थित से मध्य प्रदेश का जन जन प्रसन्न और आनंदित है। माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धा पूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा मानना है कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन को संतुलित, सार्थक और आनंदमय बनाने की सरल जीवन पद्धति है। हमारी ज्ञान परंपरा ने हजारों वर्ष पूर्व योग के रूप में स्वस्थ जीवन का जो मार्ग दिखाया था, आज पूरी दुनिया उसे अपना रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता भारत की प्रचांड परंपरा के वैश्विक सम्मान का प्रतीक है। इस अवसर पर भारत की गौरवशाली योग परंपरा को दुनिया में मान्यता और सम्मान दिलाने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व, वैश्विक दृष्टि और अटूट प्रतिबद्धता के प्रति आभार व्यक्त करना हम सभी का कर्तव्य है। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन का क्रम बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था है। इन सभी अवस्थाओं में हम सुखी खुशहाल रहे, इसके लिए हमारे तन और मन का स्वस्थ रहना जरूरी है। प्राणायाम से माध्यम से हम केवल सांस नहीं लेते, बल्कि नई ऊर्जा, नया उत्साह और सकारात्मक सोच का भी अपनाते हैं। ध्यान हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है तथा मन की चंचलता को शांत कर आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। प्रतिदिन केवल 20 से 30 मिनट का योग अभ्यास, प्राणायाम और ध्यान हमारे जीवन में प्रभावी और सकारात्मक परिवर्तन लाने का सबसे सरल रास्ता है। आज माननीय राष्ट्रपति महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में हम सभी यह संकल्प करें कि योग को केवल एक दिवस के आयोजन तक सीमित नहीं रखेंगे। योग को जीवन भर स्वस्थ रहने, मानसिक संतुलन बनाए रखने और आत्मिक उन्नति प्राप्त करने का माध्यम बनाकर अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। आइए एक स्वर में कहे, स्वस्थ तन, प्रसन्न मन, योग बने जीवन का धन, यही विकसित और स्वस्थ भारत का पथ है। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय का बहुत बहुत आभार मानते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय।
1: धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी। आज योग की इस दिव्य बेला में जब संपूर्ण वातावरण स्वास्थ्य साधना और सकारात्मक ऊर्जा से अनुप्राणित है, तब हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। हमें माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं करबद्ध निवेदन करती हूं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि आप अपने अमूल्य मार्गदर्शन और आशीषपूर्ण उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें।
2: 12वीं योग शिविर की इस उपस्थिति में मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सामने बैठे हुए, सरकार में शामिल सभी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, छात्र छात्रागण, अधिकारीगण,

सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई। जबलपुर को विशेष पहचान देने वाले मां नर्मदा की पावन धरती पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं देश विदेश में सक्रिय सभी योग साधकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम यहाँ भारत की उस महान परंपरा का उत्सव मना रहे हैं जिसने मानवता को स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाया है। योग विश्व समुदाय को हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य उपहार है। ये हमारे ऋषियों और मुनियों की हजारों वर्षों की साधना का परिणाम है। हमारे शास्त्रों में शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को जीवन की सफलता का आधार माना गया है। योग उसी संतुलन को स्थापित करने के मार्ग है। योग शब्दों का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। ये व्यक्ति को स्वयं से, समाज को प्रकृति से तथा संपूर्ण मानवता को व्यापक विश्व चेतना से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। आज विश्व जब अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तब योग मानवता को शांति, संतुलन, समरसता और सामूहिक कल्याण का मार्ग दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देवियों और स्वजनों, वर्ष 2014 में भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस पहल से पिछले 12 वर्षों से विश्व कल्याण के एक सशक्त माध्यम के रूप में योग पद्धति को पहचान और भी मजबूत हुई है। आज विश्व के अनेक देशों में करोड़ों लोग योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। इसी महीने अहमदाबाद में आयोजित प्रथम वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस आयोजन पर कई देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिए थे। हम कभी कभी विदेशों में जाते हैं और योगा के बारे में पूछते हैं, क्योंकि योग अभ्यास विदेशों में भी किया जाता है और ये भारत का ही एक प्रेरणा के ये उदाहरण है। मुझे बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है। योग बढ़ती आयु से भी व्यक्ति के सक्रिय और आत्मनिर्भर बने रहने की सहायक होते हैं। मैं बहुत साल हो गया योग अवसर करती हूँ। आज इसीलिए आपके सामने मैं थोड़े देर के लिए योग करने का मुझे मौका मिला, मैं अच्छी तरह करने के लिए प्रयास किए। साथ ही मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करता है। देवियों और स्वजन, जीवन शैली से जुड़े बीमारियां हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। आज इन बीमारियों की रोकथाम में समग्र चिकित्सा पद्धति का प्रयोग व्यापक रूप से हो रहा है। योग इस समग्र प्राणी का अहम हिस्सा है जो सरल, प्रभावी और सुलभ है। भारत सरकार योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए योग शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा जनजागरण के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं। ये प्रसन्नता का विषय है कि अनेक संस्थाएं विश्व स्तर पर लोगों को योग पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना और समस्त मानवता के कल्याण का आधार स्तंभ है। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे। इसी के साथ ही मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।

राष्ट्रगान के साथ ये कार्यक्रम अब अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है। श्रोताओं, आज योग भारत की सीमाओं से निकलकर विश्वव्यापी जन आंदोलन बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 190 से अधिक देशों में मनाया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य, शांति और वैश्विक एकता का अद्भुत प्रतीक है। इस बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य को लेकर ये दिन मनाया गया और बहुत जल्द परिणाम हमारे सामने होंगे। आकाशवाणी की जिस क्रिएटिव टीम के माध्यम से

0: से आज का ये प्रसारण आप तक पहुंचा, उसमें शामिल हैं वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक श्री नित्यानंद त्रिपाठी और श्री आशीष पाल, सहायक श्री हुबराज सिंह ठाकुर और कार्यक्रम अधिशासी श्री नीलाभ वाजपेयी के साथ मैं चमन सालवार अब आपको आकाशवाणी के स्टूडियोज वापस लिए चलता हूँ।
1: मीडियम वीप 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है धारावाहिक गीत गीता। शीर्षक है श्रद्धात्रय विभाग योग।
2: शास्त्रों के कहे अनुसार कर्म करने की आज्ञा होने पर अर्जुन ने उन लोगों की निष्ठा के बारे में प्रश्न किया जो शास्त्र के विधानों का पालन नहीं कर पाते परंतु श्रद्धा पूर्वक भक्ति करते हैं। उत्तर में भगवान ने श्रद्धा तप यज्ञ आहार आदि सभी का 3 गुणों के अनुसार वर्णन किया है। अंत में अश्रद्धा से किए गए कर्म को असत बताया है। प्रस्तुत है 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक गीत गीता का 17वां भाग। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे फिल्म ऐसा प्यार कहां। इस फिल्म का गीत मधुर आवाज थी कविता कृष्णमूर्ति की, गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। अगला गीत सुनेंगे लेकिन इस अंतराल के बाद।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: वासांसी जीड़ानि यथा विहाय।
5: अरे कब से तुम गीता पढ़ने लगे? क्या गीता ओलंपियाड परीक्षा की तैयारी हो रही है?
4: हाँ हाँ, सही समझी। विश्व गीता प्रतिष्ठान उज्जैन की शाखा है हमारे ललितपुर में, वहीं से तैयारी कर रहा हूँ।
5: अच्छा, वो प्रगति विद्या मंदिर के पीछे नई बस्ती में जो स्वाध्याय मंडल है?
4: हाँ हाँ, वही। उसके संचालक है श्री सर्वदेव तिवारी। मोबाइल नंबर है
5: 8858920259।
4: 8858920259।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फिल्म दुर्गा माँ का ये गीत। आवाजें थी हेमलता और साथियों की, गीत और संगीत था रविंद्र जैन साहब का। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है लोकरंग कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं देवी सिंह, ढोलक प्रसंगत कर रहे हैं महेश कुमार और बैंजो वादन कर रहे हैं संजय वंशकार। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं लोक भजन से, कलाकार देवी सिंह।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: लोकरंग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये लोक शैली बद्ध गीत, कलाकार देवी सिंह।

0: अब थे देवी सिंह लोक शैलीबद्ध गीत के साथ।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
0: लोकरंग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते और सुनते हैं ये लांगुरिया। कलाकार एक बार फिर देवी सिंह, ढोलक पर संगत कर रहे हैं महेश कुमार और बैंजो बजा रहे हैं संजय वंशकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लांगुरिया। कलाकार थे देवी सिंह। ढोलक पर संगत कर रहे हैं महेश कुमार और बैंजो वादन का काम कर रहे हैं संजय वर्षकार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये ख्याल, कलाकार एक बार फिर देवी सिंह।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे ख्याल। गायक कलाकार थे देवी सिंह, ढोलक पर संगत कर रहे थे महेश कुमार और बैंजो बजा रहे थे संजय वंशकार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये चेतावनी कलाकार देवी सिंह।

और आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं विदाई गीत। कलाकार एक बार फिर देवी सिंह, ढोलक पर संगत कर रहे हैं महेश कुमार और बैंजो पर हैं संजय वंशकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विदाई गीत। कलाकार थे देवी सिंह। ढोलक पर संगत कर रहे थे महेश कुमार और बैंजो बजा रहे थे संजय वंशकार। इसी के साथ लोकरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे देवी सिंह। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। सहयोग भूपेंद्र कुमार वर्मा का। प्रस्तुत करता है रविंद्र कुमार प्रजापति।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम को शुरू करें उससे पहले आपको बता देते हैं इस कार्यक्रम के फोन नंबर्स। हमारा पहला फोन नंबर है 241588 यानी कि 241588 और दूसरा नंबर है 298029 यानी कि 298029। छतरपुर से बाहर के श्रोताओं के लिए एसटीडी कोड है 07682 यानी कि 07682। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 11 बजे से 11:30 की मत की जाती है। इसी बीच कोई श्रोता लाइन पर है, आइए जानते हैं इनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हाँ हेलो फरमाइश से, मैं सीके कुशवाहा बरेली से बोल रहा हूँ।
0: जी क्या करते हैं आप?
1: खेती के किसानी काम करते हैं, इस समय कुछ नहीं कर रहे भाई साहब। सुनना था मेरे को।
0: हम गाना जरूर सुनवाएंगे आपको। कौन कौन से कार्यक्रम पसंद आते हैं?
1: हमको लोक रंजन है शाम को, और हेलो फरमाइश वगैरह सब चीज पसंद आती है हमको बहुत बढ़िया। सनम में बफा गाना सुनना है, वो हरे दुपट्टे वाली जानम रुक जाना।
0: कार्यक्रम में फोन लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी। हाँ, कौन कहाँ से बात कर रहे हो?
1: सर, मैं ग्राम फसनेटा जिला फतेहपुर यूपी से सर रोहित यादव बात कर रहा हूँ।
0: कैसा है मौसम वहाँ का?
1: जी सर जी, मौसम तो यहाँ कड़ी धूप खिली हुई है सर जी, लेकिन बादल आ जाते हैं कभी कभी।
0: जी जी।
1: और सर जी, 25 तारीख से मानसून बता रहा है फतेहपुर में भी हमारे।
0: जी जी जी। क्या करते हैं आप?
1: जी सर जी, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: किस क्लास में?
1: जी सर जी, BSc मेरी फाइनल हो चुकी है और मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ प्रयागराज में।
0: तो फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं आप?
1: सर जी, मैं ये रेलवे का कोई बड़ी पोस्ट लेना चाहता हूँ।
0: जी, तो कड़ी मेहनत कीजिए तो मेहनत रंग लाती है।
1: जी जी सर, बिल्कुल।
0: कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: जी सर जी, मूवी का नाम है बागवान। और गीत की बोले हाँ हाँ पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ। जी आप कौन बोल रहे हैं?
0: मैं भूपेंद्र कुमार वर्मा बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा जी सर जी, आपसे पहली ही बार मेरी मुलाकात हो रही है।
0: जी जी। और आपके क्या क्या शौक हैं?
1: जी सर जी, मुझे तो क्रिकेट खेलना सर जी बेहद पसंद है। और जी सर जी, कबड्डी भी खेल लेता हूँ और थोड़ा सा सुबह 4 बजे उठ करके रेस भी करने जाता हूँ।
0: जी जी। और आकाशवाणी के कौन कौन से कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं?
1: जी सर जी, ये हमारे आपकी पसंद आता है और सर जी मन भावन कार्यक्रम आता है। सर जी, प्रोग्राम अधिकतर करके सुनता हूँ, लेकिन सर जी फोन प्रोग्राम ज्यादा सुनता हूँ और ये आपके पसंद अवश्य सुनता हूँ। पढ़ते पढ़ते सर जी बोरिंग महसूस होने लगती है तो सर जी रेडियो को सारा ले लेते हैं, क्योंकि इसे सर जी आपकी आकाशवाणी केंद्र सर जी काफी ज्ञानवर्धक चीजें भी सीखने को मिलती है।
0: जी हाँ, रेडियो हमारा सच्चा साथी होता है और ज्ञान सूचना और मनोरंजन का साधन भी है।
1: जी सर,
0: कार्यक्रम में फोन लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनवाते हैं बागवान फिल्म का ये गीत।
1: सर नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो सर, मैं सुखविंदर प्रजापति।
0: सुखविंदर जी बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट अलवर राजस्थान से बात कर रहा हूँ।
0: अरे आप तो काफी दूर से फोन लगाए हैं
1: हाँ जी, हाँ जी
0: जी। क्या करते हैं आप?
1: सर, मैं तो सिलाई का काम करता हूँ। सर,
0: किस प्रकार के कपड़े सिल लेते हैं?
1: आप जेंट्स और लेडीज दोनों सीखते हैं?
0: अच्छा, दोनों आप सी लेते हैं।
1: हाँ,
0: तो ये काम आपने सीखा हुआ है कि घर से ही विरासत में मिला?
1: नहीं, अपने काम सर पहला भाई करता था, हम भी उसके साथ थोड़ा थोड़ा करने लग गए, फिर सीख गए ऐसे ही, और अब कर रहे हैं, पर्सनल काम कर रहे हैं।
0: और कपड़े सीते सीते रेडियो की आदत लग गई सुनने की?
1: रेडियो तो सर पहले से सुन रहे हैं, 90 से रेडियो सुन रहा हूँ।
0: अरे वाह। तो आकाशवाणी
1: हाँ
0: छतरपुर के कौन कौन से कार्यक्रम पसंद आते हैं आपको?
1: सर, छतरपुर के कार्यक्रम तो मैं सही बात रियल में बात करता हूँ, मैंने आपका प्रोग्राम देखा था ये यूट्यूब के ऊपर, हेलो छतरपुर,
0: तो
1: है ना।
0: आप आकाशवाणी छतरपुर किस पर सुनते हैं, मोबाइल ऐप पर कि रेडियो पर?
1: रेडियो भी है साहब, फिलहाल दुकान पर आके तो मैं सिर्फ मोबाइल ऐप ही सुनता हूँ। प्रोग्राम कार्यक्रम
0: तो कैसे लगते हैं आपको यहाँ के कार्यक्रम?
1: बढ़िया है, आपका प्रस्तुत करने का भी अंदाज बढ़िया है, और वैसे भी बढ़िया कार्यक्रम।
0: बताइए तो आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: तब आज मेरे को गाना सुना दो, एक अलग अलग फिल्म आई थी राजेश खन्ना जी की और टीना मुनीम जी की, उसमें गाना है इस जीवन की यही है कहानी, आनी जानी है कि दुनिया सारी। आप कभी राजस्थान में घूमने आओ।
0: तो राजस्थान की एक खास बात बताइए, क्या है वहां पर? वैसे तो घूमने लायक है, टूरिस्ट प्लेस है, और क्या खास है वहां
1: हाँ,
0: पर?
1: राजस्थान की खास बात यही है कि यहाँ पर खाना पीना देसी खाना पीना है, बाजरे की रोटी खाओ आप, देसी खाना पीना चलता है यहाँ।
0: जी हाँ, राजस्थानी के जो जो व्यंजन है खाने पीने के वो अलग ही हैं, और साथ ही
1: हाँ
0: साथ जो वहाँ का लोक संगीत है काफी मधुर प्रिय होता है।
1: हाँ बिल्कुल सर, नृत्य बहुत ही बढ़िया है। हाँ,
0: राजस्थान में ज्यादातर अपनी भाषा में बोलते हैं खम्मागनी।
1: खम्मागनी सब, क्योंकि आते जाते जैसे आप राम राम करते हैं ऐसी
0: जी
1: आते
0: जी
1: हैं, जो किसी को मिलते हैं खम्मागनी बोलते हैं।
0: जी, तो मैं हम आपको खम्मागनी यहाँ से बोल रहे हैं, पूरे राजस्थान को जहाँ आवाज पहुँच रही है।
1: हाँ बिल्कुल, हाँ सर, और यहाँ सर टाइगर रिजर्व है, और पांडु अज्ञातवास था ना, पांडवों का यहीं पर ही बताया था, वहां पर अपने ये टाइगर रिजर्व है जहाँ अपने पर्वतमाला है।
0: जी, अवसर प्राप्त होगा तो जरूर घूमने आएंगे, और कार्यक्रम में फोन लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
2: इस जीवन की यही है।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार भैया।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी मैं दीपक सिंह गुर्जर बात कर रहा हूँ, ग्राम खकल तहसील कौच जिला जालौन से।
0: जी दीपक जी बताइए, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं। और आपके यहाँ का
1: कैसा है छतरपुर का
0: मौसम? तो अभी वैसे ही है, तीखे तेवर है, धूप है, तेज रहती है, गर्मी रहती है। आपके यहाँ का मौसम कैसा है?
1: जैसा कि छतरपुर में है वैसा ही यहाँ पर है।
0: बारिश का हम सभी को इंतजार है अब।
1: जी बिल्कुल, बेसब्री से सभी को इंतजार है, खास करके हमारे किसान भाइयों को।
0: आप भी खेती किसानी से जुड़े रहते हैं, खेत खलिहानों में घूमते रहते हैं, तो कैसा लगता है जो आसपास में जो पेड़ों पर फल फूल लगे होते हैं, कैसा लगता है आपको?
1: वो दृश्य देखकर बहुत ही मन को सुकून मिलता है, बहुत ही आनंदित महसूस करते हैं। जब अच्छा लगता है, बढ़िया फूल होते हैं, पक्षियों की आवाज होती है, बढ़िया ठंडी हवाएं होती हैं, ठंडक महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है।
0: जी जी, तो आप अपनी फिटनेस किस प्रकार से रखते हैं, योगा करते हैं आप?
1: जी बिल्कुल, सुबह 4 बजे टहलने जाते हैं और वहीं योगा करते हैं,
0: उठकर जाते हैं, योग भी करते हैं और आकाशवाणी के कार्यक्रम भी सुनते हैं।
1: बिल्कुल, कार्यक्रम तो कंटिन्यू सुनते हैं क्योंकि कार्यक्रम सुनकर हमें एक नई ऊर्जा और एक नया ज्ञान प्राप्त होता है।
0: तो रेडियो ही हमारा एक सच्चा साथी है जो हम सभी के जीवन में व्यस्त होते हुए भी अपने कार्य पूर्णतः कर सकते हैं।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: आज मैं सुनना चाहूंगा, फिल्म है माँ तुझे सलाम, जिसके बोले छोड़ के ना जाओ पिया। आकाशवाणी के 50 वर्ष पूर्ण होने को जा रहे हैं आगामी दिनों में, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे आकाशवाणी 90 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, गौरवशाली, तो हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है और हमें हमेशा रेडियो से जुड़कर ही रहना चाहिए। रेडियो ने हम सबको बहुत अच्छा, बहुत ही ज्ञान दिया है, बहुत ही सूचनाएं, शिक्षा, सारी चीजें दी हैं, तो रेडियो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: जी जी बिल्कुल, आकाशवाणी के 90 वर्ष और हमारे आकाशवाणी छतरपुर के 50वां वर्ष अगस्त में पूरा हो जाएगा।
1: जी जी बिल्कुल।
0: कार्यक्रम में फोन लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनवाते हैं माँ तुझे सलाम फिल्म का ये गीत।
1: धन्यवाद भैया, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश जी, भूपन भैया नमस्कार। भूपन भैया
0: जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हैं।
0: आप कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: हम बसाई दरवाजे से राकेश वर्मा बोल रहे हैं। भूपन भैया
0: जी हाँ,
1: फिल्म रहेगी रोटी कपड़ा और मकान, नौकरी का क्या भरोसा आज में लेकर छूटे।
0: आकाशवाणी छतरपुर के कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको?
1: आकाशवाणी के तो प्रत्येक कार्यक्रम प्रतिदिन 6 बजे से लेके रात्रि 11 बजे तक मेरा सुनना है, और मतलब 50वें वर्ष में पहुंच गया हूं। मतलब आकाशवाणी के साथ में मैं भी चल रहा हूं। कम से कम 30 रेडियो तो मैंने सेलों से बजाए हैं। मतलब 50 साल में मैंने शुरू तक 1100 शुरू तक संकल्प लिया था, प्रति वर्ष लेता था। 50वां वर्ष जो है अगस्त में मना जाना है, 7 अगस्त को।
0: जी हाँ।
1: अग्रम बधाई सभी आकाशवाणी परिवार को, सुनने वालों को।
0: जी जी, आपका रेडियो के प्रति दीवानगी देखकर बहुत अच्छा लगा। आपने कम से कम 30 साल तक अपने रेडियो आपने चलाया और सुनते रहे, वो आज भी सुन रहे हैं।
1: मेरा जीवन जो है रेडियो के लिए समर्पण है। रेडियो मेरे लिए सुनने के एक तो महत्ता अलग है, लेकिन मेरा जीवन जो है उसी के आधार पर चल रहा है।
0: जी हाँ, रेडियो एक हमारा सच्चा साथी है जो हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।
1: नमस्कार भूपेन भैया
0: जी, नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार सर जी।
0: जी नमस्कार, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: हम ग्राम पोस्ट गोला कुछमाड़ थाना सोजना तहसील बारौनी जिला ललितपुर से आपका अपना नियमित श्रोता कैलाश नारायण नाम जी बोल रहे हैं।
0: जी कैलाश नारायण जी, कैसे हैं आप?
1: जी सर, आपकी कृपा से बहुत बढ़िया है। आप सिलाई का काम कर रहे थे, हमने कहा फोन ट्राई कर लिया जाए, तो लगी आपकी किस्मत थी हमारी।
0: जी हाँ, तो सिलाई कितने वर्षों से करते आ रहे हैं आप?
1: जी सर, हम तो सिलाई कर 40 वर्ष हो गए हमको सिलाई करते समय।
0: तो इसके साथ साथ रेडियो भी सुन लेते हैं?
1: जी सर, रेडियो तो हमारा पहला ही साधन है जीवन में।
0: पहले के रेडियो में और आज के रेडियो में क्या अंतर आया है?
1: जी सर, पहले के रेडियो में बहुत अंतर है आपके में। पहले के रेडियो हमारे दादाजी ले आए थे रेडियो, सब मल्फी बहुत बढ़िया रेडियो था, लेकिन हम मोबाइल ऐप से सुन रही है, दादाजी के जमाने का रेडियो चला रही है।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप जो दादाजी की जो उपहार है आज तक आप संभाले हुए हैं?
1: जी सर, आज कम से कम 1980 में लिया था ना वो रेडियो, उसकी जो प्रियंका से रहती हूँ, वो ही बजा रही है।
0: जी जी जी, कौन कौन से कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं आपको आकाशवाणी छतरपुर के?
1: जी सर, हमको सुबह 7 बजे से रेडियो रेगुलर दुकान पर सुनते हैं, रात के 11:10 तक रेगुलर पूरे कार्यक्रम सुनते हैं।
0: जी जी, तो आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: जी सर, हमको सुनना है, आज गर्मी का मौसम चल रहा है इसलिए हमको पेंटर बाबू का गीत सुनवाने, गर्मी के हिसाब से।
0: पेंटर बाबू फिल्म का कौन सा गीत?
1: हमको ले चले आ रहा ठंडी ठंडी नहर के किनारे।
0: आपकी उम्र कितनी है लगभग?
1: जी सर, हमारी जो उम्र है 55 वर्ष।
0: आप 55 वर्ष के हो गए हैं, तो आप किस प्रकार से अपना ख्याल रखते हैं? योग करते हैं, घूमते हैं, टहलते क्या करते हैं?
1: जी सर, हम सुबह से 4 बजे उठ के घूमने निकलते हैं और शाम को भी 7 बजे निकल जाते हैं घूमने के लिए,
0: और अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रखते हैं।
1: सर जी,
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।
1: जी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार सर जी।
0: जी नमस्कार, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं
1: जी? मैं ग्रामा पोस्ट गोना कुसमाड़ थाना सोजना तहसील मेहरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका अपना रेडियो में दीपक कुमार नामदेव बात कर रहे हैं सर।
0: जी दीपक कुमार जी, क्या हाल चाल है
1: सर जी? बढ़िया है सब, आप ही लोगों की कृपा है
0: जी। क्या करते हैं दीपक जी?
1: जी कुछ नहीं सर जी, हमारा पैतृक काम सिलाई का काम है तो सिलाई ही करते हैं सर
0: जी। आकाशवाणी के कौन कौन से कार्यक्रम पसंद आते हैं आपको
1: जी? आकाशवाणी कार्यक्रम की तो जितनी कही जाए उतनी ही आप लोगों की मेहनत सार्थक जा रही है। अच्छे कार्यक्रम आए सुबह से लेकर सुनते हैं, भक्ति संगीत कार्यक्रम सुनते हैं, रामतुला कार्यक्रम सुनते हैं, लोकमंजरी कार्यक्रम सुनते हैं, आपकी पसंद कार्यक्रम सुनते हैं, मनभावन कार्यक्रम सुनते हैं, और जितने 90 वर्ष आकाशवाणी की स्थापना के और आकाशवाणी छतरपुर के 50 वर्ष पूर्ण होने को है, ये सभी कार्यक्रम आपके केंद्रों से सुनते हैं। और दिन में महिला सभा 1 बजे सुन लेते हैं, संग्रहालय से सुनते हैं, स्पॉटलाइट सुन लेते हैं, लोकमंजरी कार्यक्रम सुनते हैं, अटकन चटकन सुन लेते हैं, आपके तमाम कार्यक्रम सुनते हैं सर।
0: क्या बात है, आपने तो एक फहरिस्त आपने बता दी, कितने आप कार्यक्रम से लगाव रखते हैं, जुड़ाव रखते हैं
1: जी सर जी। अब आप लोगों की आवाज मनभावन और आपकी पसंद जब आप गुनगुना उठे में कार्यक्रम में आप लेकर आते हैं तो हम लोगों को इतनी खुशी होती है कि हमारा पत्र या ईमेल शामिल होने वाला है सर।
0: जब हमारे श्रोता इतनी मेहनत करते हैं, ईमेल करते हैं, पत्र लिखते हैं, तो हम लोगों का फर्ज बनता है उन सभी पत्रों का और ईमेल का शामिल कर सके कार्यक्रम में।
1: जी जी जी।
0: तो आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: आज हमको नदिया के पार फिल्म का सुनवा देना, कौन दिशा में लेके चला रही बटुरिया।
0: कार्यक्रम में फोन लगाने के लिए आपका

0: हेलो फरमाइश।
1: अरे कमाल है, कहते हैं ना दिन को सुकून है ना रात को सुकून, ये कैसा हमको आकाशवाणी फतरपुर का जुनून है, और आपसे बात हो जाए तो मिल जाए हमको बड़ा सुकून है।
0: क्या बात है, जब हमारी आपकी बात होती है सबको सुकून मिलता है, हम आपको भी सुकून मिलता है।
1: अरे सर जी, कहते दिल की लगी नहीं बुझती, और बुझती है हर चिंगारी, और हर चीजों से अजीज है लगती हमको भूपेंद्र भैया आपकी यारी, आकाशवाणी छतरपुर के गुलाम, चांद मोहम्मद खान, ईडन गार्डन, अशोक वाटिका से मजनू दीवाना।
0: जी चांद मोहम्मद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: और भूपेंद्र भैया ही मान के चलिए कि इतना बेताब इतना बेचैन हो रहा था आपसे बात करने के लिए, लेकिन आप ऊपर वाले ने सुन ही लिया, सदियों के बाद ऐसा लग रहा है कि मुझे नई जिंदगी मिल गई, आपसे बात हो गई।
0: ये तो आपका बड़प्पन है, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: शहंशाह फिल्म का गाना है।
0: हाँ, कौन सा?
1: किशोर कुमार और लता जी की आवाज में, और मैं थोड़ा सा बातें और कर लूं सर जी, क्योंकि फोन कभी लगे ना लगे। भूपेंद्र भैया मैं ये बता दूं कि गर्मी से निजात पाना है तो कल्पा आ जाइए, आपको सुकून मिलेगा। आप सभी पूरे स्टाफ वाले और सभी श्रोताओं को मैं बता दूं कि बहुत यहाँ का मौसम लाजवाब रहता है और बड़ा ठंडा माहौल रहता है, बाग बगीचे होते हैं। और ये बता दूं कि आकाशवाणी छतरपुर को भूपेंद्र भैया आप जब कार्यक्रम पेश करते हैं तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आर बढ़ के श्रोता सुनते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा एहसास होता रहता है, क्योंकि मेरे पास फोन आते रहते हैं कि छतरपुर जैसे आकाशवाणी हमें कहीं नहीं मिलेगा।
0: क्या बात है, हमसे इतने श्रोता इतने स्नेही करते हैं आकाशवाणी छतरपुर से।
1: उसका कारण है सर जी, क्योंकि आप लोग जब इतना अच्छा कार्यक्रम पेश करते हैं, आप इतने अच्छे हैं, सम्मान देते हैं, तो क्यों नहीं सारे श्रोता खींचे चले जाते हैं। प्यार मोहब्बत से ही तो सब कुछ है भैया, प्यार नहीं कहते आओ नहीं, आदर नहीं, नैनो नहीं, सने और तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन वर्षे में एक। सर जी सम्मान से सब कुछ मिलता है, भगवान भी आ जाते हैं, तो आप इतना अच्छा सम्मान देते हैं सर जी, तो क्यों ना हम लोग खींचे चले जाते हैं। और गाना

0: ही बता दूं, और बात करते करते भाभी जान आ गए, तो थोड़ा सा बस सलाम नमस्कार भर।
1: नमस्कार भाई साहब
2: जी। नमस्कार,
1: आप कैसे हैं?
2: हम भी बहुत बढ़िया हैं। और आज
1: बहुत अच्छे हैं भाई साहब।
0: अब गाना बताएं सरी सैन साह का, वो थोड़ी जल्दीबाजी में है, और गीत के बोल रहे किशोर जी लता जी की आवाज में कि होगी पाकेट मार तू, चोरों की सरदार तू, नजरों वाले तीर चला ले, कर ले जो है करना, ओए अब नहीं मरना, अब नहीं डरना, अब नहीं डरना हो देवाला सर जी।
2: और आकाशवाणी छतरपुर के कौन कौन से कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं आपको?
0: अरे भूपेंद्र भैया जी बताइए कि आकाशवाणी छतरपुर के जैसे तो कार्यक्रम मैंने किसी भी आकाशवाणी में नहीं सुना, क्योंकि देखो बताएं, जब आप गुनगुना उठे और इसके बाद जो है आप जो ये कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम तो बहुत लाजवाब होते हैं, और बुंदेली लोकगीत का तो क्या कहना।
2: जिस प्रकार से आप कार्यक्रम में फोन लगाते हैं, हंसते मुस्कुराते हमेशा रहिए, इसी प्रकार आपको हम गीत सुनवाते हैं। कार्यक्रम में फोन लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। सर जी नमस्कार, दिल से पूरे स्टाफ को
2: जी नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश
1: जी हाँ, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: सर हम ग्राम लखनपुरा जिला टीकमगढ़ से अखिलेश जैन बात कर रहे हैं।
1: क्या करते हैं आप?
0: सर हम हैंडीकैप ब्लाइंड पेशेंट हैं, तो सर अभी पढ़ाई कर रहे हैं। सर
1: किस क्लास में हैं आप?
0: सर 12th।
1: क्या सब्जेक्ट लिया है आपने?
0: सर बायोलॉजी। मनोरंजन सुनते रहते हैं, आकाशवाणी छतरपुर से जुड़े रहते हैं। हम काफी पुराने श्रोता हैं आकाशवाणी छतरपुर की।
1: जी जी,
0: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम दे रहे हैं आप लोग, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम श्रोताओं के लिए।
1: और इसके अलावा क्या क्या शौक रखते हैं आप?
0: सर शौक हमारा पढ़ाई करना और क्रिकेट खेलना, म्यूजिक सुनना, बस हमारे यही शौक।
1: तो आपको म्यूजिक किस प्रकार का पसंद आता है, नए पुराने कैसे?
0: सर हम पुराने गाने सर ज्यादा पसंद करते हैं सर।
1: जी जी, क्योंकि वो हमेशा सदाबहार गीत रहते हैं।
0: जी सर।
1: तो आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
0: चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुनवा दीजिए। चोरी चोरी चुपके चुपके
1: सुनवाते हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग।
0: जी सर, नमस्कार सर।
1: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। सर जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी मैं ग्राम तरसमा जिला मुरैना से हरबिलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ सर।
0: जी कैसे हैं आप हरबिलास जी?
1: आपकी दुआ इस कृपा से बहुत अच्छी तरह से है सर जी।
0: और क्या करते हैं आप?
1: खेती किसानी करता हूँ।
0: कितनी एकड़ जमीन है आपकी?
1: 20 बीघा जमीन है सर जी।
0: जी और सिंचाई के क्या साधन है?
1: निजी नलकूप हैं।
0: तो इस बार आप कौन सी फसल लेंगे आप?
1: इस समय अभी मूंग की फसल घर में आ चुकी है, अब खरीद के लिए बाजरे की फसल के लिए तैयारी चल रही है।
0: जी जी, आज 21 जून है, हम सभी लोग योग दिवस मना रहे हैं, तो किस प्रकार से आप अपने ख्याल रखते हैं?
1: सर जी योग तो तन मन के लिए बहुत जरूरी है, योग बगैर तो जीवन बेकार ही है। व्यायाम थोड़ा बहुत योग करते रहना चाहिए, अगर ज्यादा आसन न बने तो स्वास्थ्य पे ध्यान रखते हैं, कोई हमेशा बुखारे अनुलोम लोग, तो योग तो बहुत जरूरी है आज के जमाने में।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम योग करेंगे व्यायाम करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और जितने हम स्वस्थ रहेंगे उतने हम आगे बढ़ सकेंगे। जी कौन कौन है आपके घर में?
1: सर जी मैं संयुक्त परिवार में रहता हूँ, मेरे दो छोटे भाई हैं, अनुज बधुए हैं और नाती भी हैं मेरे।
0: जी जी जी, तो आकाशवाणी छतरपुर से कब से जुड़े हुए हैं आप?
1: सन 2012 से जुड़े हैं, से अब आगता कर रहे हैं।
0: जी तो कैसे लग रहे हैं आपको कार्यक्रम?
1: बहुत ही अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं, आपकी मेहनत को सलाम करता हूँ। विशेषकर ग्राम सभा कार्यक्रम में मुझे बहुत ही लाभ मिलता है सुन के।
0: जी जी जी,
1: तो उसमें खेती संबंधी जानकारी दी जाती है, उसे मैं अपनी कृषि कार्य में अच्छी ढंग से कर पाता हूँ।
0: जी जी, तो आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: फिल्म का नाम है सच्चा झूठा।
0: जी
1: मेरी प्यारी बहनियाँ बनेगी दुल्हनियाँ।
0: जब आप ये कार्यक्रम सुनते हैं तो कैसा महसूस करते हैं आप?
1: बहुत ही अपार खुशी होती है सर जी, सब तनाई दूर हो जाती है और बहुत सुकून मिलता है।
0: तो हम लोगों की कोशिश होती है जब आप लोग हमसे बातचीत करते हैं और जो गीत पसंद करते हैं तो उन गीतों को सजाकर हम आपके रेडियो सेट के माध्यम तक पहुंचाते हैं।
1: जी आप लोग भी बहुत मेहनत करते हैं सर जी, श्रोताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।
0: जितने भी सुनने वाले तमाम श्रोता हैं उनको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इतना स्नेह करते हैं हम लोगों से।
1: जी बहुत आत्मीयता से बात करते हैं सर जी।
0: कार्यक्रम में फोन लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनवाते हैं सच्चा झूठा फिल्म का ये गीत।
1: नमस्कार सर
0: जी। नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: ग्राम कनासी तहसील कोंच जिला जालौन से सोनू नायक बात कर रहे हैं सर।
0: क्या करते हैं आप?
1: जी मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली और मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी में।
0: जी तो आकाशवाणी छतरपुर से किस प्रकार से जुड़े आप?
1: जी हम ये मानो 10 साल से जुड़े सर, और पहले रेडियो पे सुनते थे, अब मोबाइल पे कार्यक्रम आने लगा तो उस पे सुनते हैं।
0: तो बताइए आज कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: आज सुनवा देना सर, फरिश्ते फिल्म का सुनवा देना, तेरे बिना जग लगता है सुन।
0: चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: ओके सर, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो हेलो फरमाइश।
0: जी हाँ, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: हरीश एकवार बोल रहे हैं, सानदा जिला सागर से।
0: क्या करते हैं आप?
1: हम सर हरियाणा में करते हैं जॉब, बहुत दिन से प्रयास कर रहे सर।
0: चलिए, आज प्रयास सफल हो गया है आपका।
1: बहुत आपसे बात करने की इच्छा थी हमारी।
0: जी जी, आप योगा भी करते हैं?
1: जी जी सर, घूमने भी जाते हैं, टाइम रहता है अपने, सुबह से घूमना फिरना रहता है।
0: अनुलोम विलोम, कपाल भारती, ये सब चीजें करते होंगे आप?
1: जी जी सर।
0: और आकाशवाणी छतरपुर के कौन कौन से कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं आपको?
1: हम सर ये हेलो फरमाइश सुनते हैं, और रमतुला कार्यक्रम आता है वो सुनते हैं।
0: जी,
1: लोकगीतों का कार्यक्रम आता है, सभी सुनते हैं सर। बहुत अच्छे कार्यक्रम लगते हैं, मैं नहीं लगाता कार्यक्रम में बहुत दिन से।
0: हाँ, आज आपने प्रयास किया तो देखिए आज आपका फोन लग गया है। तो कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: घर संसार फिल्म का है सर एक गीत है, हाथ सीता का राम को दिया, विदाई गीत है।
0: जी जी, ये फिल्म देखी आपने?
1: जी सर देखी है, शादी है हमारी घर पे तो सबको सुनना है, बहनों को।
0: जी जी जी बिल्कुल, हम एक गीत जरूर सुनवाएंगे आपको, आप सुनिएगा, पूरे घर में सुनवाइएगा, क्योंकि शादी का माहौल है और आपने पसंद किया है इस गीत को तो और चार चांद लग जाएंगे।
1: जी जी सर,
0: कार्यक्रम में फोन लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनवाते हैं घर संसार फिल्म का ये गीत।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे पत्रोत्तर का साप्ताहिक कार्यक्रम भवदी। प्रस्तुत करता थे क्षमा करें। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। सहयोग भूपेंद्र कुमार वर्मा का, प्रस्तुति थी रविंद्र कुमार प्रजापति की। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है पत्रोत्तर का साप्ताहिक कार्यक्रम भवदी। प्रस्तुति है रविंद्र कुमार प्रजापति की।

0: कार्यक्रम बहुत ही सुनने वाले सभी श्रोताओं को राजन जी आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
1: बहुत बहुत नमस्कार सर, और हमारे श्रोताओं को और आपको बहुत बहुत नमस्कार।
0: देखिए आज विशेष दिवस है, आज है 21 जून और 21 जून को हम प्रतिवर्ष मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस।
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें, योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है।
0: बिल्कुल,
1: हम सुबह से जैसे ही उठते हैं तो देखिए थोड़ा सा समय हमें योग को देना चाहिए। और अब तो आकाशवाणी छतरपुर के फेसबुक पेज पर भी जैसा आप लगातार योग के जितने आसन हैं, प्राणायाम के, वो सब डाल ही रहे हैं, तो उनकी जानकारी भी पहुंच रही है। तो निश्चित रूप से योग को अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं।
0: बिल्कुल, योग को अगर हम कहें तो ये देखिए शरीर हुआ, मन हुआ और आत्मा हुआ, इन सबके बीच में जो संतुलन बनाने का काम करता है वो करता है योग। और आज की देखिए राजन जी भागदौड़ भरी जिंदगी हम देख ही रहे हैं, तनाव और चिंता से लोग कितने ग्रसित हैं, और इससे शारीरिक समस्याएं तो होती ही है, मानसिक समस्याएं भी हो रही है, और इनमें कहीं ना कहीं योग हमारा बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है।
1: बिल्कुल सर, और कहा भी गया है करें योग रहें निरोग, इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर योग प्राणायाम हम जरूर करें, ताकि पूरे दिन भर की हमारी जो दिनचर्या है वो स्वस्थ रहेगी और हम जो भी काम कर रहे हैं वो बढ़िया तरीके से हम कर पाएंगे।
0: बिल्कुल, तो इसी सुविचार कहेंगे, इसके साथ शुरू करते हैं आज का बहुत ही कार्यक्रम। और देखिए पहला पत्र हमारे पास किन का है।
1: सर ये पहला पत्र ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है, लिख भेजा है ग्राम्बा पोस्ट सोरई जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से संतोष नामदेव अभय अनिल अजित ज्योति अनिता संजना रेखा भारती पूर्वी रूही अनु अनन्या शक्ति भक्ति आदर्श लव कुशवा इनके परिवार वाले
0: जी।
1: आप लिखते हैं, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता आदरणीय सर जी रविन्द्र सर और राजेंद्र जी को प्यार भरा नमस्कार। आगे आप लिखते हैं, 12 जून का आकाशवाणी के 90 वर्ष पर आदरणीय श्री रविन्द्र सर जी की पूर्व उद्घोषक छतरपुर के जाने माने आदरणीय श्री राकेश खरे जी से बातचीत बहुत ही सराहनीय लगी। उनकी आकाशवाणी के प्रति संवेदनाएं बहुत मन को भाई। साथ में कुछ अंश आकाशवाणी के पूर्व प्रसारित राकेश खरे जी से सुने, मन फिर प्रफुल्लित हो गया, जिसमें कमेंट्री के कुछ अंश यादें आला उदल के मुख्य किरदार की उनकी जुबानी झलकियां सुनी। सिर्फ एक बात की कमी रही, अगर थोड़ी सी झलक आप जब आप गुनगुना उठे इसी बातचीत में सुनवा देते तो और आनंद आ जाता। राकेश खरे जी की प्रस्तुति में जब आप गुनगुना उठे की प्रस्तुति लाजवाब रहती थी। इसी दिन का आपकी पसंद कार्यक्रम भी बहुत शानदार लगा। आगे 13 जून का भूपेंद्र सर जी की प्रस्तुति में वंदना कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत ही

0: प्यारे भजन सुनने मिले। इसी दिन पिता के अंतर्गत गीत गुंजन कार्यक्रम में पिता की मुख्य भूमिका पर प्रकाश डालते हुए भूपेंद्र जी ने चार चांद इस कार्यक्रम में लगा दिए। गीतों का समावेश बहुत ही प्यारा था। इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए भूपेंद्र जी को बधाई, साथ ही रविंद्र सर जी को भी इतने अच्छे कार्यक्रम बनाने के लिए बधाई। इसी दिन के लोक रंग में बहुत ही प्यारे लोकगीत बजाए गए। अंत में हास्य लोकगीत बहुत ही प्यारा लगा। इसी दिन का भूपेंद्र सर जी की प्रस्तुति में जब आप गुनगुना उठे, मित्रों की यादों की समीक्षा और गीतों का चयन लाजवाब लगा, साथ ही अधिक ईमेल शामिल हुए, कार्यक्रम रोचक कर दिया। अभी इसी हफ्ते आपकी पसंद और मनभावन में फेसबुक पर फरमाइश भी शामिल हुई, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया, इसलिए क्योंकि पत्र, ईमेल और फेसबुक पेज की फरमाइश तीनों का समावेश अच्छा नहीं लगा। इसके लिए अगर 30 मिनट का समय कहीं भी निकल आए तो अलग से कार्यक्रम पेश किया जाए तो और रोचकता आएगी। शेष अगले अंक में, और इसी के साथ हमारे संतोष जी अपने पत्र की समाप्ति करते हैं। सर
1: बिल्कुल आपका देखिए सुझाव बहुत अच्छा है कि तीनों का समावेश एक साथ, कई बार पत्र भी पर्याप्त शामिल नहीं होते,
0: कई बार सर रिपीटेशन होने लगता है।
1: बिल्कुल, तो हम विचार करते हैं कि अगर कोई समय मिलता है तो विशेष रूप से किसी दिन फेसबुक पर, किसी दिन ईमेल पर और किसी दिन सिर्फ पत्रों पर ऐसा रखा जाए कार्यक्रम। आपने हमारे यहाँ से 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उद्घोषक राकेश खरे जी के विचार इस भेंट वार्ता के माध्यम से जाने, और आपने देखिए पूरा आनंद लिया पूरी वार्ता का। इसके अलावा आपको 13 जून का वंदना से लेकर रात्रि तक के सभी कार्यक्रम पसंद आए हैं। ऐसे ही आप कार्यक्रमों को सुनते रहें और सुझाव हम तक भेजते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, उम्मीद है आप ऐसे ही अपने ईमेल हमें भेजते रहेंगे। और सर अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ ग्राम पोस्ट गौना कुसमार थाना सोजना तहसील मैरूनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार नामदेव, द्रौपदी रामदेवी, ब्रजेश कुमारी, अखिलेश कुमारी, लखनलाल चाहना, आकाश सूरवी और पायल रानी परी नामदेव का। आप लिखते हैं, दिनांक 11 जून गुरुवार को मनभावन कार्यक्रम सुना। प्रस्तुतकर्ता शिवेंद्र शुक्ला जी को कोटि कोटि धन्यवाद। आगे 12 जून शुक्रवार को सुबह 7:20 पर हमने काव्य पाठ सुना। इसके बाद 8:30 पर आकाशवाणी के 90 वर्ष और आकाशवाणी छतरपुर के 50 वर्ष इस कार्यक्रम के अंतर्गत आदरणीय पूर्व उद्घोषक राकेश खरे जी से रविन्द्र सर जी की बातचीत बहुत अच्छी लगी। ये कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आया। और आगे 10:30 पर आपकी पसंद में बहुत अच्छे गीत हमें सुनने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष ताम्रकार जी को। 9 रजनी यादव से लोकगीत सुने इस लोकरंग कार्यक्रम में, ये भी हमें बहुत अच्छा लगा। और आगे आप लिखते हैं, शाम की सभा में ग्राम सभा में रामचरितमानस प्रवचन सुनकर मजा आ गया। 13 जून शनिवार को सुबह खेती किसानी सुना, कार्यक्रम अच्छा लगा। इसके बाद 9:30 पर कार्यक्रम जब आप गुनगुना उठे सुना, बहुत सुंदर रहा। इसमें भूपेंद्र वर्मा जी ने बहुत सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया, हमारी ओर से उन्हें कोटि कोटि बधाई। 10:30 पर आपकी पसंद भी बहुत अच्छा रहा, एक बार फिर भूपेंद्र वर्मा जी को बारंबार बधाई। शाम की सभा में फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो लोक रंजन बहुत अच्छा लगा। 14 जून रविवार को सुबह 7:20 पर हिंदी महक के अंतर्गत हमने काव्य पाठ सुना, जिसमें रोहित रजक जी ने बहुत अच्छा काव्य प्रस्तुत किया, उन्हें बधाई। 8:30 पर धारावाहिक गीत गीता में पुरुषोत्तम योग सुना, काफी अच्छा लगा, बहुत अच्छा ये धारावाहिक है। 16 जून मंगलवार को आपकी पसंद सुना, अच्छा लगा। प्रस्तुतकर्ता एम आलम खान जी को कोटि कोटि धन्यवाद। ग्राम सभा में लोक मंजरी कार्यक्रम का आनंद उठाया, रात्रि में फिर मनभावन सुना। 17 जून को 6:35 पर सुबह खेती किसानी में प्रमाणित बीजों के संबंध में हमने जानकारी सुनी, बहुत अच्छी लगी। सुबह 7:20 पर वार्ता सुनी कैलाश प्रसाद सोनी से, बहुत अच्छी लगी। 8:30 पर गीत गीता इस धारावाहिक में हमने सुना भागवत के बारे में, अच्छा लगा। शाम की सभा में शाम 6:35 पर लोकधारा में कल्लू कुर्मी से लोकगीतों का आनंद उठाया, रात्रि में 10 मनभावन सुना। प्रस्तुतकर्ता प्रणति चतुर्वेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे दीपक नामदेव जी अपने पत्र की समाप्ति करते हैं। सर
1: आपने इस पत्र के माध्यम से 11 जून से लेकर 17 जून तक के कार्यक्रमों का जिक्र किया है, जिसमें मनभावन, आपके पसंद जब आप गुनगुना उठे हो, हेलो लोकरंजन, फरमाइश, खेती किसानी, यहाँ तक कि स्वस्थ जीवन प्रायोजित कार्यक्रम की भी बात कही है
0: जी।
1: गीत गीता आप देखिए धारावाहिक सुन रहे हैं। इसके अलावा देखिए आपने आकाशवाणी के 90 वर्ष और आकाशवाणी छतरपुर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारे वरिष्ठ उद्घोषक राकेश खरे जी से भेंट वार्ता सुनी है। उनके अनुभव उनके संस्मरण नई पीढ़ी के लिए देखिए उपयोगी सिद्ध होंगे, यही देखिए भेंट वार्ता का उद्देश्य रहता है। बहुत ही कार्यक्रम के प्रति भी देखिए आपने स्नेह व्यक्त किया है कि न्यूज़ ऑन AIRF बंद हो गया उसके बावजूद

0: भी आपने रेडियो सेट के माध्यम से मीडियम वेव पर यह प्रसारण सुना, ऐसे ही इसने आकाशवाणी छतरपुर के प्रति बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी और आपके पूरी टीम को। ऐसे ही आकाशवाणी छतरपुर सुनते रहें और अपने ईमेल हमें भेजते रहें। और सर, अगला ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता का।
0: जी,
1: आप लिखते हैं, नमस्कार। लगभग प्रत्येक दिन जो व्यक्ति चिंतन के माध्यम से हमारे जीवन में प्रेरक विचारों का समावेश अनवरत रूप से करता चला आ रहा है, और न सिर्फ आकाशवाणी छतरपुर से बल्कि आकाशवाणी लखनऊ के प्रातःकालीन प्रसारण के आज का सुविचार कार्यक्रम में भी यदा कदा अपनी आवाज का जादू बिखेरता रहता है, क्योंकि AIR छतरपुर के चिंतन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम आकाशवाणी लखनऊ से आज का सुविचार कार्यक्रम में कई बार राकेश खरे जी की सुमधुर आवाज में सुन चुके हैं। शुक्रवार 12 जून को आकाशवाणी के 90वीं वर्षगांठ और आकाशवाणी छतरपुर की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने की खुशी में आप हम श्रोताओं को जो विशेष भेंटवार्ता का क्रम जारी रखे हुए हैं, उसके तहत पूरे 60 मिनट तक रविन्द्र प्रजापति सर जी ने पूर्व प्रसारक उद्घोषक राकेश खरे जी से जो रोचक, दिलचस्प और आकाशवाणी छतरपुर से संबंधित हमारी जानकारी बढ़ाने वाली भेंटवार्ता का प्रसारण किया, उसको सुनकर हमें फक्र हुआ कि हम AIR छतरपुर के नियमित श्रोता हैं, जहां पर राकेश खरे जैसा हरफन मौला उद्घोषक कार्यक्रम कर चुके हैं। 9 अगस्त 1976 से राकेश जी AIR छतरपुर से जुड़ चुके थे, जब उन्होंने बाल मेला कार्यक्रम में भाग लिया था, फिर युववाणी में कैजुअल कंपेयर बने। AIR छतरपुर से प्रसारित अनगिनत नाटकों में उन्होंने अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के दिलों पर अमिट प्रभाव छोड़ा। ऐसी भेंट वार्ताएं सुनकर हमें अपनत्व का एहसास होता है। हमें ऐसा लगता है जैसे हमने अपने परिवार के किसी सदस्य के बारे में जान लिया हो। AIR छतरपुर और हमारे रविंद्र कुमार प्रजापति सर जी को धन्यवाद। आगे आप लिखते हैं, 13 जून का गीत गुंजन जो पिता को समर्पित था, अपनी भावपूर्ण काव्यात्मक पंक्तियों और मर्मस्पर्शी आलेख और विषयानुकूल गीतों की वजह से अविस्मरणीय रहा। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रविन्द्र कुमार प्रजापति जी और कंपेयर भूपेंद्र वर्मा जी, एक क्लासिक प्रस्तुति के लिए उन्हें बधाई। आगे आप लिखते हैं, युववाणी की ज्ञान वर्धक कार्यक्रम सवाल हमारे जवाब आपके के लिए हमारा एक सुझाव है कि आप प्रत्येक अंक में नए नए सवालों को शामिल किया करें, क्योंकि आपके कंपेयर्स द्वारा अंक 124 में 8 प्रश्नों को पूर्व प्रसारित अंकों से ही छांट कर सम्मिलित कर दिया गया, और अंक 125 में ऐसे 7 प्रश्नों को पुनः शामिल किया गया जो पूर्व प्रसारित अंकों में शामिल हो चुके थे। ऐसा करने से कार्यक्रम की रोचकता और हमारे ज्ञान का दायरा दोनों कम हो जाते हैं। उम्मीद है आप युवा कंपेयर्स को समझाइश देकर उन्हें नए नए प्रश्नों को शामिल करने की प्रेरणा जरूर देंगे। श्रीमद् भागवत गीता पर आधारित रेडियो धारावाहिक गीत गीता को निरंतर सुन रहे हैं। रविवार 14 जून को इसके भाग 15 में पुरुषोत्तम योग विषय पर और सोमवार 15 जून को देवासुर संपद विभाग योग विषय पर सरल चौपाइयों के संगीतमय गान को सुनकर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार अपने मन और मस्तिष्क में किया। धन्यवाद। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग हमारे भौगोलिक ज्ञान को समृद्ध करने के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य में भी हमारा परिचय बहुत ही प्रभावी ढंग से करवाता है। 16 जून के अंक में अमरीकी लेखक ओ हेनरी की मार्मिक कहानी द लास्ट लीफ की नाट्य प्रस्तुति सुनी, और सुनकर पूरी कहानी का संदेश त्याग दोस्ती उम्मीद है जाना। AIR छतरपुर को धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे कृष्ण कुमार गुप्ता जी अपने पत्र की समाप्ति करते हैं। सर,
0: देखिए, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपने देखिए वरिष्ठ उद्घोषक दोनों उद्घोषकों राकेश खरे जी और श्रीहर्ष पांडे के संस्मरण, उनके विचार, उनके अनुभव भेंट वार्ता के माध्यम से सुने, और आपने उनकी जो बातें हैं अपनी स्मृतियों से जोड़ा जब जब आपने उनके कार्यक्रम सुने, जब जब आप आकाशवाणी आए। इसके अलावा आपको 13 जून का पिता पर केंद्रित गीत गुंजन कार्यक्रम पसंद आया है, और आपने जो सुझाव लिखा है युवाणी कार्यक्रम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको देखिए हमने नोट कर लिया है और आपको रिपीटेशन नहीं मिलेगा
1: जी।
0: इसके अलावा आपने देखिए NCERT, हिंदी महक, बुंदेली सुगंध, इन सभी के वार्ताकारों कलाकारों तक आपने बधाइयां पहुंचाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण कुमार गुप्ता जी, और ऐसे ही आप अपनी मालूमात जारी रखेंगे और हमें अपने विस्तृत पत्र भेजते रहेंगे। और सर, अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है ग्राम खक्कल तहसील कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर का। आप लिखते हैं, आदरणीय रविन्द्र प्रजापति जी एवं राजेंद्र जी आप दोनों को स्नेह नमस्कार। आगे आप लिखते हैं, दिनांक 12 जून को हिंदी महक के क्रम में संध्या निगम जी से काव्य पाठ सुना, जिसमें उनकी विभिन्न कविताएं प्रेरणादायक लगी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी दिन को लोक रंग कार्यक्रम में रजनी यादव से उनके बुंदेली गीत सुने जो

0: विभिन्न विधाओं पर आधारित थी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी दिन को विशेष कार्यक्रम सुना, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण एवं आकाशवाणी छतरपुर के 50 वर्ष पूर्ण होने पर, जिसमें आकाशवाणी छतरपुर के पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक आदरणीय श्री राकेश खरे जी से रविन्द्र सर जी की बातचीत बहुत अच्छी लगी, जिसमें आदरणीय राकेश जी ने आकाशवाणी की तमाम वो यादें साझा की जिन यादों से काफी श्रोता वंचित थे। कार्यक्रम इतना अच्छा लगा कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी दिन को आपकी पसंद कार्यक्रम सुना, जिसमें अयाज सिद्दीकी जी ने बहुत ही मधुर गीत सुनवाए एवं अधिक से अधिक पत्र एवं ईमेल शामिल किए। कार्यक्रम मनोरंजन पूर्ण रहा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी दिन को महिला सभा में डॉक्टर आराधना सिंह बुंदेला जी से काव्य पाठ सुना, बहुत ही उपयोगी जानकारियां सुनी, कार्यक्रम ज्ञानपूर्ण लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी दिन को युववाणी में वार्ता सुनी, पत्रकारिता में युवाओं की सहभागिता, इस वार्ता के माध्यम से जाना कि पत्रकारिता एक रोजगार नहीं है, पत्रकारिता समाज के हित के लिए है, जिससे हम समाज की आवाज को ऊपर तक ले जा सकते हैं। वार्ता बहुत ही अच्छी लगी, वार्ताकार थे अरविंद प्रजापति जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी वार्ता सुनवाने के लिए। इसी दिन को ग्राम सभा में मानस प्रवचन सुना, प्रसंग था रानियों का गर्भवती होना, प्रवचनकर्ता थे महेश कुमार अवस्थी जी। साथ ही एक वार्ता सुनी बाजरा के प्रमुख रोग और उनके प्रबंधन पर, वार्ता बहुत ही उपयोगी लगी, वार्ताकार थी डॉक्टर सुचरिता महापात्रा, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। 13 जून को बुंदेली सुगंध में घासीराम नामदेव से काव्य पाठ सुना, उनकी विभिन्न काव्य रचनाएं सुनकर मन गदगद हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजूर है मुझे वो धूप की तपेश भी, जिस छांव में मेरे पिता का साया पल रहा हो, मेरी पहचान आपसे है, मेरा वजूद का आधार आप हैं, अगर माँ जमीन है तो मेरा आसमान आप हैं, उम्र भर जिनके साये में सुकून से हम जिए वो और कोई नहीं मेरे पिता आप हैं। इसी तरह पिता पर आधारित गीत गुंजन कार्यक्रम सुना 13 जून को, जिसे बहुत ही खूबसूरती से पेश किया भूपेंद्र वर्मा जी ने, इतना अच्छा कार्यक्रम पेश करने के लिए उन्हें धन्यवाद। इसी दिन को जब आप गुनगुना उठे कार्यक्रम सुना, जिसमें श्रोताओं के पत्र एवं भूपेंद्र जी का पत्रों का पढ़ना बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। 14 जून को हिंदी महक के अंतर्गत हिंदी का पाठ सुना, रोहित रजक जी से उनकी कविताएं मन को लुभा गईं, बधाई। इसी दिन को हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुना, जिसमें हमेशा की तरह आदरणीय श्री रविन्द्र कुमार प्रजापति जी की श्रोताओं से की गई बातचीत एवं श्रोताओं के पसंद के गीत बजाए गए, बहुत अच्छे लगे, शानदार लगे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी दिन को साप्ताहिक कार्यक्रम पत्रोत्तर भवदीय सुना, जिसमें राजेंद्र जी ने पत्रों को पढ़ा और आदरणीय रविन्द्र सर जी ने बड़ी शालीनता से उनके उत्तर दिए, अति उत्तम लगा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। 15 जून को चित्रकूट प्रवास पर होने के कारण कार्यक्रम नहीं सुन पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। 16 जून को बुंदेली सुगंध में काव्य पाठ सुना, जवाहरलाल द्विवेदी जी से उनकी काव्य रचना बहुत ही मार्मिक लगी, बहुत बहुत धन्यवाद। 17 जून को हिंदी महक के अंतर्गत वार्ता सुनी, सूरदास के साहित्य में अध्यात्म, वार्ताकार थे कैलाश प्रसाद सोनी, बहुत ही ज्ञानपूर्ण लगी ये वार्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी दिन को रात्रि में फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन सुना, जिसमें गीतों का समावेश एवं अधिक से अधिक पत्र एवं ईमेल शामिल हुए, इतना अच्छा कार्यक्रम पेश करने के लिए डॉक्टर प्रणति चतुर्वेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। 18 जून को आपकी पसंद कार्यक्रम सुना, जिसमें पूर्णिमा चतुर्वेदी जी ने बहुत ही अच्छे अच्छे गीत सुनाए, कार्यक्रम मनोरंजन पूर्ण रहा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी दिन को रात्रि में विशेष कार्यक्रम सुना, आकाशवाणी के 90 वर्ष और आकाशवाणी छतरपुर के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी छतरपुर के स्टूडियो में आए आकाशवाणी छतरपुर के वरिष्ठ पूर्व उद्घोषक श्री हर्ष पांडे जी से रविन्द्र सर जी की बातचीत सुनी हमने, बहुत अच्छी लगी, जिसमें आदरणीय श्री हर्ष पांडे जी ने अपनी जो आकाशवाणी के साथ स्वर्णिम यात्रा थी उसके अनुभव हम सभी को सुनवाए, साझा किए, एवं 8 वर्ष बाद आदरणीय सर जी को सुनकर वही पुराने दिनों की यादें फिर से ताजा हो गई। इतना अच्छा कार्यक्रम सुनवाने के लिए आदरणीय रविन्द्र सर जी एवं आदरणीय श्री हर्ष पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, अगले पत्र अगली समीक्षा के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार।
1: देखिए, आपने लिखा है कि चित्रकूट के दौरान आप कार्यक्रम नहीं सुन पाए, तो देखिए आपकी जो विनम्र सूचना है ये भी एक नियमित श्रोता होने की पहचान दिलाती है, और आपने एक बार पत्र में लिखा था कि अब हम कार्यक्रम नहीं सुनेंगे ना ही पत्र भेजेंगे, तो हमें लगता है नाराजगी दूर हो गई, और देखिए दोबारा आप हमसे जुड़े हैं, तो पुनः हम स्वागत करते हैं।
0: बिल्कुल स्वागत करते हैं दीपक जी।
1: आपने हमारे यहाँ के आकाशवाणी छतरपुर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो श्री हर्ष पांडे और राकेश खरे जी से भेंट वार्ता सुनी है, तो देखिए इन भेंट वार्ताओं का उद्देश्य भी यही है कि जो हमारी आकाशवाणी की गौरवशाली इतिहास परंपरा और जो कुछ कुछ बातें इस आकाशवाणी से जुड़ी हुई हैं जिनसे हम सभी अछूते हैं, नई युवा पीढ़ी नहीं जानती है, वो सब आपके सामने ला सके और

0: खासकर युवा पीढ़ी को एक प्रेरणा मिल सके कि आकाशवाणी छतरपुर जो है वो बुंदेलखंड की धड़कन है और यहाँ की धरोहर है और बुंदेली बोली को बढ़ाने में देखिए आकाशवाणी छतरपुर निरंतर काम करता रहता है। इसके अलावा आपको युवाणी में एक वार्ता पसंद आई है, पत्रकारिता विषय पर ग्राम सभा में भी आपको मानस प्रवचन हो, गीत गुंजन कार्यक्रम हो, हिंदी महक, लोक रंग, महिला सभा, मन भवन, बहुत ही सभी कार्यक्रम आपको पसंद आए हैं 12 जून से 18 जून तक के। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और सर अगला ये ईमेल हमें मिला हुआ है बन्नी बुजुर्ग पलीरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, हमारे श्रोता भाई हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा और उनके परिवार वाले। आगे आप लिखते हैं, दिनांक 12 जून शुक्रवार को सुबह 8:30 पर आकाशवाणी के 90 वर्ष और आकाशवाणी छतरपुर के 50 वर्ष पूरे होने पर पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक आदरणीय श्री राकेश खरे जी से आदरणीय सर रविंद्र कुमार प्रजापति सर जी की बातचीत सुनी, बहुत अच्छी लगी, जिसमें राकेश खरे जी ने नाटक में बूढ़े आदमी की आवाज में बात करना जानकारी हमें दी बताया, सबसे अच्छा लगा। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए रविंद्र प्रजापति सर जी और आदरणीय राकेश खरे सर जी को बहुत बहुत बधाई इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए। आगे आप लिखते हैं, 13 जून को जब आप गुनगुना उठे कार्यक्रम सुना, कार्यक्रम बहुत ही लाजवाब रहा, भूपेंद्र वर्मा जी और हमारे आदरणीय प्रस्तुतकर्ता रविंद्र कुमार प्रजापति सर जी को बहुत बहुत बधाई। 18 जून को रात्रि 9:30 पर आदरणीय सर रविंद्र कुमार प्रजापति जी की पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक आदरणीय श्री हर्ष पांडेय जी से की गई बातचीत बहुत पसंद आई, बहुत ही लाजवाब बातें हुई। आदरणीय सर रविंद्र प्रजापति सर जी ने आदरणीय श्री हर्ष पांडेय जी से बहुत मीठी मीठी बातें पूछी और उनके बारे में, उनकी यादों के बारे में हमने महत्वपूर्ण अनुभव जाने और वाकई पुरानी यादें ताजा हो गई। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए हमारे आदरणीय रविंद्र कुमार प्रजापति सर जी को और इतनी अच्छी बातचीत के लिए हमारे श्री हर्ष पांडेय जी को बारंबार बधाई। और इसी के साथ हमारे ब्रजेंद्र विश्वकर्मा जी अपने पत्र की समाप्ति करते हैं। सर
0: देखिए, आकाशवाणी के स्वर्णिम इतिहास से जुड़े जो संस्मरण थे हमारे दोनों उद्घोषकों महोदयों ने आपको सुनवाए, उनकी जो अनुभूतियां हैं, उनके जो अनुभव हैं, उनका जो स्वर है, उनसे देखिए एक बार फिर आप रूबरू हुए और आपने उनके अनुभव, उनकी आवाज और उनके अनाउंसमेंट का तरीका आपने एक बार पुनः सुना। आपने लिखा है कि राकेश खरे जी के जो बातचीत के दौरान नाट्य अभिनय किया उन्होंने और विभिन्न स्वर शैलियां निकाली, वो आपको बहुत पसंद आई है इस भेंट वार्ता के अंश में। 13 जून को जब आप गुनगुना उठे कार्यक्रम भी आपको बहुत पसंद आया है। 18 जून को आपने फिर एक बार फिर लिखा है कि श्रीहर्ष पांडे जी के साथ जो आपकी भेंट वार्ता थी, वो हमें जो यादें थी उनके साथ वो सभी तरोताजा हो गई, इसके लिए आपने विशेष रूप से बारम्बार धन्यवाद कहा है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आकाशवाणी छतरपुर से जुड़ने के लिए, कार्यक्रम सुनने के लिए और इस पत्र को लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेंद्र जी और उम्मीद है आपके पत्र हमें लगातार मिलते रहेंगे। और सर अगला ईमेल हमें मिला हुआ है अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती वंदना गौहर और चंद्रेश गौहर जी का
0: जी।
1: आप लिखते हैं, महोदय जी आपके केंद्र से प्रसारित श्रोताओं का बेहद ही लोकप्रिय एवं पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश का मुख्य आकर्षण ये है कि श्रोता सीधे फोन करके कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं। ये रेडियो को एक तरफा माध्यम न रखकर श्रोताओं को अपने मनपसंद गीत सुनाने का एक सीधा मंच प्रदान करता है। देश के कोने कोने में रहने वाले श्रोताओं जैसे सुदूर गांवों के कारीगरों, दुकानदारों, युवाओं और बुजुर्गों सहित सभी को जोड़ता है। इस कार्यक्रम को प्रस्तुतकर्ता का सहज और मित्रवत अंदाज श्रोताओं को बहुत ही भाता है। श्रोता सिर्फ गीत नहीं सुनते बल्कि अपने व्यक्तित्व, अनुभव, उनके संघर्षों और उनकी कहानियों पर भी अपनी अपनी राय रखते हैं। आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम हेलो फरमाइश का प्रसारण दिनांक 14 जून को सुना, बहुत ही अच्छा लगा। इसी दिन हमने कार्यक्रम हिंदी महक में हिंदी का पाठ सुना, बहुत अच्छा लगा। इसी दिन हमने ग्राम सभा में एक बहुत ही जनोपयोगी वार्ता कीट नाशकों का सुरक्षित और वैज्ञानिक प्रयोग सुनी, बहुत ही अच्छी लगी, समसामयिक रही। कार्यक्रम बाल मेला में प्रसारित काव्य पाठ सुना, अच्छा लगा। दिनांक 15 जून को हिंदी महक में प्रसारित काव्य पाठ सुना, बहुत ही अच्छा लगा। इसी दिन कार्यक्रम रसावतरण में कवि गोष्ठी में प्रसारित कवियों की रचनाएं बहुत ही पसंद आई। कार्यक्रम युववाणी में प्रसारित काव्य पाठ बहुत ही अच्छा लगा। दिनांक 16 जून को कार्यक्रम बुंदेली सुगंध में बुंदेली काव्य पाठ मन को भा गया। इसी दिन प्रसारित कार्यक्रम रसावतरण में आमंत्रित कवियों की रचनाएं बहुत ही पसंद आई। 17 जून को कार्यक्रम हिंदी महक में हमने एक वार्ता सुनी, सूरदास के साहित्य में अध्यात्म, ये वार्ता पुनः प्रसारित वार्ता थी जिसे हमने पिछले माह ही सुना था। इस वार्ता को इतनी जल्द ही प्रसारित क्यों किया गया, ये बात मेरे समझ से परे है। कृपया निवेदन है कि किसी भी वार्ता को पुनः प्रसारित करने के लिए कम से कम 3 माह का अंतर रखें ताकि कार्यक्रमों की रोचकता बनी रहे। इसी दिन हमने ग्राम सभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जनउपयोगी भेंट वार्ता

0: सुनी अच्छी लगी। दिनांक 18 जून को हमने कार्यक्रम बुंदेली सुगंध में बुंदेली वार्ता सुनी, बहुत ही अच्छी लगी। इसी दिन रसावतरण में कवियों की रचनाएं मन को भा गईं। उक्त सभी कार्यक्रमों के प्रस्तुतकर्ता, संकलनकर्ता, वार्ताकारों, आमंत्रित कवियों, विषय विशेषज्ञों और प्रसारण से जुड़े सभी साथियों को हमारा दिल से साधुवाद और आभार स्वीकार हो। शेष अगले पत्र में एक नई समीक्षा के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हमारा अभिवादन स्वीकार करें।
1: देखिए, आपने एक वार्ता रिपीट की बात कही है, तो वार्ता रिपीट नहीं थी, ना ही पिछले महीने गई है, नई ही वार्ता थी कैलाश प्रसाद सोनी की सूरदास जी के संबंध में। आपने इस पत्र के माध्यम से हेलो फरमाइश कार्यक्रम के संबंध में देखिए आपने विचार लिखे हैं, बहुत ही अच्छे विचार हैं कि यह देखिए कार्यक्रम श्रोताओं और आकाशवाणी के मध्य एक सजीव संवाद स्थापित करता है और देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ने वाले श्रोताओं की सहभागिता रहती है, उनके अनुभव, विचार, पसंद के गीत इस कार्यक्रम को विशेष बनाती है। आपने हिन्दी महक, ग्राम सभा, बाल मेला, 15 जून का रसावतरण, 16 जून का बुंदेली सुगंध और 17 जून का हिंदी महक, ये सभी कार्यक्रम देखिए आपने सुने हैं और श्रोताओं की ऐसी देखिए सार्थक जो प्रतिक्रियाएं कार्यक्रम के प्रति प्राप्त होती हैं, तो वार्ताकारों, कलाकारों, प्रस्तुतकर्ताओं का भी देखिए उत्साह वर्धन तो होता ही है। 18 जून का भी देखिए आपने बुंदेली सुगंध और रसावतरण की बात कही है, तो कार्यक्रम के जो प्रस्तुतकर्ता हैं, संकलनकर्ता, वार्ताकार हैं, सभी कवि विषय विशेषज्ञों के प्रति जो आपके जो शुभ भाव कहेंगे, उनके कार्य के प्रति जो आपका सम्मान है, बिल्कुल उनका जो मन है प्रसन्न हो जाएगा आपके इन को सुनकर और अपना जो क्षेत्र है उसमें और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही निरंतर आपका सहयोग, आत्मीयता और मार्गदर्शन समय समय पर प्राप्त होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए।
0: और सर, ये कार्यक्रम का अगला पत्र हमें मिला हुआ है, लिख भेजा है बाबू यादव, श्रीमती मनीषा यादव, दुर्गेश यादव, सीमा यादव, अन्नू यादव और अरुणेश यादव ने, देवकी विहार कॉलोनी सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से।
1: जी,
0: आप लिखते हैं, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हूँ आदरणीय रविन्द्र कुमार प्रजापति, कार्यक्रम प्रमुख सर जी और हमारे राजेंद्र जी को प्यार भरा नमस्कार। आप स्वीकार करें। आगे आप लिखते हैं, ना करता शिकायत जमाने से कोई, अगर मान जाता मनाने से कोई, किसी को क्यों याद करता है कोई, अगर भूल जाता भुलाने से कोई। इन पंक्तियों के साथ आगे आपने लिखा है, पहले के श्रोताओं के पत्रों में भवदीय में एक नाम की अक्सर तारीफ सुनता था, लेकिन उस आवाज को मैंने सुना नहीं, तो जिज्ञासा रहती थी कि काश उस आवाज को कभी हम भी सुन पाते और चलते समय के साथ वो घड़ी भी जब आई तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दिनांक 18 जून 2026 को रात 9:30 से 11 बजे तक कार्यक्रम सुना, आकाशवाणी के 90 वर्ष और आकाशवाणी छतरपुर के 50 वर्ष। इसमें एक भेंट वार्ता हमारे आदरणीय रविन्द्र कुमार प्रजापति जी ने पूर्व उद्घोषक आदरणीय श्री हर्ष पांडे जी से की। अनवरत 1.5 घंटे तक लगातार आदरणीय रविन्द्र कुमार प्रजापति जी ने आदरणीय श्री हर्ष पांडे जी से सवाल पूछे और उन्होंने जवाब दिए। इस बीच में आपने बताया कि कैसे हम सागर जिले से छतरपुर तक का सफर तय करते रहे और कैसे आकाशवाणी तक आए, तमाम रोचक बातों से रूबरू कराया, लगातार उनकी बातों को सुनता रहा और कैसे 1.5 घंटा का समय बीत गया पता ही नहीं चला। इतनी सुंदर भेंट वार्ता के लिए आदरणीय रविन्द्र कुमार प्रजापति जी को और आदरणीय श्री हर्ष पांडे जी को दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी भेंट वार्ता के क्रम में दिनांक 12 जून 2026 की सुबह 8:30 से लेकर 9:30 तक पूर्व उद्घोषक आदरणीय राकेश खरे जी से कार्यक्रम प्रमुख आदरणीय रविन्द्र कुमार प्रजापति जी की बातचीत हमें सुनने को मिली। इस भेंट वार्ता में भी आपने आकाशवाणी के सफर का बहुत अच्छा अनुभव साझा किया, कैसे आकाशवाणी तक आपका आना हुआ, फिर कैसे आप कार्यक्रम तैयार करते रहे, कैसे फुटबॉल की कमेंट्री आपने की, कैसे नाटकों में संवाद बोलते रहे और कैसे आपने ताल बेहट मेले का आंखों देखा हाल लगातार 3 घंटे करके रिकॉर्ड बनाया, सुनकर मन प्रसन्न हो गया। इस भेंट वार्ता के लिए आप दोनों को हृदय से धन्यवाद करते हैं। दिनांक 12 जून 2026 की शाम ग्राम सभा में मानस प्रवचन महेश कुमार अवस्थी जी से सुना, अच्छा लगा, प्रस्तुतकर्ता और प्रवचनकर्ता दोनों को दिल से धन्यवाद। दिनांक 13 जून 2026 को सुबह बुंदेली सुगंध के अंतर्गत बुंदेली काव्य पाठ घासीराम नामदेव जी से सुना, आपकी रचनाएं बहुत अच्छी लगी। इसी दिन सुबह कार्यक्रम गीत गुंजन में पिता और पुत्र के रिश्ते पर बड़े ही खूबसूरत संवाद के साथ और दिल को छू लेने वाले गानों के साथ कार्यक्रम सुना, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे संवाद इसमें डाले, साथ ही रिश्ते से जुड़े गानों को शामिल करके कार्यक्रम में जान डाल दी। आजकल धारावाहिक गीत गीता की अच्छी प्रस्तुति सुनने को मिल रही है। इसी क्रम में दिनांक 14 जून 2026 को कार्यक्रम शीर्षक था पुरुषोत्तम योग, बहुत ही अच्छा ज्ञानार्जन हुआ। दिनांक 16 जून 2026 को रसावतरण में बुंदेली कवि गोष्ठी सुनने को मिली। सभी कवियों की रचनाएं बहुत अच्छी लगी। सभी कवि को दिल से धन्यवाद। दिनांक 17 जून 2026 को आकाशवाणी के 90 वर्ष होने पर

0: एक कवि गोष्ठी सुनी, सभी कवियों की रचनाएं एक से बढ़कर एक लगी। एक रचना तो दिल को छू गई, मुफलिसी मैंने तेरा ये रूप अक्सर देखा, आंधियां आई तो उड़ता हुआ छप्पर देखा, मैं तो कतरा रहा हूँ जहाँ में मेरी तौकीर क्या है, तेरी चाहत में तो बेताब समंदर देखा। सभी कवियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में सभी कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी छतरपुर की पूरी टीम का दिल से धन्यवाद।
1: देखिए, अपने दोनों उद्घोषकों के साथ जो भेंटवार्ता है, पूरे मनोयोग के साथ पूरा समय देकर आपने सुना है, उनके संस्मरण उनके अनुभव आपने जाने हैं आकाशवाणी के माध्यम से। बिल्कुल, जो वरिष्ठ उद्घोषकों की जो स्मृतियां हैं, वास्तव में आकाशवाणी की समृद्ध परंपरा और गौरवशाली इतिहास की अमूल्य धरोहर है। अपने 12 जून को प्रसारित ग्राम सभा में मानस प्रवचन हो, 13 जून को बुंदेली सुगंध में कविता पाठ हो, और इसके अलावा जो फरमाइशी कार्यक्रम है और काव्य गोष्ठियां हैं हमारे यहाँ से, इन सबका आपने देखिए आनंद लिया है। और आपने देखिए कविताओं की एक लाइन भी लिखी है पत्र में कि आपने क्या सुना है और कौन सी रचना बहुत अच्छी लगी है, तो ये देखिए नियमित श्रोता होने की पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपनी समीक्षा से हमें अवगत कराते रहें, पत्र भेजते रहें। धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर, अब पत्र पूरे हो चुके हैं, अब कार्यक्रम को हम समेटते हैं।
1: बिल्कुल, तो जाने से पहले जैसा कि हम बताते हैं भवदीय कार्यक्रम में डाक का पता और ईमेल का पता।
0: डाक का पता है कार्यक्रम भवदीय द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी छतरपुर मध्य प्रदेश, पिन 471001। और ईमेल का पता
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुने।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। सभी सुनने वालों को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि फोन करें गीत सुने कार्यक्रम रिकॉर्ड किया जाता है सुबह 10:30 से 11 बजे तक। हमारा टेलीफोन नंबर है 2660902 और एसटीडी कोड है 0755। इस दौरान फोन करके आप भी कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते। एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि कॉल लगाने से पहले अपने पास कम से कम 2 गीत और उनकी फिल्मों के नाम अवश्य तैयार रखिए। देखते हैं आज हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो,
4: फोन करें गीत सुने।
3: जी फोन करें गीत सुने, कौन बोल रहे हैं बताइए।
4: जी मैं लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहा हूँ सर, ग्राम बोतराई तहसील पथरिया जिला दमोह।
3: तो लक्ष्मण सिंह जी क्या करते हैं आप?
4: सर मैं खेती बाड़ी करता हूँ।
3: खेती बाड़ी करते हैं, अभी खेत में क्या बोया है?
4: तो तैयारी चल रही सर, सोयाबीन बो
3: भी की। जी अभी आप खेत तैयार कर रहे हैं ताकि उस बोया जा सके।
4: गर्मियों में मूंग बोई थी सर, कटाई हो गए, बखानी वगैरह हो गई है सर।
3: तो अब क्या बोने का इरादा है आपका?
4: अब सर सोयाबीन और उड़द बोएंगे, मक्का भी, तीनों चीजों को बोएंगे।
3: तो क्या सुनना चाहेंगे आज आप?
4: आज फिल्म हरियाली और रास्ता को सुनना है सर, मुकेश की आवाज में गीत है सर
3: जी,
4: तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ।
3: ये गीत क्यों सुनना चाहते हैं आप?
4: सर बहुत पसंद है उसके बोल अच्छे।
3: जी जी बोल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़ा सेट सॉन्ग है हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत का आनंद लीजिए।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो सर, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी मध्य प्रदेश फोन करेगी, सुने।
0: सर नमस्कार, मैं गांव लिहेदीगर तालुका जामनेर जिला जलगा महाराष्ट्र से दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ।
1: बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, दिनेश चौहान जी। क्या करते हैं आप?
0: सर मैं इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ, मोटर वायरिंग का।
1: मोटर वायरिंग का काम करते हैं?
0: कूलर पंखा होता है, सीलिंग फैन होता है, वो जल जाते हैं ना।
1: बहुत बढ़िया, तो अभी तो आपका बिल्कुल सीजन का टाइम चल रहा होगा, अभी तो बहुत बिजी होंगे आप।
0: हाँ बहुत बिजी है सर, क्योंकि सीजन का टाइम है, वो ज्यादा गर्मी है, तो इस वजह से पंखा मंखा वायरिंग करते हैं।
1: ठीक है,
0: उसके साथ आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम सुनते रहते हैं ज्यादा, तो हमको सुनने
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमेशा कहा करता हूँ, आकाशवाणी के कार्यक्रम ऐसे हैं या रेडियो एक ऐसा जरिया है कि जिसमें आप काम करते करते ये रेडियो सुन भी सकते हैं, काम भी हर्ज नहीं होता, और इसके अलावा काम में आपका और अधिक मन लगता है रेडियो के।
0: सही बात बोले सर आपने,
1: है ना।
0: गाने वाने सुनते रहते हैं, अच्छा लगता है, और थोड़ी मतलब ये जो श्रोताओं की बात सुनने के लिए मिलती है, तो इसमें जानकारी मिलती रहती है, तो और अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कई इन्फॉर्मेटिव जानकारियां अपने को मिलती रहती है, कई श्रोता ऐसे होते हैं, कई जानकारियां देते हैं, कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानकारियां आपको मिलती है ना। तो आज क्या सुनना चाहेंगे दिनेश जी?
0: सर फिल्म का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का, उसमें गाना है क्या करते थे साजना।
1: तो दिनेश चौहान जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।

0: हेलो नमस्कार।
1: हेलो हेलो
0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: सनी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: हम भागचंद साहू जी बोल रहे हैं, राजेंद्र नगर गंज वासुदा जिला विदिशा।
0: भागचंद जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: बिल्कुल सर, कैसे हैं आप?
0: मैं एकदम ठीक हूँ।
1: और सर मौसम कैसा है भोपाल में अभी?
0: मौसम भी ठीक है, बीच का है, ना गर्म है ना नरम है।
1: बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और सर और सब बढ़िया?
0: बढ़िया। आप बताएं आपके यहाँ का मौसम कैसा है, आप क्या कर रहे हैं?
1: हम सर जी हम पानीपुरी सेंटर का ठेला लगाते हैं।
0: तो आज क्या सुनना चाहेंगे भागचंद जी?
1: आज फिल्म का आज सुनवा देना, लव स्टोरी फिल्म का गाना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।
0: देखिए गाना कोई और बता रहे हैं और पिक्चर का नाम कुछ और बता रहे हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तो 1942 है, लव स्टोरी का है।
1: हाँ ये वाला ना हो तो दूसरा बता दें सर।
0: नहीं नहीं, ये पिक्चर का नाम लव स्टोरी नहीं है, 1942 ए लव स्टोरी है। चलिए तो गीत आ रहा है आपके रजिस्टर पर, गीत का आनंद लीजिए।

0: हेलो
1: हेलो
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करेगी सुने।
1: हाँ नमस्कार साहब।
0: नमस्कार,
1: दिनेश कुमार जी बोल रहे हैं क्या?
0: हाँ बिल्कुल दिनेश कुमार बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ मैं राजाराम नगर देवास मध्य प्रदेश से बोल रहे हो साहब, राजेश अग्रवाल।
0: राजेश अग्रवाल, तो राजेश अग्रवाल जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: वो पिक्चर का गीत है या धर्मेंद्र की पिक्चर है

0: जी गीत के बोल।
1: मैंने थोड़ी सी चढ़ाई तो दुनिया जाए भाड़ में, ऐसा गीत है। रफी साहब और आशा जी की आवाज
0: बड़े मतलब अलग से टाइप की पसंद है आपकी, यही गीत सुनने की कोई खास वजह?
1: नहीं, वो तो सर अच्छा लगता, आनंद रफी साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रफी साहब के गीत।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इन लोगों की तो जोड़ी ही अपने आप में एक गीत की श्रेष्ठता की पहचान हुआ करती। तो चलिए गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत का आनंद लीजिए।
1: धन्यवाद सर।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करेगी सुने।
1: हाँ नमस्ते सर।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते सर, बहुत प्रयास के बाद लगाया सर, करीबन 175 बार लगा चुकी हूँ कॉल।
0: कौन बोल रहे हैं
1: सर? मैं नौकर मीना दसौंधी बोल रही।
0: मीना दसौंधी।

0: खरगोन मध्य प्रदेश से।
1: जी सर।
0: जी मीना दसौंधी जी, मेरे से शायद आपकी पहली बार बात हो रही है।
1: जी सर, पहली बार हो रही है। सर आपका शुभ नाम?
0: मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ। आप क्या करती हैं मीना जी?
1: सर मैं हाउस वाइफ हूँ सर।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
1: किचन का काम छोड़ के कॉल कर रही थी 10:30 बजे से।
0: जी जी जी जी।
1: घर जाके अब लगा।
0: जी जी, क्या सुनना चाहेंगी मीना जी आज आप?
1: सर मुझे कल फादर्स डे है, तो मुझे बॉस पिक्चर का गाना सुनवा दीजिए। मेरे पिताजी को डेडिकेट करूंगी सर, वो इस दुनिया में तो नहीं है अभी, उनका मतलब 2-3 महीने ही हुए, तो उन्हीं के लिए बॉस पिक्चर का सुनवा दीजिए। ईश्वर अल्लाह दोनों रब है, नूर खुदाया तुझ में सब है।
0: बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए क्या है, बड़ा अच्छा लगता है जबकि हम लोग माता पिता को इतना मान देते हैं, क्योंकि हम लोग जो होते हैं केवल उनकी वजह से होते हैं, है ना। और हमारा
1: लिख रहे हैं माता पिता की वजह से, उन्हीं की देन है।
0: जी जी जी। आज हम जिस कॉन्फिडेंस से, जिस आत्मविश्वास के साथ दुनिया का सामना कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, वो केवल उनके संस्कार हैं, और है ना,
1: पहले वो फिर अपन।
0: वही जी जी जी। और जो लोग इस बात को मानते हैं वो निश्चित ही मेरी नजर में तो बहुत बढ़िया होते हैं, है ना।
1: वैसे तो सर हर रोज फादर्स डे मदर्स डे होता है, हर दिन उन्हीं का है, लेकिन ये स्पेशल डे रहे तो स्पेशल रूप से मनाना पड़ता है।
0: जी जी जी। देखिए हमारे जन्मदाताओं को मान दिए बगैर हम कुछ है ही नहीं, है ना
1: जी सर। उनको
0: और उनको मान देंगे तो हमारे रास्ते अपने आप सारे खुलते चले जाएंगे, और रास्ते कितनी भी परेशानियां आए वो मिनटों में आपकी शायद गायब हो जाएगी, है ना।
1: माता पिता, गुरु, शिक्षक और एक भगवान, ये 4-5 तो बिल्कुल आदरणीय है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही यही यही। बहुत अच्छे विचार है आपके। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्कार। कार्यक्रम
1: नमस्कार।
0: फोन करें गीत सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश। हमारी
1: हेलो।
0: किससे बात हो रही है, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे।
1: हम ग्राम कानाखेड़ा, तहसील कालपी, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से राजेश विश्वकर्मा बोल रहे हैं।
0: राजेश जी, क्या करते हैं आप?
1: हम ब्लेंड हैं तो दुकान चलाते हैं, किराने की दुकान रखे हैं, दुकान चलाते हैं और संगीत से प्रेम है तो
0: बहुत बढ़िया, बहुत
1: नाल
0: बढ़िया।
1: बजाते हैं और गायकी भी करते हैं।
0: क्या बजाते हैं?
1: नाल नाल
0: नाल? हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या होता है।
1: ये मतलब ढोलक।
0: ढोलक बजाते हैं? अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा अच्छा
1: जी
0: अच्छा
1: जी जी
0: ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए क्या है, ये गीत हो संगीत हो, है ना, ये तो बड़े हमारा जो समय व्यतीत करने का बहुत अच्छा साधन हो जाता है। क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप ब्लाइंड हैं और उसके बाद में किराने की दुकान भी चलाते हैं, ये बहुत बढ़िया है कि मतलब आप अपनी आजीविका खुद अर्जित करते हैं, है ना, ये बहुत जरूरी है।
1: और
0: तो
1: रेडियो बहुत दिन से सुनते हैं, मुझे रेडियो से बहुत प्रेम है। कम से कम मुझे 30 साल हो गया रेडियो सुनते थे। अब रेडियो का सुन से बहुत बड़ा फैन, मुझे रेडियो बिना तो अच्छा नहीं लगता कुछ भी।
0: रेडियो है ही ऐसी चीज भाई, जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे तब भी रेडियो सुनते सुनते पढ़ा करते थे। और
1: जी
0: किसी
1: जी
0: ने हमको बताया, रेडियो सुनते सुनते जब हम पढ़ते हैं तो उससे दो तरफ दिमाग रहता है तो दिमाग बढ़ता है। पता नहीं वो
1: हाँ, अब
0: बात
1: तो
0: कितनी
1: अगर
0: सही थी कितनी गलत, लेकिन उसमें ही बड़ा मजा आता था और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती थी।
1: हाँ बिल्कुल सही बात है। इसलिए रेडियो से बड़ा अच्छा, जबकि मेरे यहाँ डेग रखा हुआ है दुकान, सबको लेकर मैं बजाता नहीं, रेडियो बजता है मेरा बस।
0: जी जी जी जी
1: बहुत
0: तो
1: दिन में आपके यहाँ मेरा फोन लग पाया, कम से कम 6 महीने से मेरी आज बात हो रही है।
0: ये बताइए कि आज क्या सुनना चाहेंगे राजेश जी आप?
1: मुझे आज
0: देखिए राजेश जी, हम पहले ही बोलते हैं कि दो गीत आप तैयार रखिए और दो फिल्मों के नाम, है ना।
1: हाँ, सही कहा आपने।
0: हाँ, बताइए
1: उसका सुना दीजिए, खिलौना फिल्म है, खिलौना।
0: जी।
1: अगर वो गाना है लता जी ने गाया हुआ है, तू सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए, वो एक गाना लता जी की आवाज में है, बहुत सुंदर गीत है। और मुझे पुराने गीत ही सुनने का शौक है।
0: बहुत अच्छा, पुराने गीतों में एक रस आनंद तो होता ही है, कुछ
1: हाँ
0: यादें भी हम लोगों की जुड़ी होती है पुराने गीतों से, क्योंकि हम भी तो पुराने हैं। और हम ये कहना चाहेंगे कि आपकी पसंद बहुत ही अच्छी है और गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत
1: जी
0: का
1: जी जी
0: आनंद।

0: अभी आपने सुना खिलौना फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फोन करें गीत सुने अब संपन्न होता है। अपने रेडियो मित्र दिनेश कुमार को इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रायोजित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। कृपया इस महत्वपूर्ण प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिये।

0: देना है नहीं
1: खिलर देंगे
2: साइलेंट में रखो पहले नीरज
1: ये दरवाजा लटकवा देना भैया दरवाजा थोड़ा सा रहिएगा
3: नमस्कार शुभ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के इस भव्य और ऐतिहासिक 36वें दीक्षांत समारोह में आपका स्वागत है। पंडित कुंजीलाल दुबे प्रेक्षागृह का पूरा माहौल इस समय उत्साह ऊर्जा शैक्षणिक गरिमा से सराबोर है। श्रोताओं हम ये भी बतलाना चाहेंगे कि आज का दिन इस विश्वविद्यालय के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। लगभग दो दशकों यानी 20 साल के एक लंबे अंतराल के बाद देश की प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस परिसर में कदम रखेंगी। हम अपने सुनने वालों को ये भी बतलाना चाहेंगे कि इससे पहले साल 2006 में मिसाइल मैन और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यहां आए थे। आज विद्यार्थियों के चेहरे पर वो चमक और खुशी साफ देखी जा सकती है। समारोह में प्रतिभा परिश्रम और उपलब्धियों का भव्य सम्मान होगा। 66 गोल्ड मेडल और 160 उपाधियां दी जाएंगी। हया नजर में दामन पाक जरूरी है, हया नजर में दामन पाक जरूरी है, जो भी है बात साफ साफ जरूरी है। हम सब बुलंदी पर पहुंचे मगर इससे पहले माँ नर्मदे का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। माँ नर्मदे को हम प्रणाम करते हैं और आप सभी सुनने वालों का फिर से वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं और ये कहते हैं कि सोच को बदलोगे सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलोगे सितारे बदल जाएंगे, नजरों को बदलोगे नजारे बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। आगे हम ये भी कहना चाहेंगे कि तूफानों में किनारे मिल जाते हैं, तूफानों में किनारे मिल जाते हैं, जिंदगी में सहारे मिल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी में बहुत प्यारे मिल जाते हैं। आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर यानी RDU के 36वें ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह की आयोजना है। हम सब यहाँ पर इस ऐतिहासिक समारोह का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हम खुशकिस्मत हैं। हम ये भी बतलाना चाहेंगे कि इस दीक्षांत समारोह में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के माननीय राज्यपाल और कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल करेंगे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री इंदर सिंह परमार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। श्रोताओं खास बात यह है कि इस बार रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में भारत शब्द का व्यापक उपयोग विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। समारोह से जुड़ी डिग्रियों स्वर्ण पदकों प्रमाण पत्रों आमंत्रण पत्रों और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में इंडिया के स्थान पर भारत शब्द को प्रमुखता दी गई है। कुलगुरु प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा का इस संबंध में कहना है कि विश्वविद्यालय के साथ भी भारत जोड़ा गया है जिससे समारोह की पहचान

भारतीयता, सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्रीय गौरव से जुड़ती दिखाई दे रही है। प्रोफेसर वर्मा हमें ये भी बता रहे हैं कि अंग्रेजी में तैयार दस्तावेजों में भी भारत का उल्लेख किया गया है। ये पहल देश की सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय स्वाभिमान को सम्मान देने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है। श्रोताओं, हम आपको ये भी बतलाना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय यानी RDVV की स्थापना 12 जून 1956 को हुई थी। मूल रूप से जबलपुर विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित इस संस्थान को 16वीं सदी की महान गौंड वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर 1983 में इसका नाम रखा गया है। श्रोताओं, रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को चंदेल राजा कीर्ति सिंह के परिवार में कालिंजर महोबा में हुआ था। उनका विवाह गौंड वंश के राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था। पति की असामयिक मृत्यु के बाद उन्होंने अपने अल्पायु पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बैठाकर गढ़ा मंडला का शासन संभाला। रानी ने कई युद्ध जीते। 24 जून 1564 को रानी दुर्गावती ने मुगल सेनापति आसफ खां के खिलाफ एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था। हार की संभावना देखकर और आत्मसमर्पण करने के बजाय उन्होंने खुद को कटार मारकर अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया था। ऐसी ही वीरांगना के नाम पर हमारे जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया है। जी हाँ, आज हम इस ऐतिहासिक 36वें दीक्षांत समारोह का हिस्सा हैं। ये हमारे लिए भी गौरव की बात है। श्रोताओं, हमें ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि 7वीं बार हमारी संस्कार धानी जबलपुर में माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन हो रहा है। इससे पहले 6 बार माननीय राष्ट्रपति जी हमारे जबलपुर आ चुके हैं। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 28 अक्टूबर 1948 को शहर आए थे। उन्होंने शहीद स्मारक बनाने की आधारशिला रखी थी। हालांकि जब वे जबलपुर आए थे तब राष्ट्रपति के पद पर नहीं थे, लेकिन उनका नाम पहले राष्ट्रपति के लिए तय हो गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार शहर आए। पहली बार 1 मार्च 1958 को आए थे। उपराष्ट्रपति रहते हुए वे यहाँ जबलपुर विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। राष्ट्रपति बनने के बाद 20 फरवरी 1965 को वे जब नागपुर जा रहे थे उस दौरान कुछ समय के लिए जबलपुर रुके थे। हमारे देश के नवे राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वर्ष 1997 में शहर आए थे। वे जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के 50वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हम यहाँ ये भी बतलाना चाहेंगे कि देश के 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी 27 जून 2014 को जबलपुर आए थे। वे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। हमें ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने राज्य न्यायिक अकादमी में आयोजित परिचर्चा में हिस्सा लिया था। वे मां नर्मदा की महाआरती में शामिल होने वाले देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। श्रोताओं, हम यहाँ ये भी बतलाना चाह रहे हैं कि हमारा जबलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 20 साल बाद माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी मौजूदगी में ये हॉल दमक उठेगा। आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 3री बार जबलपुर आई हैं। इससे पहले वे 27 सितंबर 2023 को एक दिवसीय दौरे पर आई थीं। तब उन्होंने ट्रिपल ITDM परिसर से डिजिटली हाई कोर्ट की नई बहुमल्या इमारत का शिलान्यास किया था। वे पहली बार 30 अप्रैल 2017 को जबलपुर आई थीं। तब वे झारखंड की राज्यपाल थीं। इस दौरान आपने भेड़ाघाट की संगमरमरी वादियों में पंचवटी से बंदर कूनी तक के बीच नौका विहार किया था। हम फिर से आपको बतलाना चाह रहे हैं, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अध्यक्षता करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल और कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल।

विशिष्ट अतिथि होंगे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री इंदर सिंह परमार। विश्वविद्यालय का पंडित कुंजीलाल दुबे प्रेक्षागृह इस ऐतिहासिक समारोह का साक्षी बनेगा। इस समारोह में 20 चयनित विजेताओं को स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया जाएगा। शेष पदक विजेताओं उपाधि धारकों को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय इंद्र सिंह परमार द्वारा स्वर्ण पदक और उपाधियां बाद में प्रदान की जाएंगी। वाकई पदक विजेता प्रतिभावान छात्र छात्राएं आतुर हैं, जिन्हें आज पदक और उपलब्धियां मिलेंगी। माना कि ये शहर पत्थरों का है, माना कि ये शहर पत्थरों का है, मगर बाशिंदों के दिल तो धड़कते होंगे। कलकल करती मां नर्मदे के किनारे बसी ऋषि जावाली की नगरी, आचार्य विनोबा की संस्कार धानी जबलपुर, जिसने कला, साहित्य, चिकित्सा, विज्ञान और धार्मिक क्षेत्र के लिए एक से बढ़कर एक विद्वान, मनीषी, आचार्य, कवि, साहित्यकार, संगीतकार दुनिया को प्रदान किए हैं। इसी संस्कार धानी में आज रानी दुर्गवती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को सम्मानित किया जाना वाकई गौरव की बात है। जीवन में अद्भुत संसार के लिए त्याग, श्रम की उड़ान बहुत आवश्यक होती है। शेष वक्त की पाबंदी, लगन और शौक कामयाबी दिलाते हैं। वाकई स्वर्ण पदक विजेताओं ने अपनी मेहनत की उड़ान पर सफलता प्राप्त की है, जो आज सम्मानित हो रहे हैं, वाकई बधाई के पात्र हैं। इरादे नेक हो तो मंजिल आसान होती है, इरादे नेक हो तो मंजिल आसान होती है, सच्ची लगन हो तो रास्ते भी सरल होते हैं। इसलिए कहता हूँ, पीछे मत देख, ना शामिल हो गुनहगारों में, सामने देख के मंजिल है तेरे अपने पैरों में, बात बनती है गर दिल में हो इरादे अटल। कुछ ऐसे ही सच्चे अटल इरादे लेकर चलते ये पदक विजेता और अपने अपने क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं और कुछ नया कर राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। हम आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि रानी दुर्गवती विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख NAAC ए ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय है। यह उच्च शिक्षा अनुसंधान और भिन्न भिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यहाँ से तालीम लेने वाले छात्र छात्राएं देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमने शुरू में श्रोताओं बात की कि भारत शब्द जोड़ा गया, और जब भारत की बात आती है तो हमें हमारा मन ये कहने को अग्रसर होता है, प्रफुल्लित होता है, और हम ये कह सकते हैं कि हमारा भारत देश एक आह्लाददायक अनुभूति और अपनेपन से भरा एक एहसास है। इसके वनों के पत्तों की मर्मर ध्वनि, पक्षियों का

0: है, नदियों का जल जैसे अमृत है, ऐसी अतुलित संपदा से परिपूर्ण अपने भारत को हम शत शत नमन करते हैं।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
0: हम अपने सुनने वालों को ये भी बतलाना चाहेंगे कि 36वें दीक्षांत समारोह में हमारे अतिथिगण कुछ ही समय पश्चात मुंशासीन होने वाले हैं।

0: जी हाँ श्रोताओं, 36वां दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि कुछ ही समय पश्चात मंचासीन होने जा रहे हैं।
1: वो भी वाला है मॉडल होता है।

0: श्री दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। जी हाँ, हम ये बतलाना चाहेंगे कि जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय क्यों रखा गया है। आरडीवीवी की स्थापना 12 जून 1956 को हुई थी। मूल रूप से जबलपुर विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित इस संस्थान को 16वीं सदी की महान गौंड वीरांगना रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि देने के लिए 1983 में इसका नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया। श्रोताओं, रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1924 को चंदेल राजा कीर्ति सिंह के परिवार में कालिंजर महोबा में हुआ था। उनका विवाह गौंड वंश के राजा संग्राम सिंह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था। पति की असामयिक मृत्यु के बाद उन्होंने अपने अल्पायु पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बैठाकर गढ़ा मंडला का शासन संभाला। रानी ने कई युद्ध जीते। 24 जून 1964 को रानी दुर्गावती ने मुगल सेनापति आरसफ खां के खिलाफ एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था। हार की संभावना देखकर और आत्मसमर्पण करने की बजाय उन्होंने खुद को कटार मारकर अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया था। ऐसी ही वीरांगना के नाम पर हमारे जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया है। जी हाँ, आज हम इस ऐतिहासिक 36वें दीक्षांत समारोह का हिस्सा है, ये हमारे लिए भी गौरव की बात है।
1: अपन को ये माइक मिलना चाहिए।

आप हैं विविध भारती भोपाल के साथ 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भारत के माननीय राष्ट्र

बड़ा हर्ष का विषय है कि दीक्षांत यात्रा प्रेक्षागृह में दाखिल हो चुकी है, आ चुकी है। प्रेक्षागृह हॉल चमक रहा है, दमक रहा है। दीर्घ पंक्ति में मंत्रीगण, विधायकगण, मेयर सारे बैठे हुए ड्रेस कोड के साथ। वे छात्र छात्राएं आतुर हैं, खुशी से झूम रहे हैं। और देखिए करतल ध्वनि से महामहिम राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत किया जा रहा है। और ये हाल इस गौरव में ही उनकी उपस्थिति का बन रहा है साक्षी।

आदरणीय राष्ट्रपति जी, कुलाधिपति जी, मुख्यमंत्री जी एवं सम्माननीय अतिथिगणों से सादर अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें।

0: देवी की आराधना के साथ आज का कार्यक्रम शुरू हो चुका है।
1: माननीय कुलाधिपति जी से सादर अनुरोध है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

0: अनुमति है।
1: माननीय कुलगुरु जी से विनम्र अनुरोध है कि 36वें दीक्षांत समारोह का स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें।
2: रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में आज के मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, समारोह की अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री मंगूभाई पटेल जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी का मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथ ही समारोह में पधारे हमारे मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्री महोदय, राज्यसभा सांसद जी, लोकसभा सांसद जी, सभी विधायक गण, विभिन्न विश्वविद्यालय से पधारे हुए कुलपतिगण, मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न सम्मानित अधिकारी, स्वर्ण पदक प्रदान करने वाले विभिन्न दानदाता, विश्वविद्यालय के कोर्ट के, कार्य परिषद के, विद्या परिषद के सभी सम्मानित सदस्य, अन्य गणमान्य नागरिक, समस्त अतिथिगण, प्राध्यापकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया के सभी साथी एवं आमंत्रित जो कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, साथ ही वे छात्र छात्राएं जो गोल्ड मेडल शोध उपाधि प्राप्त करने वाले हैं, उन सबको मैं राजेश कुमार वर्मा कुलगुरु हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। अत्यंत गौरव का विषय है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जी का जो दुर्गा विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर संचालित है, 24 जून को 462वां बलिदान दिवस है। मैं रानी दुर्गावती जी के अद्भुत शौर्य पराक्रम का स्मरण करते हुए उनके चरणों में सादर वंदन करता हूँ। 27 जुलाई 2024 का दिन विश्वविद्यालय के इतिहास का एक स्वर्ण दिन लिखा गया, जिस दिन विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार नेक द्वारा विश्वविद्यालय को ए ग्रेड प्रदान किया गया, जो कि ए प्लस से केवल 0.04 दूर रहा, अन्यथा ए प्लस ग्रेड प्राप्त होता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में विश्वविद्यालय ने रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत कौशल विकास आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरंभ किए, जिसमें प्रमुख रूप से बांस से विभिन्न प्रोडक्ट तैयार करना, हस्तशिल्प, शिल्प कला, इंटीरियर डिजाइन, मूर्ति निर्माण, सिलाई प्रशिक्षण, फैब्रिक प्रिंटिंग, ज्वेलरी मेकिंग की कार्यशालाएं, रोजगार मेला आदि आयोजित किए गए। शिक्षा मंत्रालय राज्य भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित डिजाइन इनोवेशन सेंटर को अब तक 10 करोड़ की ग्रांट मिल चुकी है, वह 6 पेटेंट प्राप्त कर चुका है। नीति आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को अटल कम्युनिटी इंक्यूबेशन सेंटर के से भी प्रदान किया गया, जिसमें 2.5 करोड़ की ग्रांट प्राप्त होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय को भौतिक विज्ञान का नोडल बनाया गया है, जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार करना और उसकी कार्यशालाएं आयोजित करना और पुस्तकें तैयार करना विश्वविद्यालय के टीम के हाथ में है। वैदिक गणित के लिए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास एवं अन्य संस्थान सी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और अन्य संस्थानों से विश्वविद्यालय द्वारा MOU किए गए हैं। नए पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में 2024-25 से लगातार आरंभ किए गए। BTech कंप्यूटर, BSc, BCom के अंतर्गत परंपरागत पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में आरंभ किए गए और इन पाठ्यक्रमों के कारण 2024-25 में विश्वविद्यालय में प्रवेश में विद्यार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। इन दो वर्षों में 2023 की तुलना में लगभग 100% बढ़ाते हुए विश्वविद्यालय की संख्या दोगुनी हो गई विद्यार्थियों की संख्या। विश्वविद्यालय के प्रति विद्यार्थियों का बढ़ता हुआ विश्वास विश्वविद्यालय का बढ़ता हुआ गौरव है। हमें विश्वास है कि 2026-27 के प्रवेश में हम पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। 2024 में हमने कुछ लक्ष्य स्थापित किए थे, समय पर परीक्षा, समय पर परिणाम। इसमें हमने कुछ परिणाम जिस दिन सुबह परीक्षा समाप्त हुई उसी दिन शाम को परिणाम घोषित कर दिए। ऐसे कुछ परिणाम 2025 में परीक्षा समाप्ति के दिन शाम को 3 दिन में और 5 दिन में घोषित कर दिए और आने वाले वर्षों में हम इस रिकॉर्ड को बनाए रखते हुए नए रिकॉर्ड स्थापित करने का संकल्प लेते हैं। जुलाई 2025 में विश्वविद्यालय ने PhD प्रवेश परीक्षा आयोजित की। 28 विषय की परीक्षा में 11 विषय के परिणाम परीक्षा के दिन शाम को हमने घोषित कर दिए और 17 विषय के परिणाम दूसरे दिन जारी कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि 28 घंटे में विश्वविद्यालय ने 28 परिणाम जारी किए, जो कि एक रिकॉर्ड है विश्वविद्यालय के लिए। डिजिटल गवर्नेंस के अंतर्गत विश्वविद्यालय की प्रवेश फॉर्म, परीक्षा फॉर्म, प्रवेश पत्र, फीस जमा करना, परीक्षा परिणाम, प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन पूर्णतया ऑनलाइन किया गया है और भविष्य में हम उत्तर पुस्तिकाओं का

0: मूल्यांकन डिजिटल ऑनलाइन कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। विज्ञान भारती द्वारा महाकौशल मेले में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के स्टॉल को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था, यह विश्वविद्यालय के लिए उपलब्धि का विषय है। युवा कार्यरत अतिथि विद्वानों की सक्रियता से आधुनिक शैक्षणिक पद्धतियां, डिजिटल संसाधनों का उपयोग, अध्ययन अध्यापन के अनुरूप वातावरण निर्माण के द्वारा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। आज विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर माननीय अतिथियों की उपस्थिति में हम यह घोषणा करते हुए बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है कि विश्वविद्यालय के 142 छात्र छात्राओं को 240 स्वर्ण पदक प्राप्त हो रहे हैं और 179 PhD धारकों को और 3 डीलिट शोधार्थियों को 1 DSc और 1 मानद उपाधि आज दी जा रही है। विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में एक विशेष बदलाव चर्चा का विषय बना हुआ है जो 3 दिन से राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड कर रहा है। समारोह से जुड़ी लगभग सभी आधिकारिक सामग्री इंडिया के स्थान पर भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। डिजिटल डिग्रियां, स्वर्ण पदक, प्रमाण पत्र, दस्तावेजों में सब में भारत का शब्द का उपयोग किया गया, इंडिया शब्द का उपयोग हटाया गया। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय के नाम के साथ भी भारत शब्द जोड़ा गया है जिससे समारोह की समग्र पहचान भारतीयता राष्ट्रीय गौरव के भाव से जुड़ाई देती है। मैं एक बार पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी और आप सभी अतिथियों का इस कार्यक्रम में सादर वंदन अभिनंदन करता हूं और उपस्थित छात्र छात्राओं को हृदय से शुभकामना देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।
1: माननीय कुलगुरु जी से सादर अनुरोध है कि माननीय भारत के राष्ट्रपति जी, माननीय कुलाधिपति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें।

0: प्रतीक्षिण्य से सम्मानित करते हुए विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टर मोहन यादव जी प्रतीक्षिण्य लेते हुए विश्वविद्यालय की ओर से प्रतीक्षिण्य दिया जा रहा है। राज्यपाल कुलाधिपति माननीय श्री मंजू भाई पटेल जी को
1: गौरव की राष्ट्रपति जी की अनुमति से मैं डॉक्टर रविशंकर सोनवाल कुल सचिव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह की कार्यवाही प्रारंभ करता हूं। माननीय कुलगुरु जी कृपया कला संकाय के अंतर्गत श्री विजय दत्त श्रीधर को डीएड उपाधि एवं वर्ष 2023-24 एवं 24-25 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों विद्यार्थियों को उपाधि शोधार्थियों को शोध उपाधि एवं वर्ष 2021 एवं 21-22 के छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान करने की अनुमति माननीय कुलाधिपति जी से प्राप्त करने की कृपा करेंगे।
2: माननीय कुलाधिपति जी कृपया अनुमति प्रदान करें।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदया जी अब मैं आपके सम्मुख उन छात्र छात्राओं को प्रस्तुत कर रहा हूं जिन्होंने विभिन्न संकायों में एक से अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने की योग्यता अर्जित की है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इन छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक एवं योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करेंगे। स्वर्ण पदक वर्ष 2021 दीपांशु मिश्रा एमए हिंदी साहित्य परीक्षा 2 स्वर्ण पदक,

कल्याणी त्रिपाठी एमए संस्कृत महिला परीक्षार्थी। तारियां बजती रहे। कल्याणी त्रिपाठी एमए संस्कृत महिला परीक्षार्थी 2 स्वर्ण पदक। ऋषिका तिवारी एमए दर्शन शास्त्र परीक्षा 3 स्वर्ण पदक। शिवानी साहू बीए हिंदी परीक्षा 2 स्वर्ण पदक।

पलक सोनी एमएससी भौतिक शास्त्र महिला परीक्षार्थी 2 स्वर्ण पदक। प्रियंका साहू एमएससी कार्बनिक रसायन परीक्षा 2 स्वर्ण पदक।

मुक्ता मिश्रा एमए प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व महिला परीक्षार्थी 2 स्वर्ण पदक। सैजली नायक एमए राजनीति विज्ञान परीक्षा 2 स्वर्ण पदक।

रानी दुर्गावती की नगरी, माँ नर्मदा की जिस नगरी पे विशेष कृपा हो वो अद्भुत जबलपुर, जिसके कारण से माँ की कृपा से काले पत्थर की चट्टान भी संगमरमर की हो जाती है, इतना सौभाग्यशाली नगर ये जबलपुर आज गौरवान्वित हो रहा है हमारे बीच। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े शासन के उच्च पद पर विराजमान माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आज एक नया इतिहास बन रहा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में। मैं मध्यप्रदेश सरकार की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दो कारणों से ये खुशी डबल हो रही है। आज हमारे बीच मंच पर विराजमान माननीय राज्यपाल श्रीमान मनमोहन पटेल साहब, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी और बीते समय माननीय राष्ट्रपति जी, हमने अपने उस गौरवशाली 5000 साल पुराने इतिहास को जीवंत करते हुए ये भगवान कृष्ण और सुदामा की ये प्रदेश की एक विशेष आती रही है कि हमारे यहाँ गुरु परंपरा से कुलपति गुरु आश्रम को गौरवान्वित करते रहे हैं। ऐसे में हमने देश के अंदर मध्यप्रदेश के सभी कुलपतियों के नाम कुलगुरु पर रखने का निर्णय किया, इसलिए इस रानी दुर्गावती के कुलगुरु माननीय राजेश जी सभागार में मौजूद सभी आमंत्रित अतिथिगण, प्राध्यापकगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों और सबसे ज्यादा बधाई वो सारे युवा मित्रों जिनके भरोसे से हमारा ये राज्य और अपनी आपकी प्रतिभा क्षमता से न केवल राज्य बल्कि देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और ताकत से आगे बढ़ेगा, ये आज सौभाग्य की बात। दीक्षांत समारोह और दीक्षांत समारोह दोहरी खुशी लेकर के आया है। हमारे बीच हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी स्वयं अपने हाथों से नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रही, वहीं दूसरी ओर रानी दुर्गावती का वो गौरवशाली अतीत जो मुगल सत्ता के बीच अपने जीवन की इस देश की आजादी के लिए हमारी इस आदिवासी संस्कृति का भी वो सूर्य के समान नक्षत्र की भांति अपनी क्षमता बुद्धि योग्यता से उस समय के बहुत बड़े शासनकर्ता अकबर के सामने भी अपनी क्षमता से 50-50 युद्ध लड़ करके हर बार जीत हासिल करके पूरे देश को गौरवान्वित करने का गौरवशाली अतीत लेके चलती और उससे आगे बढ़कर के एक युद्ध ऐसा होता है जो आज के दौर में हमको समसामयिक होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब नवाचारों के बलबूते पर टेक्नोलॉजी का नुकसान क्या होता है और टेक्नोलॉजी का फायदा क्या होता है, ये उस दौर के समय हमारे अपने देश के लिए इतिहास बना था जब टेक्नोलॉजी के अभाव में तोपों के सामने युद्ध करने में हाथी सहित सेना को युद्ध करने में जो कठिनाई होती है, ऐसे अजय योद्धा को जब युद्ध पहली बार हो रहा और तोपों की गर्जना से हाथी भड़क करके युद्ध के नकारात्मक पक्ष की तरफ ले जा रहे हैं, ऐसे में रानी दुर्गावती ने जो अपनी बात अपने महावत सिंह सैनिकों को कहा था कि किसी भी हालत में मेरा शरीर ये स्वाधीनता के लिए, मेरा शरीर भारत की अजर अमर लड़ाई के लिए, दुश्मनों के हाथों में मेरा शरीर न जाने पाए और ऐसे में कोई कारण से युद्ध के अगर हम हारने की तरफ पहुंचते हैं, क्योंकि तोपों की लड़ाई से हमको लड़ने की आदत नहीं, अगर कोई कारण से ऐसी स्थिति बने तो अपने सैनिक जो हाथी पे बैठे उससे कहा था कि ये खंजर लेना और जैसे हम हारने के कगार पे पहुंचे तो मेरा प्राणांत कर देना। घटना ऐसी घटती है कि कोई कारण से वास्तव में स्थिति विकट हो जाती है, रानी की जान संकट में पड़ जाती है, एक तीर आता तो उनकी आंखें निकाल के ले जाता, दूसरा तीर उनकी दाहिनी आंख को तीर के निकाल के ले जाता, ऐसे में लगता है कि अब जीवन बचना मुश्किल है, युद्ध का परिणाम भी सामने दिखाई दे रहा, लेकिन कड़क करके रानी फिर अपने सैनिक से कहती तेरे को क्या आज्ञा दी थी, सैनिक हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, महारानी मैंने आपका नमक खाया, मैं आपके बेटे समान हूँ, अपनी माँ पे मैं हथियार कैसे उठा सकता हूँ, कड़क करके रानी कहती है कि तुमको जो बताया वो बताया, उसको आज्ञा का पालन करो और उसकी घबराहट देखकर खुद अपने हाथ से अपना प्राणांत करके जबलपुर सहित पूरे देश को गौरवान्वित करती है कि जहे बलिदान देना पड़े। जन्म और मृत्यु के क्रम में जन्म तो एक बार होगा लेकिन जो

प्रदेश के मुखिया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे हमको आशीर्वचन प्रदान करें।

0: को गौरवान्वित कर दे। वाकई वो रानी दुर्गावती का विश्वविद्यालय आज एक गौरवशाली इतिहास को लिख रहा है, जब 5-5 स्वर्ण पदक लेकर के बेटी हमको सीना 56 इंच का करने का मौका दे रही, कितना अच्छा लगता है। कोई 3 स्वर्ण पदक, कोई 2 स्वर्ण पदक, जो नई प्रतिभाओं के बलबूते पर विश्वविद्यालय अपना नया इतिहास लिख रहा है, ये हमारे लिए गौरवशाली क्षण है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब 12वां वर्ष उनकी सफलता के नए कीर्तिमान रच रहा है, ऐसे में विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रांगण, माँ सरस्वती के प्रांगण में आज ये नया सूर्य उगा है, जब शासन के सर्वोच्च पद पर बैठी महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे बीच मध्य प्रदेश की युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रही, और हमारे अपने सरकार के माध्यम से हमने पहले उच्च शिक्षा में सकल पंजीयक दर से आगे बढ़ते हुए हमने अपना जो सकल पंजीयक दर है उसको राष्ट्रीय प्रतिमान से भी आगे बढ़ते हुए 28.9% पे ले गए। आज स्कूल शिक्षा का ड्रॉप आउट भी 0 की तरफ हम ले गए। सरकार बनने के साथ ही हमने 3 नए शासकीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रयास किया। कई प्रकार से शासन की व्यवस्थाओं में ये वर्ष हमने किसान कल्याण वर्ष भी मनाया। इसके माध्यम से एग्रीकल्चर के अलग अलग संकायों के बलबूते पर हमारे विश्वविद्यालयों में भी, चूंकि कृषि प्रधान हमारा प्रदेश है, ऐसे में कृषि से रुचि बढ़े लोगों की, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर सब सेक्टर में बढ़ाते हैं, तमाम प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने का उपक्रम हमने प्रारंभ किया है। मैं अपनी ओर से आज के इस अवसर पर सामने बैठी हमारी यहाँ की पूर्व मंत्री हमारी बनर्जी मैडम को भी आपको भी प्रणाम करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्रम और गौरवशाली इतिहास ये जारी रहेगा, आपका आशीर्वाद हमारे साथ सदैव रहेगा। मैं एक बार फिर आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और मेरे साथ प्रेम से बोलो भारत माता की।
1: अब मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल जी को कि वे हमें आशीर्वचन प्रदान करें।
2: सभी को नमस्कार। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का 36वां दीक्षांत समारोह में अपने बीच उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्री उच्च शिक्षा विभाग श्री इंद्र सिंह परमार जी, लोकसभा राज्यसभा के सांसद श्री विधायक गण, कुलगुरु राजेश वर्मा जी, अन्य कुलगुरु भी यहाँ उपस्थित है, सभी माता जयश्री बनर्जी, जो यह मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नड्डा जी रहे उनकी सास है, कई बार उनको मिलना हुआ, आज यहाँ उपस्थित है, उपस्थित संकाय अध्यक्ष, विभिन्न परिषद के सदस्य गण, अधिकारी गण, उपस्थित अभिभावक गण एवं महानुभाव, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, माँ नर्मदा की पुण्य सलीला से पावन संस्कार धानी एवं संग मरमर नगरी जबलपुर में माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हम सभी के लिए हर्ष, सम्मान और गौरव का अनुभव क्षण है। प्रदेशवासियों की ओर से आपका श्रद्धा पूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आपकी गरिमामय उपस्थिति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को ऐतिहासिक गरिमा और भव्यता से आलोकित कर रही है। समारोह में उपाधि और पदक प्राप्त करता विद्यार्थी विद्यार्थिनियों, उनके गुरुजन और परिजनों को बधाई और शुभकामना देता हूं। इस पावन अवसर पर गौरवाना की सौरवशाली धरा की अमर वीरांगना, अदम्य साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की अनुपम प्रतीक महारानी रानी की दुर्गावती को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं, जिनका जीवन जनजातीय अस्मिता, प्रजा कल्याण, नारी शक्ति के त्याग, पराक्रम, नेतृत्व, क्षमता और आत्मगौरव का अमर गान है, जो आज भी जनजातीय समुदाय सहित

0: देश की प्रत्येक बेटी और युवा पीढ़ी की प्रेरणा का केंद्र है। कहते हुए गर्व का अनुभव होता है कि देश की सर्वोच्च और सर्वाधिक जिम्मेदारी का पालन कर रही श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की जनजातीय समाज की उस गौरवशाली परंपरा को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रही है जिसका उज्जवल प्रतीक रानी दुर्गावती है। इसी प्रेरणादायी परंपरा से साक्षी दीक्षांत समारोह में उपस्थित युवा छात्र छात्राओं से कहूंगा कि आपकी डिग्री भारत के भविष्य के निर्माण, नवाचार और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाली शक्ति है। आज जब आप जीवन की नई यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, तब समय की पुकार है कि आप रानी दुर्गावती के शौर्य और लोक कल्याण के आदर्शों और जीवन संघर्ष में प्रेरणा प्राप्त करें। मैं यह कहना चाहूंगा कि यहाँ बहुत से ट्राइबल बच्चे हैं। जब हम आए अंदर तो कई जनजातीय जननायकों का फोटा भी हमने देखा। उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किए वो जनजाति समाज के लिए गौरवान है। मैं ये समझना चाहूंगा कि आप पढ़े लिखे, आज दीक्षांत समारोह आपका हुआ, कल अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, मगर जनजाति समाज के कई ऐसे काम है जो हमको करना है। हर एक यूनिवर्सिटी, जब मैं राज्यपाल पद पे आया तभी हर एक यूनिवर्सिटी को मैंने बोला कि आपको पांच पांच गांव गोद लेना है, जिसकी वजह से बच्चे को भी सीधे गांव में जाए और परिस्थिति देखे कि जनजाति समाज का क्या क्या करना जरूरी है और उसमें आदत बन जाए कि समाज को हमको कुछ करना है। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की अनेक योजना है, मगर पीएम जनमन योजना अति पछात के लिए बेगा, भारिया और सहारिया करीब करीब मध्य प्रदेश में 14 लाख से ज्यादा है, उनके लिए केंद्र सरकार ने 24,000 रुपये का प्रावधान किया था। 9 जितने डिपार्टमेंट का काम उसमें हो रहा था। कई ऐसे सहारिया, बेगा, भारिया के स्थान पे मैं खुद गया हूँ कि सरकार की जो कामगिरी चल रही है वो ठीक से चल रही है कि नहीं। और मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ महामहि राष्ट्रपति जी खुद की यह योजना है, क्योंकि आज तक अति पछात के लिए कोई योजना नहीं बनी। बहुत सालों से मैं ये राजनीतिक जीवन में हूं, मगर पहली बार मैंने ऐसे अति गरीब जो है, अति गरीब आदिवासी है, उनके लिए भी एक योजना बनी और 3 साल चली, बहुत अच्छे काम हुए हैं। धरती आबा ग्राम विकास योजना, केंद्र सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मैं समझता हूँ आप पढ़े लिखे हैं, आपके गांव में, मैंने सरकार को भी बोला कि हर तहसील का ऐसा मैप बनाओ कि कौन से तहसील में जीवन जरूरत कौन सी चीज करना अभी भी बाकी है। वो मैप बनाएंगे तो हर एक तहसील को और हर एक गरीब आदिवासी को सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। इसलिए मैं विद्यार्थियों को आग्रह करूंगा कि आपने अच्छी तरह, आपका माँ बाप ने संस्कार दिया, पालन पोषण किया, ये यूनिवर्सिटी ने आपको अच्छी तरह पढ़ाकर आज डिग्री भी दिए, अच्छी प्लेसमेंट भी मिले, मगर समाज को कभी नहीं भूले, राष्ट्र को कभी नहीं भूले, इतना ध्यान रखते मेरे को अपेक्षा है कि आप उसमें सफल होंगे। आज जब जीवन की नई यात्रा प्रारंभ कर रहे, तब समय की पुकार है कि आप रानी दुर्गावती ने जो हमको प्रेरणा दी है उसी तरह जीने का प्रयत्न करें। आइए हम सब मिलकर लोकतांत्रिक मूल्यों, नारी सशक्तिकरण, विकसित भारत के संकल्प को जीवन का ध्येय बनाकर राष्ट्र की प्रगति में अपना श्रेष्ठ योगदान दे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय।
1: अब मैं आमंत्रित करता हूं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को कि वे अपना उद्बोधन प्रदान करें।

श्री मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, राज्य सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी, विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा जी, अध्यापकगण, अभिभावकगण, प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ जनप्रतिनिधिगण, देवी और स्वजन, सभी को नमस्कार। आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही। रानी दुर्गावती जिनके नाम पर ये विश्वविद्यालय स्थापित है, वे अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम की प्रतिमूर्ति। पिछले वर्ष गोंडवाना साम्राज्य की उस महान शासक और वीरांगना की 501वीं जन्म जयंती देशवासियों ने मनाए। संयोग से आज से दो दिन बाद 24 जून को उनकी 462वां बलिदान दिवस है। रानी दुर्गावती भारत के नारी शक्ति के शौर्य के प्रतीक, वे सदैव नारी शक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। मैं महान रानी दुर्गावती की स्मृति प्रति सादर नमन कर। देवियों और स्वजन, प्रकृति के मनोरम क्षेत्र में स्थित और पूर्ण सलीला मां नर्मदा के जल से संप्रसित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की 70 वर्ष की यात्रा पर आप सबको गर्व हुआ होगा, हो रहा होगा। इस विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में जनजातीय वनवासी संस्कृति की प्रचुर उपस्थिति है। इस विश्वविद्यालय से जुड़े रानी दुर्गावती के नाम की सार्थकता सभी सिद्ध होगी जब सभी भागीदारी जनजातीय समाज और वंचित तथा पिछड़े वर्ग, विशेषकर इन वर्गों की बेटियों की सशक्तिकरण के लिए प्रयास करें। जनजाति समाज स्वाभिमानी है। आज हम 80 साल स्वाधीनता के 80 साल के तरफ जा रहे हैं, 76 ईयर्स हो गया है, लेकिन वो अपने जगह पे खड़ा है क्योंकि वो स्वाभिमानी है। अपना दुख दर्द, अपना परेशानी दूसरों को बताते नहीं। खुद आके खुद के बारे में लोगों को बताना, सरकार को बताना, उनके भावना से परे, इसीलिए। लेकिन आज कुछ महिलाएं, कुछ बेटियां, कुछ बेटाएं उच्च शिक्षित हो रहे हैं। मैं राज्यपाल महोदय से सहमत, बड़ी बनना सरकार के सहयोग से या खुद के परिश्रम से, अच्छी बात। लेकिन एक अकेला चलना समाज को छोड़ के, ये शायद क्योंकि उसी समाज से हम यहां तक आए हैं, उनके लिए चिंता करना हम लोगों का कर्तव्य है। जो भी बेटियां, जो भी बेटाएं, कोई भी बड़े पोस्ट पे रहे, उनके तरफ समय देना। कभी कभी पढ़ाई करके शहरों में रह जाते हैं, गांव जाते नहीं। मुझे लगता है उनके लिए ये सबसे बड़ा समाज के प्रति उपहार होगा, समाज के प्रति जो कर्तव्य होगा, बीच बीच में जाके उनको मार्गदर्शन देना। वो नहीं मानते, नहीं मांगते कि आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता के लिए सरकार बहुत सारे सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सुविधा को कैसे लिया जाए, कहां जाए, कैसे करे, वो भी बहुत लोगों को पता नहीं। इस चीज को मार्गदर्शन करना जो आगे बढ़ के उन लोगों का कर्तव्य होता। गवर्नमेंट अपने हिसाब से वो कर रहे हैं, लेकिन एक जनजाति होने के नाते युवाओं का भी कर्तव्य है कि उन तक जाए, उनको मार्गदर्शन।

करें और उनको भी, जैसे कि हम सपने देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं 2047 तक देश विकसित होगा। मैं एक चीज को बार बार दोहराती हूं, उसको मैं अभी भी दोहराना चाहती हूं। हम सब जानते हैं पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़ा कवि थे, वो कहते थे भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं जीता जगता राष्ट्र। मैं समझती हूं एक राष्ट्रपति पुरुष का, जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक, ये सभी प्रदेश का, सभी गांव का जैसे विकास करना जरूरी है, ऐसे ही उसी गांव में, उसी प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति जो पीछे रह गए उनको आगे लाना शायद सर्वांगीण विकास होगा। और 2047 का सपना शायद इससे ही परिपूर्ण होगा। शिक्षा ही किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विकास का सबसे प्रभावी माध्यम, इसीलिए जनजातीय समुदाय के शैक्षणिक विकास के लिए प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में ग्रामीणों एवं वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक विशेष कौशल आधारित पाठ्यक्रम चलाई जा रहा है। हम सबको मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे जनजातीय युवाओं को आधुनिक विकास में भागीदारी करने का अवसर मिले और साथ ही उनकी जनजातीय पहचान व अस्मिता अपने सहज रूप से बनी रहे, क्योंकि अपना आइडेंटिटी, अपना धरोहर, अपना संस्कृति, अपना परंपरा को भूलना नहीं चाहिए। वो बहुत ही पवित्रता चीज है, क्योंकि असरलता और पवित्रता बनाए रखना जरूरी है। जनजातीय समाज के लोगों के कौशल एवं ज्ञान को आधुनिक माध्यमों से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में इस विश्वविद्यालय जैसी शिक्षण संस्थानों को विशेष प्रयास करना चाहिए जनजातीय ज्ञान एवं शिल्प परंपरा का व्यापक स्तर अध्ययन सभी देशवासियों के लिए लाभदायक होगा। उच्च शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ नवाचार और अनुसंधान के प्रमुख केंद्र भी होते हैं। विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उद्यमिता का विकास करना शिक्षण संस्थान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। साथ ही संस्थानों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति, परंपरा और भाषाओं के प्रति गर्व के भाव को संचारित करें। ये हम लोग का भारत एक ऐसे देश है, विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न खान पान पहनाव, लेकिन वो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को समालोचित करना ठीक नहीं। आज विदेश से लोग आते हैं, हम राष्ट्रपति भवन में सभी स्टेट का व्यंजन उनको पेश करते हैं और बहुत उत्साह के साथ वो खाते हैं और प्रशंसा भी करते हैं। आधुनिकता और परंपरा के समन्वय से देश का संतुलित विकास संभव है। इस विश्वविद्यालय के शैक्षणिक ढांचे एवं पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा को समाहित करने की पहल सराहनीय है। मुझे ज्ञात हुआ है कि ये विश्वविद्यालय वैदिक गणित एवं भारतीय शैक्षणिक मूल्यों के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न संस्थाओं के साथ सहयोग के लिए प्रयासरत है, जहां पर नवाचार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि यहां पर कार्यरत डिजाइन इनोवेशन सेंटर द्वारा पेटेंट भी प्राप्त किए गए। प्यारे विद्यार्थियों के लिए दीक्षांत समारोह जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक पाने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या बहुत अधिक। ये हमारी बेटियों के निरंतर आगे बढ़ने के संकल्प और देश के सर्वांगीण विकास का प्रतीक। आज हमारा देश नव युवकों का देश है। 65% युवा है जिनमें कुछ भी करने का अदम्य साहस है।

देश और देशवासियों को आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं और ये अपेक्षाएं तभी पूर्ण होगी जब आपको योग्यता अनुसार रोजगार मिले। इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें प्रयासरत है। रूसा तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी योजनाओं से विश्वविद्यालय को प्राप्त हो रही अनुदान से अधोसंरचना के विकास, अनुसंधान के क्षेत्र में नवाचार तथा शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हुई। अध्ययन एवं अनुसंधान उच्च शिक्षा के अभिन्न अंग। हमें ऐसे अध्ययन एवं अनुसंधान पर बोल देना होगा जो देश और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। देवियों और स्वजनों, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, वंचित वर्गों का विकास, स्वच्छता, सामाजिक समरसता आदि विषयों को अध्ययन एवं अनुसंधान में शामिल करने से समाज लाभान्वित होता है। साथ ही देश के विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहायता मिलती है। हम सबकी ऐसे सोच और ऐसे प्रयास होना चाहिए कि मध्य प्रदेश सहित देश के सभी विश्वविद्यालय ज्ञान, विज्ञान एवं अनुसंधान के उत्कृष्ट संस्थान के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि लाभ करें। प्यारे विद्यार्थियों, आज पूरा विश्व तेजी से बदल रहा है। हमारी भाषा, रहन सहन, जीवन शैली सब तेज गति से बदल रही, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे कुछ मूल्य शाश्वत है जो हमें सदैव शक्ति प्रदान करते। मेरा मानना है कि आप जैसे युवाओं को भारतीय संस्कृति के मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। सत्य, अहिंसा, करुणा, सेवा और ईमानदारी जैसे मूल्य हर युगों की मूल चेतना का हिस्सा है। इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाकर आप कठिन परिस्थितियों को भी दृढ़ता से सामना कर सकते हैं, एक आदर्श नागरिक बन सकते हैं, राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आप केवल अपने परिवार या विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि राष्ट्र की आकांक्षाओं और भविष्य के निर्माता है। आपके कंधों पे देश का भविष्य निर्भर कर रहे हैं। आपके ज्ञान, ऊर्जा और संकल्प से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि अपने शिक्षा और प्रतिभा का उपयोग केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि समाज के व्यापक कल्याण के लिए होना चाहिए। अपने आसपास के वंचित और ग्रामीण समुदाय की समस्याओं को समझें, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान विकसित करें, उन्हें सशक्त बनाएं और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में अपनी भूमिका निभाए। अपने कर्तव्य के साथ यहाँ से जाने के बाद आप एक बड़ा ऑफिसर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, लेकिन अपना कर्तव्य को अवहेला करके समाज सेवा नहीं, कर्तव्य के साथ समाज सेवा, दोनों काम को निभाना पड़ेगा। मुझे लगता है वो सामर्थ्य आप में है, वो जोश आप में है। देश के लिए काम करना आपका कर्तव्य में है, आपका शरीर में है, आपका धमनी में। आज देश डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, हरित ऊर्जा, आंतरिक अनुसंधान और आधुनिक अवसंरचना के क्षेत्र में नई ऊर्जाएं प्राप्त कर रहे हैं। इन अवसरों का लाभ उठाएंगे, नवाचार कीजिए, शोध कीजिए और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाए। परंतु इस प्रगति के साथ पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाना है। जल, जंगल और जमीन का संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, जैव विविधता की रक्षा तथा सतत विकास के लिए प्रतिबद्धता अपनी जीवन यात्रा का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। आज जिस गर्मी, जिस तरह के वृष्टि बहुल, अनावृष्टि के

0: हम झेल रहे हैं उसका कारण पर्यावरण शायद इतना सुरक्षित नहीं। मुझे विश्वास है कि आप सब युवा अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का समझकर जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपने संस्थान क्षेत्रों और देश का नाम रोशन करें। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना कर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: राष्ट्रगीत के लिए कृपया सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे।

0: धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के प्रेरक उद्बोधन, कुलाधिपति माननीय श्री मंगू

0: भाई पटेल के शुभाशीष और राष्ट्रगान के साथ ही रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर का यह ऐतिहासिक 36वां दीक्षांत समारोह अब संपन्न हो चुका है। दीक्षांत यात्रा उसी गरिमा के साथ हॉल से वापस लौट रही है। चलते चलते हम ये भी बतलाना चाहेंगे कि हमारी क्रिएटिव टीम में थे कार्यक्रम अधिशासी श्री प्रशांत परमार, सहायक अभियंता श्री सुनील पंडित, वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक श्री नीरज श्रीवास्तव, रोहित कुमार कोड़ोपे, वरिष्ठ तकनीशियन श्री सूरज मेश्राम और मार्गदर्शन रहा आकाशवाणी के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी श्री वलीउल्लाह खान सर का, कार्यक्रम प्रमुख श्री श्यामलाल टहलानी का, कार्यक्रम अधिशासी श्री विपम कुमार यादव का। अब मैं रविंद्र दुबे आपको ले चलता हूं अपने स्टूडियो। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम।

0: इंद्र दुबे आपको ले चलता हूं अपने स्टूडियो। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। हम आपको सुनवा रहे हैं आ अब लौट चले फिल्म से, जिसे आवाज दी उदित नारायण और जसविंदर नरूला ने।

कार्यक्रम का अगला गीत जब वी मेट फिल्म से है। उस्ताद राशिद खान ने इस गीत को गाया है, लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत प्रीतम का।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे विनोद कुमार सेन और साथियों के गाय लोकगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। आकाशवाणी शिवपुरी से ही लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। कलाकार हैं अरुण दाते। पहले सुनते हैं ये भजन।

0: सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे अरुण दाते के गए भजन। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।

0: करुणाधी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: नौ बरस लंबी थी ना।

0: मौसम फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योग किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा,
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं, वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी योग की विभिन्न मुद्राओं तथा प्राणायाम का अभ्यास किया। प्रदेश के सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग के कार्यक्रम हुए, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंदौर ने ब्राह्मणी प्राणायाम में नया रिकॉर्ड बनाया। इधर राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोगों ने योग अभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया।

0: कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की विशेष व्यवस्थाएं की। ग्वालियर में सामूहिक योग कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के 3 पोत INS दुर्गागिरि, INS संशोधक और INS अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा,
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और साथियों, एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज आयोजित नीट UG पुनः परीक्षा में देशभर के 22 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 में आज प्रदेश के लगभग 1,18,000 अभ्यर्थी 30 जिलों के 283 परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा देंगे। परीक्षा केन्द्रों पर मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन, कैमरा, बेल्ट, आभूषण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए इस बार प्रश्न पत्र वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय रखी गई है। प्रश्न पत्र एयरफोर्स के विशेष विमान से भोपाल पहुंचाए गए हैं। NTA ने इस बार परीक्षा में तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। पेपर लीक या अफवाहों को रोकने के लिए राज्य साइबर मुख्यालय में विशेष निगरानी की व्यवस्था बनाई गई है। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। मौसम विभाग ने इसके 25 जून तक प्रवेश करने की संभावना जताई है। प्रदेश में प्री मानसूनी गतिविधियां जारी हैं। विभाग के अनुसार आज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित 37 जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट है। कई क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज ग्राम पंचायत खोड में खाद्यान्न वितरण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। प्रभारी मंत्री ने स्टॉक रजिस्टर, POS मशीन के संचालन और खाद्यान्न की गुणवत्ता की सघन जांच की। त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला में भारत ए और मेजबान श्रीलंका ए के बीच फाइनल मुकाबला जारी है। मैच दाम्बुला स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलीबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है जो स्वस्थ संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
3: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
4: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। किताबते आकाशवाणी समाचार मुंबई।
0: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे

0: दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस धुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि यह परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रूपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, उसके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
3: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई के 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रूपये के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रूपये तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार

0: जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: ईरान के प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरों मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधि मंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामबुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान के संसद अध्यक्ष MB कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:30 बजे में प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

वाला एक पर्व है। बलिदेव पितृ दिवस की शुरुआत 20वीं सदी के प्रारंभ में पिता धर्म तथा पुरुषों द्वारा पर्वजिस का सम्मान करने के लिए हुई। सबसे पहले पश्चिम वर्जीनिया के फेयरमोंट में 5 जुलाई वर्ष 1908 में इसे मनाया गया था। ग्रेस गोल्डन क्लिंटन द्वारा प्रथम फादर्स डे चर्च आज भी सेंट्रल यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च के नाम से फेयरमोंट में मौजूद है। बलि तो पिता एक ऐसा शब्द है जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बचपन में जब बच्चा चलना सीखता है तो सबसे पहले अपने पिता की उंगली थामता है और एक नन्हा सा बच्चा पिता की उंगली थामे सुकून पाता है। बल साथियों, पिता घर का वो हिस्सा होते हैं जो खुद को सख्त बनाकर हमें कठिनाइयों से लड़ना सिखाते हैं और जीवन की लड़ाई लड़ने के लिए हमें तैयार करते हैं। बल साथियों, माँ यदि जीवन की सच्चाई है तो पिता जीवन का आधार। माँ बिना जीवन अधूरा है तो पिता बिना अस्तित्व अधूरा। पिता ही वो इंसान होते हैं जो कभी माँ का प्यार देते हैं तो कभी शिक्षक बनकर गलतियाँ बताते हैं तो कभी दोस्त बनकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और पिता ही दुनिया के एकमात्र ऐसे इंसान हैं जो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे भी अधिक तरक्की करे, उनसे भी अधिक नाम कमाए। बल्कि तो जीवन को दिशा देने वाले पिता के लिए एक खास दिन मनाना हमारे जीवन में दिए गए उनके योगदान के समतुल्य तो नहीं हो सकता, पर फादर्स डे के रूप में हमें वो मौका जरूर दिया है जब हम उनके प्यार, मदद और अपनेपन को महसूस कर उनसे ये कह सकें कि मैं आज जो भी हूँ या आगे जो भी बनूंगा वो आपके बिना संभव नहीं था। तो चलिए बाल साथियों, देर किस बात की, जाइए अपने पिता के पास और पैर छूकर अपने आप को धन्य कीजिए और जीवन की सच्चाई से रूबरू कराने के लिए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद दीजिए। और बाल साथियों, यदि आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे प्यारा कौन है तो आप यही कह

लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप उसे हासिल नहीं कर लेते। इसी प्रेरक सुविचार के साथ बाल मित्रों स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम बाल सभा में। कार्यक्रम का ये अंक लेकर आज आपके साथ हूँ मैं आपकी मधु दीदी। बाल मित्रों आज है जून माह का तीसरा रविवार और आज हम सभी फादर्स डे यानी पितृ दिवस मना रहे हैं। ये पिताओं के सम्मान में मनाया जाए

साथियों अभी आपने सुना मैं ऐसा ही हूँ फिल्म का ये प्यारा सा गीत, आवाजें थी सोनू निगम, श्रेया घोषाल और बेबी अपर्णा की। समीर के गीत को संगीत से संवारा था हिमेश रेशमिया ने। और बन मित्रों, आज हम सभी योग दिवस भी मना रहे हैं। आज की इस भागम भाग भरी जिंदगी में हम सब अपने आप से ही अलग से हो गए हैं और योग हमें पुनः अपने आप से जोड़ने में मदद करता है। बस अतियों योग मन शरीर और आत्मा की एकता को सक्षम बनाता है। योग के विभिन्न रूपों से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अलग अलग तरीकों से लाभ मिलता है और ये दिवस इस अनूठी कला का आनंद लेने के लिए ही मनाया जाता है। योग की कला का जश्न मनाने के लिए एक विशेष दिन की स्थापना का विचार

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तावित किया था। उन्होंने सितंबर वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान ये सुझाव दिया था कि योग दिवस 21 जून को मनाया जाना चाहिए क्योंकि ये वर्ष का सबसे लंबा दिन है। बल्कि तो 21 जून वर्ष 2015 का दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन भारत में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसे सभी ने उत्साह के साथ मनाया। न सिर्फ भारत में बल्कि इस तरह के शिविरों का आयोजन दुनिया के अन्य हिस्सों में भी किया गया। हम आपको बता दें बाल मित्रों कि योग का अभ्यास एक बेहतर इंसान बनने के साथ एक तेज दिमाग, स्वस्थ दिल और एक सुकून भरे शरीर को पाने के तरीकों में से एक है। योग अपने अद्भुत स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। तो हमारे देश के इतिहास की बात की जाए तो बहादुरी और वीरता में कई राजाओं के नाम सामने आते हैं, लेकिन इतिहास में एक वीरांगना ऐसी भी है जिन्हें उनके पराक्रम के लिए याद किया जाता है और वे है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती बाल साथियों हमारे देश की वो वीरांगना है जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध कर वीर गति प्राप्त की थी। उन्होंने अपने पति के मृत्यु के बाद न केवल राज्य संभाला बल्कि राज्य की रक्षा के लिए अनेकों युद्ध भी किए। रानी दुर्गावती अपने पति की मृत्यु के बाद गोंडवाना राज्य की उत्तराधिकारी बनी। बल्कि तो रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर वर्ष 1524 को प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में वर्तमान में बांदा उत्तर प्रदेश में चंदेल राजवंश के कालिंजर किले में हुआ था। दुर्गाष्टमी के दिन जन्म होने के कारण ही आपका नाम दुर्गावती रखा गया। बल्कि तो रानी दुर्गावती को बचपन से ही तीरंदाजी तलवारबाजी का शौक था। वर्ष 1542 में आपका विवाह दलपत शाह से हुआ। दलपत शाह की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण को राजगद्दी पर बैठाकर खुद राज्य की शासिका बन गई। 50 से भी अधिक युद्ध उन्होंने लड़े। इतना ही नहीं बाल मित्रों, रानी ने मुगल सम्राट अकबर के सामने कभी घुटने नहीं टेके। अकबर रानी के राज्य को हड़पना चाहता था। उसने योजनाबद्ध तरीके से युद्ध करने की ठानी और वर्ष 1564 में दोबारा रानी के राज्य पर आक्रमण कर दिया। रानी अपने हाथी सरमन पर सवार हो लड़ाई के लिए आई। लड़ते लड़ते रानी घायल हो गई और 24 जून को लड़ाई के दौरान ही अपने आप को सुरक्षित न देख उन्होंने अपनी ही तलवार अपने पेट में घुसा ली और वीर गति प्राप्त की। और इस तरह इस वीरांगना ने युद्ध में अपने साहस और बहादुरी के साथ दुश्मनों का सामना करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो बाल साथियों ऐसी थी महान वीरांगना रानी दुर्गावती। इस चर्चा के बाद बाल मित्रों अब आपको लिए चलते हैं नन्हे अंकुर क्रम की ओर। बाल मित्रों आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही प्यारी सी बालिका आई हुई है जिसके हाथ में हम देख रहे हैं एक गिटार है। चलिए जानते हैं कि ये गिटार बजाती हैं तो क्या साथ में गाती भी हैं। चलिए करते हैं उनसे थोड़ी सी बातचीत और जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका?
1: जी मेरा नाम आर्या खरे है।
0: आर्या खरे, आर्या हम आपके हाथ में गिटार देख रहे हैं, तो आप गिटार बजाती हैं?
1: हाँ जी।
0: अच्छा, आपको गिटार बजाने का शौक कैसे हुआ?
1: जी मैं एक मूवी देख रही थी तो उसमें मैंने देखा, वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला। तो मेरे घर में एक गिटार रखा हुआ था जो कि 2 साल से पैक था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे निकाल के यूज करूँ। फिर मैंने यूट्यूब से निकाला, उसके डिटेल्स निकाले, मैंने बेसिक मैंने यूट्यूब से सीखा, उसके बाद आज मैं यहाँ तक आई हूँ।
0: मतलब आपने, आपको इंस्पिरेशन मिली, यूट्यूब से आपने निकाला और वहीं से आपका ये सफर शुरू हुआ।
1: हाँ जी
0: बिल्कुल। तो आज आप हमारे बाल साथियों को क्या सुनेंगी?
1: जी मैं एक भजन सुनाऊंगी गिटार पे, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना होंगे।
0: चलिए सुनाइए।

0: प्यारा भजन आपने हमारे बाल साथियों को सुनाया। अच्छा आर्या, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं?
1: जी मैं 8 क्लास में पढ़ती हूँ।
0: आप 8 क्लास में पढ़ती हैं। अच्छा आपको और किस किस चीज का शौक है, गाने के अलावा या गिटार बजाने के अलावा और कौन कौन से शौक आप रखती हैं?
1: जी मुझे डांस का भी शौक है और मैं पेंटिंग भी करती हूँ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा आर्या ये बताइए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे?
1: जी मैं बड़े होकर पहले UPSC क्लियर करना चाहती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं आगे सोचूंगी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, हम तो यही चाहेंगे कि आप खूब आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, खूब मेहनत करें, खूब आगे बढ़ें। अच्छा आर्या आप हमारे बाल साथियों को कुछ और सुनाना चाहेंगी?
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: क्या सुनाएंगी?
1: जी मैं एक वचन और सुनाना चाहूंगी।
0: चलिए सुनाइए।
1: अक्षुतम।

0: अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बहुत ही प्यारा भजन आपने आर्या सुनाया। अच्छा आर्या, ये बताइए आपके परिवार में क्या और कोई भी गिटार बजाता है?
1: जी नहीं, मैंने सिर्फ फोन से एक इंस्पिरेशन मुझे मिला था उसके बाद।
0: अच्छा, मतलब आप स्वयं से ही आपने शुरुआत की और आप स्वयं ही गिटार बजाती हैं?
1: हाँ जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है ये। चलिए आर्या, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने हमसे इतनी अच्छी बातचीत की, आपने हमको इतने प्यारे भजन सुनाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।
1: जी शुक्रिया।

परंतु हम सभी आगामी 26 जून को मुहर्रम पर्व मनाएंगे। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है जो नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। इसे इस्लाम के 4 पवित्र महीनों में से एक माना जाता है जिसमें युद्ध और हिंसा पूरी तरह से वर्जित है। ये पर्व शांति, संयम और न्याय की लड़ाई में इमाम हुसैन की शहादत की याद दिलाता है। ये दिन मनाना सिर्फ हजरत इमाम हुसैन की शहादत के लिए ही याद नहीं किया जाता, बल्कि इस दिन हुसैन के सबसे छोटे बेटे हजरत अली असगर की कुर्बानी को भी याद किया जाता है जो मात्र 6 महीने के थे। मैंने तो करबला में हजरत इमाम हुसैन और उनके परिवार ने सच और इंसाफ के लिए अपनी जान इसी दिन कुर्बान की थी। करबला में शहादत पाने वाले 6 महीने के अली असगर की कहानी भी कुछ ऐसी जो आंखों में आंसू ला दी। इस्लामी वालसाथी मुहर्रम को उत्सव की तरह न मनाकर शोक और मातम के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं, दान करते हैं और धार्मिक सभाएं आयोजित करते हैं। लोग इमाम हुसैन की याद में काले कपड़े पहनते हैं और ताजिए निकालते हैं। भारत जैसे सांप्रदायिक देश में बने तो मुहर्रम को शांति और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। और बाल साथियों, अब बढ़ते हैं अपनी अगली चर्चा की ओर। मैंने तो कहते हैं जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा बचपन होता है। न कोई जिम्मेदारी का बोझ होता है, न भविष्य की चिंता, सिर्फ खुद से मतलब। ऐसा मस्त समय जीवन में फिर दोबारा कभी नहीं आता और इन सब मस्ती के पल का साक्षी होता है हमारा विद्यालय। हमारे व्यक्तित्व को बनाने और निखारने में स्कूल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और बाल साथियों, विद्यालय की परंपरा कोई नई नहीं है, सदियों से हमारा देश ज्ञान का स्रोत रहा है। हमारे यहाँ तो आदिकाल से ही गुरुकुल परंपरा रही है। राजा महाराजा भी अपना राजसी वैभव छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरुकुल जाते थे। यहाँ तक कि ईश्वर के अवतार भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम भी पढ़ने के लिए गुरुकुल आश्रम गए थे, ये हम सभी जानते हैं। मैंने तो नए शिक्षण सत्र का मतलब है सब कुछ नया नया। अब आप भी अपना नया बैग, नई यूनिफॉर्म मंगाकर तैयार करवा लें। अपनी किताबें और कॉपियां भी मंगाकर उन्हें अच्छे से कवर करके अपना नाम भी लिखकर तैयार कर लें। अपने जूते, टाई, बेल्ट और लंच बॉक्स भी निकाल कर रख लें, क्योंकि वो भी तो गर्मी की छुट्टियों में काफी समय से अलमारी में बंद होंगे। उन्हें भी धोकर पोंछकर तैयार कर लें। गर्मी की छुट्टियां होने के कारण आपके जागने और सोने का रूटीन भी बदल गया होगा, तो अब से रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। इसी चर्चा के साथ बाल साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, और अब चलने का समय हो गया है, तो अनुमति दीजिए अपनी मधुर

0: अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की पूरी पूरी प्रशंसा कर रही है।
1: फॉर्चून ऑफ

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें। पेश इस घंटे की खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योग किया। प्रदेश के सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग के कार्यक्रम हुए, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के 3 पोत INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि आज आयोजित नीट UG पुनः परीक्षा में 21 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं, अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में आज प्रदेश के लगभग 1,18,000 अभ्यर्थियों के लिए 30 जिलों में 283 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। भोपाल में 32 केंद्र पर 13,774 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। NTA ने इस बार परीक्षा में तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने कहा कि सभी को राष्ट्र, समाज और जनता के लिए अपने जीवन को उपयोगी बनाने का संकल्प लेना चाहिए। और 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज सम्पन्न हो रहा है। यह महोत्सव इस वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। समारोह में वृत्तचित्र, लघु कथा, एनिमेशन और AI फिल्में प्रदर्शित की गई। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 3 बजे हैं। आइए आपको जानकारी दे दें इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम होगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 5:33 और 6:15 पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग विशेषज्ञ सपना अग्रवाल से सुनीता सिंह की बातचीत हम आपको सुनाएंगे आज शाम 6 बजे। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य मैनचेस्टर में खेले जाने वाले महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप सुन सकते हैं शाम 6:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 3:01 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे से आप हमारे कार्यक्रम पुनः मीडियम वेव 188.32 मीटर पर सुन सकेंगे। इस बीच कार्यक्रम डीटीएच पर जारी है।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 5 बजने को हैं। अब हमारी आज की संध्याकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

पेश है इस घंटे की खास खबरें। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक योग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई और मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संस्थापक और प्रथम सरसंघ संचालक डॉ केशव हेडगेवार की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के लिए समर्पित डॉ हेडगेवार का अनुशासित जीवन युवाओं के अनंत काल तक के लिए प्रेरित करता रहेगा। प्रदेश सरकार की भावांतर भुगतान योजना को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया और मौसम विभाग ने आज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के 37 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। युवाजन सुने कार्यक्रम युव वाणी, योगदान शिवपुरी केंद्र का है।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। साथ ही हमारा दूसरा विषय रहेगा ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। दोस्तों, क्रम वार्ता में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे विषय योग का जीवन में महत्व। वार्ताकार है रघुवीर पाराशर। साथियों, क्रम जीवन आलोक में हमारा चर्चा का विषय रहेगा आपका महाविद्यालय आपके कैरियर का प्रथम चरण है। और साथियों, आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। दोस्तों, योग भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपरा की अमूल्य देन है। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। आधुनिक जीवन की भागदौड़, तनाव और अनियमित दिनचर्या के कारण लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे समय में योग स्वस्थ और सुखी जीवन का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। दोस्तों, योग के महत्व को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत भारत के प्रयासों से हुई। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून सन 2015 को पूरे विश्व में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। साथियों, योग मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियमित योग अभ्यास से शरीर स्वस्थ, लचीला और ऊर्जावान बनता है। यह अनेक बीमारियों, मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी अनेक रोगों को नियंत्रित करने में सहायक होता है। साथियों, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी योग अत्यंत लाभकारी है। यह तनाव, चिंता और अवसाद को कम करता है तथा मन को शांति प्रदान करता है। ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति अपनी एकाग्रता और आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए योग विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि इससे स्मरण शक्ति और अध्ययन क्षमता में वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश विदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथियों, महाविद्यालय, विद्यालयों, सरकारी संस्थानों और

सामाजिक संगठनों के द्वारा सामूहिक योगाभ्यास कराया जाता है। योग विशेषज्ञ लोगों को विभिन्न आसनों और उनके लाभों की जानकारी देते हैं। इस दिन योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रैलियां, संगोष्ठियां और प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, योग दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना और योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आज विश्व के अनेक देशों में लाखों लोग योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। वर्तमान समय में तकनीकी विकास के कारण लोगों की शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं। लंबे समय तक मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा रहा है। ऐसी परिस्थिति में योग एक सरल, सस्ता और प्रभावी उपाय है। इसे किसी विशेष उपकरण या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। नियमित रूप से कुछ समय योग को देने से व्यक्ति स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जी सकता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल एक उत्सव नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन का संदेश है। योग मानवता को शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। यह भारत की महान सांस्कृतिक विरासत है जिसे आज पूरा विश्व अपना रहा है। हमें भी योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर स्वस्थ, संतुलित और सुखमय जीवन की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। यही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का वास्तविक उद्देश्य और महत्व है। साथियों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: कलाकार हैं शर्मा बंधु, संगीतकार हैं पंडित परमानंद, माफ कीजिए, पंडित रमानंद शर्मा, और कार्यक्रम है भजन संध्या।

शर्मा बंधुओं के गाए इस भजन के साथ ही भजन संध्या कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है लोकधारा कार्यक्रम। आइए, इसके आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं विमला देवी परिहार के स्वर में गैलहाई।

0: अभी आपने विमला देवी परिहार से गैल्हाई सुनी।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
6: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
0: और लीजिए अब हम आपको सुनवाते हैं सोहर। स्वर है विमला देवी परिहार का।

0: अभी आपने विमला देवी परिहार से सोहर सुना।
1: वासांसि जीर्णानि यथा विहाय।
2: अरे कब से तुम गीता पढ़ने लगे? क्या गीता ओलंपियाड परीक्षा की तैयारी हो रही है?
1: हाँ हाँ सही समझी, विश्व गीता प्रतिष्ठान उज्जैन की शाखा है हमारे ललितपुर में, वहीं से तैयारी कर रहा हूँ।
2: अच्छा, वो प्रगति विद्या मंदिर के पीछे नई बस्ती में जो स्वाध्याय मंडल है?
1: हाँ हाँ वहीं, उसके संचालक हैं श्री सर्वदेव तिवारी। मोबाइल नंबर है
2: 8858920259
1: 8858920259।
0: और अब हम आपको सुनवा रहे हैं लेद, स्वर है विमला देवी परिहार का।

0: अभी आपने विमला देवी परिहार के स्वर में लेद सुनी।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी
3: फीस तो देखो
4: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
4: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
5: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
6: आरबीआई कहता है
7: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: और लीजिए अब हम आपको सुनवाते हैं कहरवा।
8: पपिया न बोले सुना रे

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: और आइए अब सुनते हैं विमला देवी परिहार के स्वर में लावणी।

0: लवनी सुनी।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
0: और लीजिए विमला देवी परिहार के स्वर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं चेतावनी। ढोलक पर महेश कुमार और बैंजो पर संजय वंशकार ने संगत की है।

अभी आपने विमला देवी परिहार के स्वर में चेतावनी सुनी और लीजिए लोकधारा कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं उर्मिला पांडेय के स्वर में बन्ना।

उर्मिला पांडे के गाए इस बन्ना के साथ ही लोकधारा कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडिया वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए हम आपको दे दें गुमशुदा के संबंध में सूचना। ये है निशा कुमारी जो हरसिंहपुर से दिनांक 9 मई 2026 को दिन में 10:15 से लापता हैं। इनकी आयु है 26 वर्ष, ऊंचाई है 5 फीट 6 इंच, आंख नाक कान औसत, रंग गोरा, चेहरा गोल, आंखें काली बाल काले। इन्होंने नीला सलवार सूट पहना हुआ है और काला दुपट्टा डाला हुआ है, साथ में ये अपने साथ मोबाइल लिए हुए हैं जिनके नंबर हैं 8318284376 और 7081279038। अगर किसी को इनके संबंध में कोई सूचना मिलती है तो वो इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। पता है वीर बहादुर पुत्र स्वर्गीय प्रताप सिंह, निवासी दानापुर, थाना कुठौंद, जिला जालौन।

लीजिए, गुमशुदा के संबंध में एक और सूचना हम आपको दे दें। ये व्यक्ति हैं संजीव कुमार, जो ग्राम कैथवा से दिनांक 21 मई 2026 को शाम 7:30 बजे से लापता हैं। आयु है 32 वर्ष, ऊंचाई है 5 फीट 7 इंच, लंबा मजबूत जिस्म, रंग गेहुआ, चेहरा पतला और चेहरे पर दाढ़ी है, आंखें सामान्य, बाल काले। इन्होंने हरी शर्ट और नीला लोवर पहना हुआ है। पत्नी से विवाद होने और मां के डांटने पर घर से चले गए हैं। यदि किसी को इनके बारे में कोई सूचना मिलती है तो इस पते और मोबाइल नंबर पर सूचित करें। पता है राजीव कुमार पुत्र रामबाबू, निवासी ग्राम कैथवा, थाना कुठौंद, जनपद जालौन, मोबाइल नंबर 6801767158। सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: TLI है ना।
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
4: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर

0: mobilepack@govt.in पर।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षण संस्थान केवल डिग्री देने वाले ही नहीं बल्कि नवाचार के प्रमुख केंद्र होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई और दक्षिण पश्चिम मानसून के 25 जून तक प्रदेश में प्रवेश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षण संस्थान केवल डिग्री देने के केंद्र नहीं बल्कि नवाचार, अनुसंधान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और रचनात्मक सोच के विकास के प्रमुख केंद्र होते हैं। आधुनिकता और परंपरा के संतुलन से ही देश का समग्र विकास संभव है। राष्ट्रपति आज जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा,
1: रानी दुर्गावती भारत के नारी शक्ति के शौर्य के प्रतीक, वे सदैव नारी शक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। इस विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में जनजातीय वनवासी संस्कृति की प्रचुर उपस्थिति है। इस विश्वविद्यालय से जुड़े रानी दुर्गावती के नाम की सार्थकता सभी सिद्ध होगी, जो सभी भागीदारी जनजातीय समाज और वंचित तथा पिछड़े वर्ग, विशेषकर इन वर्गों की बेटियों की सशक्तिकरण के लिए प्रयास करें।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति ने विभिन्न संकायों में से एक से अधिक स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले 20 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए और उपाधियों का वितरण किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के 141 विद्यार्थियों को 240 स्वर्ण पदकों का वितरण किया गया। साथ ही 182 शोधार्थियों को पीएचडी सहित विभिन्न उपाधियां प्रदान की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि
2: रानी दुर्गावती का विश्वविद्यालय आज एक गौरवशाली इतिहास को लिख रहा है। जब 5-5 स्वर्ण पदक लेकर के बेटी हमको सीना 56 इंच का करने का मौका दे रही, कितना अच्छा लगता है। कोई 3 स्वर्ण पदक, कोई 2 स्वर्ण पदक, जो नई प्रतिभाओं के बलबूते पर विश्वविद्यालय अपना नया इतिहास लिख रहा है, ये हमारे लिए गौरवशाली क्षण है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब 12वां वर्ष उनकी सफलता के नए कीर्तिमान रच रहा है, ऐसे में विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रांगण, माँ सरस्वती के प्रांगण में आज ये नया सूर्य उगा है।
0: कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति विशेष विमान से ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर विमानतल पर स्वागत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू और राज्यपाल पटेल कुछ देर रुकने के पश्चात हेलीकॉप्टर से श्योपुर जिले के क्रूनो के लिए रवाना हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योग किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी योग की विभिन्न मुद्राओं तथा प्राणायाम का अभ्यास किया। प्रदेश के सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में सहभागिता कर योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंदौर ने भ्रामरी प्राणायाम में नया रिकॉर्ड बनाया। और शहर में सामूहिक योग कार्यक्रम के दौरान हजारों प्रतिभागियों ने 3 मिनट से अधिक समय तक लगातार भ्रामरी प्राणायाम किया। आयोजकों ने इसे सामूहिक सहभागिता और योग के बढ़ते जन आंदोलन का प्रतीक बताया। इधर राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की गई थी। ग्वालियर में सामूहिक योग कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के 3 पोत आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ

0: आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं, घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जहाज रखरखाव, मरम्मत एवं संचालन को एक बड़े राष्ट्रीय मिशन के रूप में देखा जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि इन युद्धपोतों का नौसेना में शामिल होना भारत के भविष्य का संकेत है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र विकसित भारत के लिए रोजगार का बड़ा माध्यम बन सकता है और आने वाले वर्षों में लाखों नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अधिकांश परिणाम घोषित किए जा चुके हैं और पुनर्मूल्यांकन तथा सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाकी परिणाम भी जल्द प्रकाशित कर दिए जाएंगे।
1: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई के 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई। परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित हुई। इसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इसमें सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और प्रश्न पत्रों के सुरक्षित परिवहन के लिए जीपीएस युक्त वाहनों के साथ पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था शामिल थी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की गई। यह अंग्रेजी सहित 12 भारतीय भाषाओं में सम्पन्न हुई। परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित और पारदर्शी संचालन के लिए 2 लाख से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया। इनमें पर्यवेक्षक, समन्वयक, पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने भ्रामक सूचनाओं और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सोशल मीडिया मंचों पर भी लगातार निगरानी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एफआईएच महिला हॉकी कप जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में टूर्नामेंट टीम के असाधारण प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह जीत कई युवा खिलाड़ियों को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करेगी। प्रदेश में मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। मौसम विभाग ने इसके 25 जून तक प्रवेश करने की संभावना जताई है। प्रदेश में प्री मानसूनी गतिविधियां जारी हैं। विभाग के अनुसार आज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित 37 जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का 56वां स्थापना दिवस समारोह कल भोपाल में आयोजित किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार होंगे। इस अवसर पर अकादमी द्वारा प्रकाशित प्रगति पथ ब्रॉशर ऑडियो मासिक पत्रिका रचना का विमोचन किया जाएगा। यह प्रकाशन अकादमी की शैक्षणिक, साहित्यिक एवं ज्ञान विस्तार संबंधी गतिविधियों का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय भोपाल की ओर से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज आसरा वृद्धाश्रम में बड़े उत्साह के साथ विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खंडवा में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर में किया गया। नीमच में योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। नर्मदापुरम में नर्मदा नदी के पावन तट पर सेठानी घाट पर आयोजित योग दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, विद्यार्थियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। प्रधान जिला न्यायाधीश आशिता श्रीवास्तव के संरक्षण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शिव कुमार डावर के निर्देशन में जिला जेल झाबुआ में साप्ताहिक योग अभियान का आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर समापन हुआ। मंदसौर के नूतन स्टेडियम में जिला स्तरीय सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्यप्रदेश जनजाति संग्रहालय में नृत्य, गायन एवं वादन पर केन्द्रित गतिविधि संभावना का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज श्री कृष्णा मालीवाड़ एवं साथी मांडू द्वारा भील जनजातीय भगोरिया नृत्य एवं घुमन प्रसाद पटेल एवं साथी दमोह द्वारा कांवड़ नृत्य की प्रस्तुति दी गई। शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत मारूरा अहिर में प्रशासनिक टीम ने अवैध बोरिंग मशीन पर कार्यवाही की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षा

मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए ग्रामीण भाइयों के लिए प्रस्तुत है ग्राम सभा कार्यक्रम।

0: ग्राम सभा सुनबे बारे सबई भैया बहन खां किस्सु भैया
1: और रघु भैया की
0: राम राम राम राम रघु भैया और आओ बिराजो का है हाल चाल।
1: देखो किस्सु भैया,
0: हाँ रघु भैया,
1: हाल चाल तो सब अच्छे हैं
0: बिल्कुल,
1: लेकिन गर्मी बहुत पड़ रही और बहुत उमस वाली गर्मी पड़ रही।
0: और देखो रघु भैया, उमस तो आबो जरूरी है, इसे के जैसे ही पानी बरस जात सो गरम तवा पे जैसे पानी छिड़क दो जात बादशाह है अब ई टाइम पे। तो
1: ऐसे ही है भैया, कैसे अब सभी पंच भैया मानसून को कर रहे हैं इंतजार
0: बिल्कुल।
1: और एक पंच भैया से और क्या पूछा है कि अपने पंच भैया गर्मी के मौसम में अपने खान पान को विशेष ध्यान रखें,
0: बिल्कुल
1: ज्यादा तली भूरी चीजें को सेवन न करें, उसे परहेज करें और पानी तथा तरल पदार्थन को ज्यादा से ज्यादा सेवन करें।
0: बिल्कुल रघु भैया, कितनी उम्दा बात अपन ने कही। और सुबह शाम भैया अपनो काम निपटा ले, दोपहरी के इंतजार में रहें कि भैया दोपहरी हो तब, और दोपहरी से हमारा तो केव तो जो है पंचन से दोपहरी के बारे निकले ना के नहीं।
1: वो बिल्कुल भैया, और सुबह रात के जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठें, और उठें तो भैया योग जरूर करें।
0: बिल्कुल। अच्छा रघु भैया, अपन ने योग की बात करी है तो देखो आज योग दिवस सो है।
1: बिल्कुल भैया, देखो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और जो भैया 21 जून यानी आज पूरे विश्व में मनाओ जाते।
0: बिल्कुल,
1: यह लोगन के शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लाने जागरूकता बड़ा
0: बिल्कुल। अच्छा इसे का होते कि हमारे पंच भैया जो है शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, और इसे रघु भैया क्यों रोगन से बचाव होते हैं। अपन देखते हैं कई जने हमारे पंच का करें, उन्हें खाओ और बस आराम से पड़ रहे या गए अपने ऑफिस में बैठ गए कुर्सी पे, अपने दिन भर काम करते रहे और चली फिरी ना योग करो, तो इसे का है शारीरिक दुर्बलता तो आती ही है और संगे संगे क्यों प्रकार के पेट के विकार उत्पन्न हो जाते, क्यों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है,
1: हृदय रोग मधुमेह ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां जो होती हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो अगर पंच भैया योग करें तो इनको जोखिम बहुत कम हो जाता,
0: बहुत कम हो जाता। और देखो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर खां 2024 का संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व स्तर पे योग दिवस मनाने को प्रस्ताव धरो तो,
1: और भैया रिकॉर्ड समर्थन यानी 177 देशों को उन्हें समर्थन मिलो।
0: बिल्कुल,
1: और इसकी घोषणा 11 दिसंबर 2014 खां संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पे 21 जून का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने को निर्णय करो।
0: बिल्कुल, और देखो रघु भैया

0: योग अपने शरीर के लाने कितो लाभदायक हो के भी खा तो है कि भैया इमें मेहनत लगत करने परत समय निकालने आओ, लेकिन पंच भैया अगर हरेक काम के संगे संगे अगर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट अगर अपने शरीर के स्वस्थ रखवे के लाने अगर योग करवे के लाने टाइम निकाल लेवे तो भैया जिंदगी भर को आराम है के नहीं है।
1: देखो किशु भैया, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पंच भैया का दुनिया की तमाम प्रकार के टेंशन है
0: बिल्कुल,
1: और जो समझो कि उन्हें दिन भर कुछ सोचने को मौका नहीं मिला, अपन ने काहूत के जैसे अब योग कर रहे हैं तो क्या है बहुत मानसिक तनाव
0: बिल्कुल बिल्कुल। अपन ने देखो आज कम से कम 80% व्यक्ति तनाव ग्रस्त रहते हैं और तनाव ने कह को आते हैं कह तो तना मना बीमारी आ गई, वही सोच में पड़ जाते हैं कि भैया जब बीमारी आ गई अब कैसे साजे हुई हैं हम कैसे ठीक हुई हैं, कह नहीं क्यों वीर दवाई करा ले उनने महीना के इंतजार करो ना साजे भाई, सो वो तनाव में भी घुस गए।
1: और भैया एक बात और है कि आज के समय में जो पंच भैया उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं है,
0: बिल्कुल टाइम नहीं है,
1: और काहूत के जब भी बीमार हो जाते हैं तो फिर सब करण लगाती
0: है, सब करण बिल्कुल बिल्कुल
1: घूमन भी लगा
0: बिल्कुल।
1: तो भैया हम तो पंच भैया से यही क्या वो है कि बीमार होवे के पहले घूमे योग करें तो फिर निरोग रहे
0: बिल्कुल। तो रघु भैया पंचन से बतकाओ तो अपन करते ही रहे, लेते हैं तनक सो विराम
1: बिल्कुल।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
3: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंसर हिल्स।
0: हाँ रघु भैया,
1: हाँ
0: विराम के बाद फिर अपन पंचन को करते हैं कार्यक्रम में स्वागत।
1: और देखो किशु भैया, अपने पास समय समय पे जो नई जानकारी होती है पंच भैया का सुनाउत है,
0: बिल्कुल सुनाउत है।
1: पंच भैया के पास किलाने अपने पास एक वार्ता है ग्रामीण विकास में युवाओं की भूमिका, वार्ताकार है शरद कुमार रेखवार। तो अपन सुने पंच सुने जी वार्ता।
0: बिल्कुल रघु भैया,
4: भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां आज भी बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण भारत देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सामाजिक संरचना का आधार है। किसी भी राष्ट्र का समग्र विकास तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक उसके गांव विकसित ना हो। इसी कारण ग्रामीण विकास को राष्ट्रीय विकास की रीढ़ माना जाता है। ग्रामीण विकास का अर्थ केवल आर्थिक उन्नति नहीं है बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोजगार, कृषि और सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और आधारभूत सुविधाओं के विकास से भी है। युवा किसी भी समाज की सबसे ऊर्जावान, रचनात्मक और परिवर्तनकारी शक्ति होते हैं। भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। देश की बड़ी जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। यदि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार क्षमता का सही दिशा में उपयोग किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिए ग्रामीण विकास में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ग्रामीण विकास के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जाता है। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास तथा सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करना है। ग्रामीण विकास के जो मुख्य उद्देश्य होते हैं जैसे कि गरीबी को कम करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, कृषि उत्पादन वृद्धि करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना, सामाजिक समानता स्थापित करना, महिलाओं और कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास करना, इन उद्देश्यों की प्राप्ति में युवाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। युवा समाज की गतिशील शक्ति है, उनमें नई सोच, ऊर्जा, साहस और जोखिम उठाने की क्षमता होती है। वे नई तकनीकों को अपनाने में सक्षम होते हैं तथा सामाजिक परिवर्तन के वाहक बन सकते हैं। युवाओं के लिए वे परिवर्तन के अग्रदूत होते हैं, उनमें नवाचार और नेतृत्व क्षमता होती है। वे समाज को जागरूक बनाने में सक्षम है, वे नई तकनीकों को तेजी से अपनाते हैं, वे सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं, वे विकास योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने में सहायक होते हैं। भारत की अधिकांश ग्रामीण आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि क्षेत्रों के विकास में युवाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। युवा किसान आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर उत्पादन बढ़ा सकते हैं, जैसे कि ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, जैविक खेती, उन्नत बीज, कृषि मशीनरी, स्मार्ट कृषि तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। युवा आज अनेक कृषि को व्यावसायिक रूप में अपनाकर नए प्रयोग कर रहे हैं।

हैं, जैसे कि मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, डेयरी उद्योग, मत्स्य पालन, बागवानी, फूलों की खेती जैसे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। युवा इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके किसानों को बाजार से जोड़ सकते हैं, इससे किसानों को उचित मूल्य प्राप्त होता है। शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं की भूमिका होती है, ग्रामीण विकास का आधार शिक्षित समाज ही विकास की दिशा में आगे बढ़ सकता है। साक्षरता के दौर पर अगर देखा जाए तो युवा ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता अभियान चला सकते हैं। वे अशिक्षित लोगों को पढ़ने, लिखने और प्रेरित करने के लिए हो सकते हैं। डिजिटल शिक्षा, डिजिटल युग में शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है, जैसे कि ऑनलाइन शिक्षा, स्मार्ट कक्षाएं, डिजिटल पुस्तकालय, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा प्रसार का कर सकते हैं। बालिका को शिक्षा को बढ़ावा, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई लड़कियां शिक्षा से वंचित हैं। युवा समाज में जागरूकता फैलाकर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित कर सकते हैं। स्वस्थ नागरिक ही राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते हैं। स्वास्थ्य जागरूकता युवा लोगों के लिए, जैसे कि टीकाकरण, पोषण, स्वच्छ पेयजल, परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सकते हैं। स्वच्छता अभियान, गांव में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक कर सकते हैं। नशा मुक्ति अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों में शराब, तम्बाकू और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन एक गंभीर समस्या है। युवा नशा मुक्ति अभियान चलाकर समाज को स्वस्थ बना सकते हैं। युवा रोजगार में भूमिका, जो बेरोजगारी ग्रामीण विकास की प्रमुख बाधाओं में से एक है। स्वरोजगार को बढ़ावा देना, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, डेयरी व्यवसाय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, स्टार्टअप संस्कृति, आज कई युवा ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप स्थापित कर रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। कोई युवा कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण में युवाओं की जो भूमिका होती है, जैसे कि युवा महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है। सामाजिक कुरीतियों का विरोध, युवा दहेज प्रथा, बाल विवाह, लिंग भेदभाव जैसी कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता फैला सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की जो भूमिका होती है, वृक्षारोपण, युवा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चला सकते हैं। जल संरक्षण को दूर करने के लिए वर्षा जल संचयन, तालाब संरक्षण, जल बचाव अभियान चलाए जा सकते हैं। जैविक खेती पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक है। सामाजिक सुधार में युवाओं की भूमिका, युवा सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण माध्यम है। अंधविश्वास का उन्मूलन, युवा वैज्ञानिक सोच के प्रसार कर सकते हैं। सामाजिक एकता, जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। लोकतांत्रिक भागीदारी, युवाओं को मतदान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ग्रामीण विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए पंचायतों की भूमिका, जो ग्राम सभाओं में भाग ले सकते हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं। डिजिटल भारत और ग्रामीण युवा, डिजिटल क्रांति ने ग्रामीण विकास के नए अवसर प्रदान किए हैं। डिजिटल सेवाएं, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, ई गवर्नेंस सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता कर सकते हैं। इंटरनेट का उपयोग, इंटरनेट के माध्यम से ग्रामीण लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ई कॉमर्स युवा स्थानीय उत्पादों को ऑनलाइन बेचकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। ग्रामीण विकास में युवाओं के सामने चुनौतियां, यद्यपि युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, फिर भी उन्हें कई चुनौतियों सामना करना पड़ता है। बेरोजगारी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव, तकनीकी संसाधनों की कमी, वित्तीय सहायता का अभाव, पलायन की समस्या, सामाजिक रूढ़ियां, अवसरों की कमी, मार्गदर्शन का अभाव, इन चुनौतियों का समाधान किए बिना युवाओं की क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सकता। चुनौतियों के समाधान, ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था, कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार, स्टार्टअप और उद्यमिता को प्रोत्साहन, डिजिटल सुविधाओं का विस्तार, कृषि आधारित उद्योगों का विकास, युवाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करना, सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना, वित्तीय सहायता और ऋण सुविधाएं बढ़ाना। सरकार और युवाओं की साझेदारी ग्रामीण विकास को गति देने के लिए सरकार और युवाओं के बीच सहयोग आवश्यक है। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को अवसर प्रदान कर रही है। ग्रामीण विकास का राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है और युवा इसकी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। उनकी ऊर्जा, उत्साह, नवाचार क्षमता और नेतृत्व कौशल ग्रामीण समाज में व्यापक परिवर्तन ला सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोजगार, महिला सशक्तिकरण

0: तथा सामाजिक सुधार जैसे सभी क्षेत्रों में भूमिका है। युवा शक्ति ही ग्रामीण विकास की वास्तविक शक्ति है। उनके सक्रिय योगदान से ही समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित ग्रामीण भारत का सपना साकार हो सकता है।
1: हाँ रघु भैया।
2: हाँ किशु भैया,
1: देखो अबे अपन सुन रहे थे, हमारे पंच सभी सुन रहे थे वार्ताकार शरद कुमार रेकवार जी से ग्रामीण विकास में युवाओं की भूमिका।
2: बिल्कुल भैया।
1: और देखो अपन लेते हैं तनक सो विराम।
3: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
4: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
1: रघु भैया।
2: हाँ किशु भैया,
1: आज एक विशेष दिवस और है
2: भैया, आज है फादर्स डे।
1: बिल्कुल।
2: और भैया देखो जो जो दिवस अपने जो बुजुर्ग माता पिता है उन्हें सम्मान देवे के लाने मनाओ जाते हैं।
1: बिल्कुल।
2: अच्छा, और उनके सम्मान को तो जो भैया विशेष दिन होता है।
1: बिल्कुल रघु भैया, जो आज के दिन यानी 21 जून का पितृ दिवस मनाओ जात, कहो जाए तो जून के तीसरे रविवार को मनाओ जात।
2: और भैया देखो जो अपने पिताजी हैं या बुजुर्ग लोग हैं,
1: बिल्कुल
2: भी अभी अपने परिवार के लाने उनके पालन पोषण के लाने कितनी मेहनत कराते हैं।
1: बिल्कुल
2: भैया, अभी अपने लाने कछु ना कर रहे हैं लेकिन बच्चन की खुशी के लाने अपनी पूरी जिंदगी ने
1: बिल्कुल कर। और अपन ने देखो हुए केऊ बेर भी अब खुद अपने फटे चिथे उन्ना पैरे रहे हैं और अपने बाल गोपालन भैया नए नए उन्ना पैरा हैं।
2: बिल्कुल।
1: और जब उनसे कई जे है कि पापा अपने लाने उन्ना ले लो, बोले ले ले भी, मतलब उनके अंदर कितनों है, उन्हें उसे चिंता नहीं है कि हम कैसे उन्ना लत्ता पहने, लेकिन अपने बाल गोपालन को कितो विशेष ध्यान देते हैं।
2: अपने बच्चन की खुशी, अपने बच्चन की खुशी के लाने अपनो सुख भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल। तो अपन को भी फर्ज बना थे रघु भैया के, नहीं कि भैया अपने माता पिता को कोनो प्रकार से दुखी ना हो उनको जीवन।
2: बिल्कुल भैया। और हमारा तो यही कह वो है कि पंच भैया उनको बहुत ध्यान रखें, उनकी सेवा करें। और भैया देखो व्यस्तता तो है जिंदगी में,
1: बिल्कुल,
2: लेकिन सवेरे शाम तक उनके पास जरूर बैठें।
1: बिल्कुल, हम के जितने समय जितो टाइम हुए 10 मिनट 20 मिनट उनसे बतकाव करें, कछु पुरानी बातें याद कर करके ताजा करें और भैया तनक एक दूसरे को दुख सुख बांट लेवे के नहीं।
2: बिल्कुल भैया।
1: और देखो रघु भैया, आज अपन लेके आउत है एक नव धारावाहिक
2: चिट्ठिया देवर भ जाएगी,
1: तो अपन सुनवाऊ थे पंचना भाग एक
2: और वाचन स्वर है प्रीति पित्री को
1: और प्रस्तुति है शंभुदयाल अहिरवार जी की।

लाला राम राम। इते गांव में सब ठीक है और जय आशा करत है कि तुम सोई उते शहर में अच्छी तरह से हुई हो। बिलात दिनन से तुम्हारी कछु खबर दबर नहीं मिली, सो हमने सोची एक चिट्ठिया काय न लिखी जाए जी मैं अपने गांव की खेती पाती की जानकारी तुम्हें दे दे। अब असल में का है, जो चल रो बरसात को मौसम, पूरे गांव में कीचम कीच मची। जहाँ जोन जोन गली खोरन में गिट्टी सीमेंट की रोड बन गई, सो उते तो गनीमत है, नहीं तो बाकी तो भगवान ही मालिक है। एक पांव धरो सो फट चौड़ा, गिलारो ही गिलारो दिखा जांगन तांगन। अब अपने गांव के जन सरपंच हैं, उन्हें तो बस अपनी अपनी परी। अरे जोन जनता ने तुम्हें जिताओ है, उकी भी तो कछु खबर लियो। हर एक गली में सीमेंट को रोड बनवाओ भाई, मो देखी पंचायत करी तो ई में कास्यावासी। अरे बातो ओबरा परत ऊपर, बोई देखो अपनी मातन को चौतरा है वो फस फसागो। ऊ की जो ई साल मरम्मत ना भाई तो नाम निशान मिट जे है ऊ चौतरा को। हमने ऊ दिना जो दिना पंचायत लगी थी, सो जा खबर जोर तोर से उठाई थी, अकेले को सुनैया नैया, अपनी अपनी परी। आन को जाए भुसारे खान, धीरे धीरे टाट का मंडल उठे जाते। अरे अच्छो तो तब कहा है जब गांव की शान शौकत बनी रहा है।

तो अच्छो रहे। उ मातन को चौतरा की बनावट इतनी अच्छी है कि बैठ तन में नौनो लगत। गांव की जनी मांस माता ढार भी जाती सो तनक मनक चबूतरा पे बैठ लेती। हम तो जब तब माता के दर्शन को जा तो ऊ चबूतरा की साफ सफाई करे बिना नहीं मानत। वो सरु नन्ना है ना, उनको जो मोड़ा है भाई भारी उत्पाती है। एक दिना हम गए रहे सो वो लड़का चबूतरा के गुम्मा निकार निकार फेंक रहो तू। अरे हो चबूतरा की तो जैसी तैसी, बड़े कुआ को मन घटो है ऊ को सोई जवाब दे, उखड़ उखड़ू गो। हमने एक दिना सब पंचन में जोर के कही कछु उपाय करो, सरपंच पे दबाव डारो सुबह कुआ को मन घटो फिर से बनवा देवे, नहीं तो एक ईंट के पत्थरा निकरे सोई मिटक चलो जाने उखा। गांव में इने गिने तो स्थान है जिन्हें देख के अच्छो लगत। वो सड़क के किनारे देखो कितो बड़ो गड्ढा होगा, तो गाड़ी घोड़ा उते से निकरत सो दुर्घटना को डर बनो रात। अरे जब हमाओ मन नहीं मानो सो हमने चार आदमी गांठ के पैसा लगा के गड्ढा भरवाओ, पूरे तीन ट्राली मुरमा खागा वो गड्ढा। बड़ी मुश्किल से जो काम करवाओ हमने, वो बेरा जो मोहल्ला के जो नेता बने फिरत कर लगे बसंती भौजी जो तुमाओ काम आएगा, करे आप सरपंच ना करे सरपंच। और फिर कान लगे नेता बनने का तुम्हें, नेतागिरी करने का तुम्हें, अपनो घर दौर तक कोई में सार है। बड़े उठाई जीव और तरुआ से पटक दे, कन्ने न धन्ने ऊपर से पोचर पोचर। हमसे लाला उनकी बेमतलब की बातें सुनी ना गई सो हमने उन्हें ताड़ के कही अपनी जुबान समार के बात करो, अपनाओ ना अपनो पेट भरो तो भरो, जनता को जोन में हित होए वो काम करो चाहिए। पद से का है अरे अपनो काम करो, कहूं और जाके खींचा गाड़ो हमारे लो न फड़फड़ा। सो लाला तुम मानो झूठी, मैंने बो फटकारो कि अपनो सो मौके लेके चलत बने। लाला हमें सबसे बड़ी आफत आंसू अपने गांव की नरिया की दिखा रही। गांव के खेतन की जो माटी है बरसा के पानी के संगे बह बह के नरिया में भर गई सो नरिया हो गई उथली। कौ से जो ऊ साले नहीं भाव तो ज्यादा पानी बरसो तो सो पानी गांव में भरन लगो तो ओ भागीरथ नन्ना को घर तो देखो भसक गो तो, काय के वो माटी को बनो हतो। अब गांव में कच्चे मकान तो हुई है सैकड़ा भर, कौ नन्ना के घर जैसो हाल भाव तो ऊ सही हुई है। कई जागन तो नरिया के किनारे से मकान बना के ढल ले। अरे अतिक्रमण करवे दते सब जने, राम जाने का हुईये गांव को। हमें तो लाला जो सब देख के जाने का ऊ सही अकबकाई सी लगत। एक बात कहें लाला, कहियो ना कि ऐसी काई, पानी तो पानी है सब जितो पानी बरसत वो नरिया में हो के बह के नदिया में चलो जात। को रोकबे वालो नहीं है, रोकबे के उपाय कर लो तो गांव को पानी गांव में रहे, जो खेती और निस्तार के काम आ है। लाला अपने गांव को जो तला है ऊ की पाट जागन तागन से टूट गई, बदना के ऊपर होके पानी कट जात। अब तुम कहो कि इको उपाय का है, तो इको उपाय जो है कि पहला तो बदना की मरम्मत कराई जाए, फिर एक काड़ो बना दो जाए जी में होके ज्यादा जन तला में पानी भर जाए सुबह निकल जावे, और गहराई सोई तला की बढ़ाव चाहिए। काय से कहा है कि उमे जोन माटी कूड़ा भर गओ है उसे पानी कम बनत है, उमे कहा है कि जो जल्दी सूख जाते हैं वो पानी एक गड़ा में रह जात, तला की साफ सफाई के संगे संगे उघरो चाहिए गहरो भाव चाहिए, तबई तला की असली सकल सूरत सामने आए। कछु जने का करत ऊ के पानी से अपने खेतन की सिंचाई कर ले सो पानी सूख जात, तला में कऊ साल भर पानी भरो राय तो जमीन के नेचे को जो लेबल है ऊ भी ठीक बनो रहे है। सबसे जरूरी है बरसा के पानी को संरक्षण। अपने गांव में जो संरचनाएं बनी उनके रखरखाव की आवश्यकता बहुत जरूरी है। इके लाने जो काम करो

जा सकत है कि नरिया में ढाल के हिसाब से पानी को रोको जावे। ध्यान से पढ़ियो लाला चिट्ठिया। सबसे ऊपर जहाँ से नरिया को उद्गम यानी शुरुआत होते है उतई एक माटी को बंधान डाल दो चाहिए जिसे पानी रुक है। फिर तनक आगे चले सो जा नरिया की गहराई 1-2 फुट होवे उते कम से कम 100 फुट की लंबाई पे पत्थरा की संरचना बना दे चाहिए ढालू जिसे पानी उते आके ऊपर की ओर रुक है। जमीन में जल स्तर ऊंचो उठे। फिर 100-150 फुट के अंतर से नरिया में एक गड्ढा खोद दे चाहिए। देखो हम बेर बेर कह तुम्हें टोकत जा कि हमारी बात ध्यान से पढ़ियो लाला। नरिया में एक अंतर के हिसाब से संरचना बन जाए है तो 2 फायदा हुई है। एक तो नरिया को स्वरूप जाको ता बनो रहे है और दूसरे जमीन के नीचे से जल स्तर ऊपर उठ जे है। जा तो भाई नरिया के सुधार करबे की बात। अब खेतन की ले लो। खेतन में पानी की एक एक बूंद रोपने की जरूरत हो। खेत को पानी खेत में रहे तो वहां नमी बनी रहे। नमी फसलन के कामे आ है। इमे कन्ने का है जौन जैसो ढालदार खेत होए ओई हिसाब से उको उपचार करो जा सकत। अपनी जौन खेत में बिरबाई लगी रात बा बिरबाई भी जल संरक्षण को काम करत। अब तुम लाला कहो कि जा कैसी लिखी सो सुनो भाई। असल में होत का है वर्षा के पानी के बहाव को रोकबे को काम करत जा बिरबाई। पानी जौन माटी बहा के ले जात रेव बहबे से खेत की माटी की उर्वरा शक्ति सोई कम हो चली जा। बा उर्वरा शक्ति बनी रहे इके लाने संगे संगे एक उपाय कर वो सोई जरूरी है। ढाल के हिसाब से खेत पे बंदिया डरवा दो। अपनो बड़ो खेत है उमे धीरे धीरे उपज कम होन लगी थी सो हमने ईसाले बंदिया डरवा दे। अब देखत है का हो। असल में रेव बहबे रुकबे के लाने 1000 उपाय को एक उपाय है ढाल के हिसाब से बंदिया डार के है मजाल की पानी संगे माटी बह जावे। जोन पानी खेत भरवे के बाद ज्यादा हुई है वो निकर जे है माटी जा की ता बनी रहे। लाला जा तो भई बरसात की बात। और सुनियो तुम एक नई बात। अब मान लो चाहे वह खुशखबरी समझो या और कछु। असल में का भाव हमें बड़ी परेशानी होती कहूं आबे जावे में सो हमने एक टुर्रू ले ले। अब तो ओई से तुम्हारे भैया और हम आबे जाबे को काम करन लगे। और एक बात जासोई हम ठहरे नेतागिरी कर बेवारे। गांव भर को का हो रहो बाल बच्चन की पाठशाला चल रही मास्टर टेम से पढ़ावे आउट के नहीं सब खबर दबर हमें रखने पर। एक दिना हम सही कह रहे लाला वो डांटो मास्टर खो कि उकी हक की भक्की भूल गई। तनक सो मोरेगा वो। अब तुम देखियो 2-4 दिना में पढ़ावे आन लगे वे अपने। हमने बो रगड़ो कि बिलबिलान लगी माचा। अरे तनखा पा रहे कौन व्यवहार में पढ़ा रहे। जा तो भाई सो भाई गांव में हमें नेताजी कान लगे। तन तन से मोड़ा मोड़ी हमसे राम राम करन लगे। हमें भाई अच्छो लगत। गांव के रवैया हम लोग अपनी फरियाद लेके सोया हूं लगे। लाला तुम का थुइयो कि भौजी चिट्ठिया में का का लिख देती। अरे सही बात तो है जोन हालचाल गांव के हुई है बे तो लिखे लाला। हमने अपने खेतन की माटी की जांच करवा ली। जोन तत्व की खेतन की माटी में कमी हती उकी रिपोर्ट आ गई। अब हमें बोई खाद डालने जोन जांच में कम पाए गए। इसे का हुई है खेत की उपज बढ़ गए है। लाला एक काम करियो जोन देना शहर से आओ सो देवरानी खां भी संगे ले आइयो। उनकी तबीयत कैसी है अगली चिट्ठिया जो तुम जवाब लिखो सो अपने भैया को पेट हमेशा गड़बड़ बनो रहा कछु दवाई डॉक्टर से पूछ के ले आई हो कोनो चूरन सोई ले आई हो। काय से हमें सोई गैस की शिकायत होने लगी। अकेले हमारी तो भली चलाई अपने भैया की दवाई से जरूर ले आई हो। लाला मन्नू के लड़का को एक्सीडेंट होगा। असल में वो मन्नू को लड़का है ना बहुत उत्पाती वो एक दिना कहूं गौरव सो उत से लौट रहो तो सुनत है 4 पहिया की गाड़ी हल गई उनकी गाड़ी में।
चलाउत सो भौताई खराब।

खराब है वो मोटरसाइकिल। अरे गांव की गलियन खोरन में फर्राटे से चलाऊ। हमने एक दिना डांटो वो कही कि भैया धीरे धीरे चलाओ करे, पे काय खन भर्राटे परे रात, सो देख लो हो गो एक्सीडेंट। बॉर्डर शहर के अस्पताल में सुनत है उको एक हाथ में फ्रैक्चर हो गो, मोछ लगाओ, पूरे चार टाके आए हैं मूड में। अरे आजकल के औलाद खां जाने का होगा, संतोष और धीरज जाने का चलोगा उनको। अरे हेलमेट पैरवे में का बुराई है, जान बची सो लाखों पाए। भाई का है हाथ गोड़े टूटे तो फिर सुधर जे, अकेले कहूं मूड फट गो तो फिर को नहीं बचा सकत। हमने तो जो सब देखत भाई, दो हेलमेट मंगवा लाए तुम्हारे भैया से, एक अपने लाने और एक तुम्हारे भैया के लाने। अरे गाड़ी चला लो सो हेलमेट लगाओ, और गाड़ी बंद कर दो सो हेलमेट उतार के धर दो घरे। लाला जा तो भाई हेलमेट की बात, अब एक तुम्हें सोई काम सौंप रहे, हम आसो एक फसल के लाने थ्रेसर लेने पर है, कालो किराए के थ्रेसर से काम चलाए। अरे अपने थ्रेसर ले लो सो चार पैसा की बचत हो जाए है, और गांव बारन खां कम पैसा पे चला उतरे है सो अपनी आमदनी बढ़ जाए। तुमने अपने घर की बैठक में पंखा लगवाओ तो वो भी डगर डगर होने लगो, जाने का होगा हुए। तुम एक काम करियो, एक पंखा सोई ले आइयो खिटखिट पटाने। लाला तुम कातराते बैठक में हवा को आवागमन कहां से हुई है, सो हमने एक दीवार में खुदवा के बड़ो सो जंगला लगवा दो, अब बिना पंखा के भी कम गर्मी लगत होते। लाला अपनो हैंडपंप जन बकरी में लगो तो ना पानी कम देन लगो। ऊ दिना मनमोहन के रिश्तेदार आए थे, सो उनने भैया से चर्चा करी कि घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवा लो। सो का हुई है कि बरसात में जन पानी घर को पानी है इते उते चलो जा, सो वो सबरो इकट्ठो रहे जिसे जल स्तर ऊंचो रहे। कऊ भी अपने घर में एक गड्ढा कम से कम 6 फीट को आंगन में या कहूं भी जहां जगह होए उते खुदवा लो, और उमें रेत पथरा भरवा दो, सो जो पानी उ गड्ढा में जे है सो वो जमीन के नीचे जे है जिसे कहुए जल स्तर ऊपर उठ जे है, और साल भर हैंडपंप के बोर में पानी रहे। लाला हमने तो चिट्ठिया लिख दी, अकेले अबे एक बात और रह गई। हमने एक जगह कहूं एक कविता पढ़ी थी बाहती जल संरक्षण के ऊपर, सो बात सोई हमें लगत कि हम ये चिट्ठिया में लिख दें तो ज्यादा अच्छो रहे। तो सुन लो, धरती माँ की कोख में जल को है भंडार, बूंद बूंद खां तरस गए इत्ते भय लाचार, जल के दोहन के लाने लगा दो सब ज्ञान, पुनर्भरण से हट गओ सब लोगन को ध्यान, गहरे से गहरे करे सबने अपने कूप, बची कसर पूरी करी लगा लगा नलकूप, बरसा पानी रोक के भर लेने भंडार, कूप और नलकूप फिर कबौ न हो बेकार। तो अच्छी है ना कविता। तो देखो हमने तो चिट्ठिया लिख दई, अब इको जवाब जरूर दई। लिखियो शहर की जोन समस्याएं हैं बे कैसी का चल रही, उनको विस्तार से लिखियो विवरण, टार न दई नहीं तो हम सोई जवाब न मिले तो मन मार के बैठ जे हैं। हमें जय आशा है कि तुम हमारी चिट्ठिया को जवाब जरूर दे हो। तुम्हारी भौजी बसंती।

0: जरूर पालत हैं, लेकिन इन मुर्गियन में कछु ऐसे परजीवी होते हैं जिन्हें मुर्गियन से बचाव बहुत जरूरी है।
1: भैया एक लाए तो अपन पंजाबी ऐसे जेई के हैं कि जहां भी मुर्गी पालन का उतने साफ सफाई को विशेष ध्यान रखें।
0: बिल्कुल, और हम कहू है कि कीटनाशकन को स्प्रे करत रहें और संगे संगे मुर्गियन खो जोन है मिट्टी में और धूल में स्नान कर भी की सुविधा रहे। ऐसे भी जैसे ही धूल माटी में जैसे लूटती ना तो उनसे भी बहुत सारे परजीवी जोन है भी खत्म हो जाते के नहीं।
1: और भैया बाहरी परजीवियन से बचाव के लिए सल्फर पाउडर को उपयोग जरूर करें।
0: बिल्कुल, और भैया मुर्गियन को ज्यादा से ज्यादा समय लो एक ही जगह न रखें, समय समय पे उन्हें जगह बदलत रहे के नहीं। अच्छा, इनमें एक रघु भैया और लाल घुन सो होते है। अच्छा, जो का करे लकड़ियन की दरारन में लुकी रात और रात के का करत मुर्गियन को खून चूसत रात।
1: तो भैया सबसे बढ़िया जो है कि पंच भैया दरारन का अच्छी तरह से भर दे।
0: बिल्कुल, और अगर ऐसी परिस्थिति आए तो भैया कीटनाशकन को प्रयोग करके और उन्हें नष्ट कर सकते हैं।
1: और देखो किस भैया आप हो रहा समय आज किसी को विषय है जोड़ी तो ऊपर वालों बनाओ।
0: बिल्कुल रघु भैया, और देखो अपन देखा थे के केवेर अपन अपने बाल गोपालन के शादी ब्याह के लाने कितनी मशक्कत करते हैं, अच्छे से अच्छो घर ढूंढते हैं, अच्छे से अच्छो बर ढूंढते हैं, अच्छे से अच्छी बधु ढूंढते हैं, कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कवजात के जोड़ी जोन है बहुप्रही से बनत के नहीं।
1: बिल्कुल सांची कह रहे भैया, देखो कहा है भगवान जोड़ी ऊपर ही से बना देते हैं, और अब जो तो अपन जैसे ढूंढा एक दूसरे का देखा था,
0: प्रयास तो करनी आओ। देखो कौन काम है वो प्रयास करने आ, लेकिन एकदम वही में नहीं लगो रहने आद के जी जान लगा के वही में जुटे, एक समय आओ थे अपने आप ईश्वर प्रबंध कर दी थे के नहीं।
1: बिल्कुल सही।
0: तो रघु भैया का करें, चलत चलत पंचन को मनोरंजन न हो जाए।
1: तो भैया भगत सिंह यादव की आवाज में जो पंच भैया दादरा जरूर सुना।
0: बिल्कुल।

0: रघु भैया
1: आके सुभैया
0: देखो, अब हमारे सवाई पंच सुन रहे थे चिट्ठिया देवर भौजाई की भाग एक, वाचन प्रीति पित्रे जी को हतो
1: और प्रस्तुति हती शंभुदयाल अहरवाल की।
0: बिल्कुल। और देखो भैया, रघु भैया, हमारे पंच देखो मुर्गी

0: देखो किशोर भैया,
1: हाँ रघु भैया,
0: अबे पंचतंत्र रे तो जो दादरा गायक हते भगत सिंह यादव।
1: बिल्कुल। और अब हो रही है चलवे की बेरा, तो बता दें काल के कार्यक्रम, काल हमारे पंच सुन है रमतुला कार्यक्रम, श्रोताओं के पत्रों और फोन कॉल्स पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम, प्रस्तुति हुए रविंद्र कुमार प्रजापति जी की।
0: और पंच भैया आज की इसी में सुना, जो डार पे बैठे कोई का
1: वही
0: काट
1: काट
0: रहे।
1: रहे और अपनों तो अपनों बद का हुए, तब तक के लाने लेते हैं पंचन से अनुमति।
0: पंचो
1: राम
0: राम,
1: राम।
0: राम।

अभी ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अभी आपने ये गीत सुना यसुदास, बंशरी सेन गुप्ता और हेमलता की आवाजों में। फिल्म का नाम था दुल्हन वही जो पिया मन भाए।

0: गीत संगीत था रविंद्र जैन का।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आपने चितचोर फिल्म का गीत सुना यशुदास की आवाज में। गीत संगीत था रविंद्र जैन का। और लीजिए अब हम आपको सुनवाते हैं यशुदास की आवाज में सुनैना फिल्म का गीत।

सुनैना फिल्म का गीत आपने सुना यशुदास की आवाज में, गीत संगीत रविंद्र जैन का था। और लीजिए अब सुनिए साजन बिना सुहागन फिल्म का गीत।

साजन बिना सुहागन इस फिल्म का गीत आपने सुना यशुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। शब्द रचना से इंदिवर की, संगीत दिया था उषा खन्ना ने। और लीजिए अब सुनिए स्वामी फिल्म का गीत यशुदास की आवाज में।

फिल्म का गीत सुना आपने। यशुदास की आवाज में अमित खन्ना के लिखे गीत को संगीत दिया था राजेश रोशन ने। और लीजिए अब सुनिए टूटे खिलौने फिल्म का गीत।

टूटे खिलौने, इस फिल्म का गीत आपने सुना यशुदास की आवाज में। शब्द रचना थी कैफी आजमी की और संगीत दिया था बप्पी लहरी ने। और अब सुनते हैं सावन को आने दो फिल्म का गीत।

0: सावन को आने दो। इस फिल्म का गीत आपने सुना यशुदास की आवाज में। शब्द रचना थी पी पंकज की और संगीत दिया था राजकमल ने।
1: सुनो ना।
2: हाँ।
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: और लीजिए फिल्म संगीत के आखिर में हम आपको सुनवाते हैं यशुदास की आवाज में अपने पराये फिल्म का गीत, जिसे लिखा है योगेश ने और संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

अपने पराये फिल्म का गीत आपने यशुदास की आवाज में सुना। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब

0: जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है, इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़ी

0: सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
1: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देशभर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, नफ के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या शून्य सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमरीका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमरीका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर

0: संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस कर दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्वकप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सम्पन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: रहमान मियां, रहमान मियां है।
1: कौन है?
0: रहमान मियां के नाम कचहरी से नोटिस आया है।
1: रहमान चौपाल की तरफ गए थे, आते ही होंगे।
2: किसे पूछते हैं सरकार?
0: रहमान मियां के नाम कचहरी का नोटिस है। क्या तुम ही हो रहमान?
2: जी हाँ जमादार साहब, क्या लिखा है इसमें आप ही बता दें।
0: वीर बाहू सिंह जिमीदार साहब ने इजाफा लगान का दावा दायर किया है। तुम्हें पेशी पर पहुंचना है कचहरी में इसी महीने की 25 तारीख को।
2: जी बहुत अच्छा।
0: अभी 3 हफ्ते हैं और हाँ ये लो दस्तखत कर दो, ये लो कलम।
2: जी रहमान बकलम खुद, ये लीजिए।
0: खूब, तुम तो पढ़े लिखे मालूम होते हो।
2: बस इतनी ही उर्दू आती है जनाब।
0: अच्छा तो मैं चलता हूँ,
2: कुछ देर सुस्ता लीजिए, शरबत पीकर जाइएगा।
0: नहीं नहीं अभी मैं जल्दी में हूँ, 2-3 और गांव के संबंध भी देने।
2: सलाम जमादार साहब।
0: सलाम।
3: अब तुम वकील करोगे बेटा?

0: और कर ही क्या सकता हूं अम्मा, इधर फसल खराब हो गई, उधर से ये खर्चांग पड़ा है।
1: इतने रुपए कहां से लाओगे?
0: कुछ न कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा अम्मा।
1: बहू से पूछ देखो, शायद उसके पास कुछ रुपए निकल आए।
2: अम्मा मेरे पास 4 चूड़ियां थी, वो पिछले साल लगान अदा करने के वक्त गिरवी चली गई, उधार ले लूं ना कहीं से?
3: उधार किससे ले लूं? महाजन ज्यादा सूद लेते हैं, जमानत भी लेते हैं।
2: घर में ले देकर ये 2 बैल हैं।
3: बैलों के बगैर किसान क्या खेती करेगा?
2: फिर इस गाय ही को?
1: बहू
0: तुम जानती हो मुझे जान से भी बढ़कर है।
2: तो फिर करोगे क्या?
0: कुछ तो करना ही होगा।
2: या अल्लाह।

0: अरे हाँ हाँ, हम समझ गए, तुम गेहूँ बेचना ही नहीं चाहते, यह बेकार हम लोगों के साथ मजाक कर रहे हो।
1: बेचना न होता तो इसे साथ ये गांव गांव न घूमता।
2: अरे लाला छोड़ गया को, भगैया मुझे थमा, ये ले 30 रुपए नगद है, ला रस्सी दे। अरे खाटा क्या सोचा, ला
1: रस्सी, गौ कुछ ही नहीं लेते हो भाई,
2: पैसे दे रहे हैं।
0: अरे मैं इस गाय के 32 रुपए लगाता हूँ, बोल क्या इरादा है, मैं तुम चुप रहो, मुझे भगवान का नाम दे रहा बात ही।
3: अरे ऐसी भीड़ लगा रखी है,
0: आइए आइए मुख्तार साहब, सलाम
2: सलाम।
0: हुजूर, ये शख्स अपनी गाय बेचना चाहता है, मैंने 32 रुपए दाम लगाया है, लेकिन ये हामी नहीं भरता।
2: हुजूर 34 तो मैं दे दूं, ये बेचने वाला तो बने।
3: गाय तो तुम्हारी मोहिनी रूप है।
2: हुजूर ये देखिए,
4: गर्दन भारी पुट्ठे
1: और दूध से भरे हुए थन। हुजूर
3: बाबा बछड़ा भी सुंदर है।
2: हुजूर दाम लगाएं, गाय आपकी।
3: क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो?
1: रहमान हुजूर, पचौली में रहता हूँ, पास के गांव में।
3: दूध देती है?
1: हाँ हुजूर, एक बेला में 3 सेर दूध लीजिए, इतनी सीधी हुजूर की बच्चा भी दूध ले।
2: बच्चे पैर के पास खेलते रहते हैं हुजूर, पर क्या मजाल की सिर भी हिलावे।
3: क्या दाम मांगते हो?
2: 50 रुपए हुजूर।
3: हमें तो 35 का माल जचता है।
1: माल को देखते हुए 50 मैंने ठीक ही मांगे हैं हुजूर, इसके साथ की गाय इधर 50 गांव में नहीं है हुजूर।
3: देखो अब सौदा तय करने की बात करो, हम 35 से ज्यादा नहीं देंगे, बोलो हाँ या नहीं।
2: क्या कहे हुजूर,
1: चलिए गाय आपकी हुई, आपके साथ चलकर आपके घर पहुंचा देता हूँ। चलिए हुजूर।
3: रहमान एक बात बताओ, तुमने 40 में गाय क्यों नहीं दी?
2: हुजूर आप हिंदू हैं, इसे लेकर आप पालेंगे, इसकी सेवा करेंगे।
1: ये सब कसाई हैं, इनके हाथ में 50 रुपए में भी कभी नहीं बेचता।
2: आप बड़े मौके से आ गए हुजूर,
1: नहीं तो ये सब जबरदस्ती गांव को उनसे छीन ले जाते हुजूर।
3: तुम्हें रुपयों की कोई खास जरूरत नहीं थी?
1: थी सरकार, बड़ी विपत में पड़ गया हूँ, रुपयों की जरूरत नहीं होती तो घर की इस लक्ष्मी को कभी नहीं बेचता हुजूर।
3: लेकिन वो लोग रुपए भी ज्यादा दे रहे थे।
1: इसे अपने हाथों से पाला है हुजूर, कसाईयों के हाथ में कैसे बेच देता।
3: गाय को तुमने प्यार से रखा है, वो तो दिखता है।
1: सरकार इसे जितनी खली देंगे ना उतना ही दूध देगी, भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होता। सरकार
3: तुम फिक्र मत करो, इसकी खिलाई पिलाई में कसर ना होगी।
1: हुजूर एक अर्ज और है।
3: क्या?
1: अपने चरवाहे को डांट दीजिएगा, इसे मारे पीटे नहीं हुजूर।
3: अरे तुमसे कहा ना है, तुम अब फिक्र मत करो। हाँ
1: जी सरकार।
3: बस यही

0: आपने ढाका बाला मकान हमारा है
1: जी सर
0: आजा
1: जी बहुत
0: ये कोठरी इस सामने वाली गऊ का घर है आ जाओ
1: जी
0: बस यही बांधो खूंटे से है और देखो इस खूंटे से बच रहे हो
1: जी बहुत अच्छा
2: बहुत साफ कोठरी है हुजूर मच्छर कीड़ा भी नहीं है
0: ये लो रुपए गिन लो
2: जी दस दस बीस दस तीस पांच पैंतीस ठीक है सरकार ठीक है अच्छा अब चलो सलाम हुजूर
0: अजी सुनती हो कहाँ हो
3: आई हाँ कहो
0: एक नायाब चीज लाया हूँ आज
3: क्या
0: गऊ साक्षात कामधेनु है कामधेनु
3: सच
0: एक मुसलमान बेच रहा था गाय ज्यादा की है पर वो बेचारा जरूरतमंद था 35 में बांध गया
3: वो कैसे
0: गऊ उसने कसाईयों के हाथ नहीं बेची
3: ओ
0: वो उसे 10-5 ज्यादा दे रहे थे मेरे हाथों बेची क्योंकि मैं उसे प्यार से रखूंगा
3: जानवर की मोहब्बत के पीछे उसने नुकसान उठाना अच्छा समझा नेक आदमी था
0: अरे नेकी किसी एक जात या कौम की बपौती थोड़ी होती है
3: गौ गाय घर में बंधी है ना
0: आओ चलो दिखाते
3: चलो
0: अरे आओ
3: चलो चल कर देखे
0: मसला भी बड़ा सजीदा और सुंदर है
3: अच्छा
0: हाँ
3: चलो
1: सलाम हुजूर
0: सलाम तुम ही ने मेरे हाथ गऊ बेची थी ना
1: जी हाँ हुजूर जी हाँ
0: रहमान है ना तुम्हारा नाम
1: बजा फरमाया हुजूर
0: कैसे आना हुआ
1: हुजूर बड़ी जंग के बाद अब हज का रास्ता खुला है अम्मा बूढ़ी है हज करना चाहती हैं हुजूर पर मेरे पास उतने रुपए नहीं है सरकार आप 200 कर्ज दे दें हुजूर तो काम चल जाएगा
0: रुपए तो मैं तुम्हें दे दूंगा लेकिन एक बात समझ लो
1: जी हुजूर
0: मैं वादे पर रुपए लेता हूँ अगर वादा पूरा न किया तो तुम जानो फिर मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा समझे
1: हाँ हुजूर मैं वादे पर लौटा दूंगा हुजूर
0: अच्छा तो बताओ कब दोगे
1: सरकार 2 साल की मियाद रख लें हुजूर
0: ठीक लेकिन अगर 2 साल में नहीं दोगे तो ब्याज की दर 25 रुपए से 32 रुपया सैकड़ा हो जाएगी
1: ठीक है सरकार ठीक है
0: अलबत्ता तुम्हारे साथ इतनी मुरव्वत करूंगा कि नालिश नहीं करूंगा
1: जो चाहे कीजिएगा हुजूर हुजूर के हाथ में ही तो हूँ
0: दस्तखत कर सकते हो
1: हुजूर बस इतनी ही उर्दू आती है
0: ठीक है यहाँ पे दस्तखत करो
1: जी हुजूर रहमान बकलम खुद ये लीजिए हुजूर
0: गवाह तुम नहीं लाए हो खैर वो मैं करवा दूंगा ये रुपए लो 180 है
1: 180
0: हाँ हाँ 180 कुछ लिखाई की कुछ नजराने की कुछ दलाली के सब मिलाकर 20 रुपए कट गए हैं
1: आपकी मेहरबानी है सरकार अच्छा हुजूर चलो सलाम हुजूर
0: सलाम
1: छोड़ मुझे
4: चल
1: क्या
4: क्या बना आया अरे सरकार के पैसे ऐसे कोई नहीं हड़प कर सकता चलता है चल
1: चल रहा हूँ भाई धक्के तो ना दो
4: अरे अच्छा अच्छा चल
5: सरकार रहमान को ले आया हूँ
1: सलाम हुजूर
0: क्या सलाम हुजूर 2 साल की मियाद खत्म हो गई तुम्हें खुद आने की तौफीक ना हुई बुलवाने पर आए हो क्या तुम्हारे 2 साल अभी पूरे नहीं हुए
1: हुजूर
0: लाओ रुपए कहाँ हैं
1: हुजूर बड़ी गर्दिश में हूँ
0: अरे गर्दिश में तो सारी दुनिया है मैं पूछता हूँ रुपए कहाँ हैं रुपए
1: अम्मा जब से हज करके आई है हुजूर तभी से बीमार पड़ी हुई है रात दिन उन्हीं की दवा दारू में दौड़ते गुजरता है हुजूर जब तक जीती हुजूर कुछ सेवा कर दूं

0: पेट का धंधा तो जिंदगी भर लगा रहता है।
1: बीमारी हारी सबके साथ लगी रहती है रहमान, लेकिन कर्ज का रुपया वादे पर ही लौटाया जाता है।
0: हुजूर सही फरमाते हैं, बिल्कुल सही फरमाते हैं, पर अब की कुछ फसल नहीं हुई हुजूर, ऊख पानी बिना सूख गई, सन खेत में पड़े पड़े सूख गया, ढोने की मोहलत ही नहीं मिली हुजूर, रबी के लिए खेत जोत न सका, परती पड़े हुए हुजूर।
1: इस सबसे हमें सरोकार नहीं है, तुमने वादा खिलाफी की है और ऊपर से उज्र कर रहे हो कि
0: अल्लाह ही जानता है हुजूर किस मुसीबत के दिन कट रहे हैं। हुजूर के रुपए की एक एक कौड़ी अदा कर दूंगा हुजूर, हुजूर साल भर की मोहलत और दे दीजिए, अम्मा अच्छी हुई और मेरे सर की बला चली हुजूर।
1: एक साल की मियाद बढ़ा दूंगा पर ब्याज 32 रुपए सैकड़ा हो जाएगा। हाँ
0: जैसी हुजूर की मर्जी, जैसी हुजूर की मर्जी।
1: ठीक, अब तुम जा सकते हो।
0: हुजूर भाई बाप है, अन्नदाता है। सलाम हुजूर।
1: सलाम।

0: लाला ने क्या कहा?
1: कर्ज की मियाद खत्म हो गई थी अम्मा, अपने रुपए तलब कर रहे थे।
0: सख्त सुस्त तो नहीं कहा?
1: नहीं नहीं अम्मा, लाला खानदानी आदमी है, मेरे कहने पर एक साल की मोहलत और देती है।
0: बेटा, मेरी वजह से तुम बहुत बर्बाद हो गए।
1: नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं।
0: खुदा तुम्हें बरकत दे, अब मेरा वक्त आ गया, गम ना करना।
2: अम्मा,
0: बेटा।
2: अम्मा, आप जी छोटा ना करें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी।
0: नहीं नहीं बहू, अब और ज्यादा दिन बोझ नहीं, अब बोझ नहीं बनना चाहती।
1: एक और पानी पी लो अम्मा, जी संभल जाएगा। ये लो अम्मा, पानी पी लो।
0: तुम लोगों ने मेरी
2: अम्मा,
1: अम्मा, अम्मा,
2: अम्मा,
1: अम्मा,

0: सलाम हुजूर।
1: तुम क्या करने आए हो?
0: क्यों मेरे पीछे पड़े हो?
1: मुझे इस वक्त बातचीत करने की फुर्सत नहीं है।
0: अच्छा सरकार, मैं फिर आऊंगा।
1: अरे सुनो
0: जी,
1: जाते कहां हो?
0: सरकार,
1: कैसे आए थे? क्या कुछ काम था?
0: नहीं सरकार, यूं सलाम करने आया था हुजूर।
1: फारसी की एक कहावत है रहमान, किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता। क्या मतलब है कहो?
0: हुजूर, अम्मा।
1: क्या, तुम्हारी अम्मा?
0: हुजूर, आज तीसरा दिन है।
1: रो मत, रोने से क्या फायदा है, सब्र करो। ईश्वर को जो मंजूर था वो हुआ।
0: हुजूर, कुछ अर्ज करने आया हूं पर हिम्मत नहीं पड़ती। हुजूर,
1: कहो क्या बात है?
0: हुजूर, अम्मा के दफन कफन का इंतजाम पड़ोसियों से उधार लेकर किया। अब अल्लाह जानता है कहीं से एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है हुजूर। और काम कुछ ऐसा आन पड़ा है हुजूर कि न करूं तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा हुजूर।
1: ऐसा क्या करना चाहते हैं
0: हुजूर? अम्मा की रूह की राहत के लिए फातिहे की जरूरत है, कब्र बनवानी है, बिरादरी का खाना करना है, गरीबों को खैरात देनी है, कुरान की तलावत।
1: जब रुपए हाथ में आए ये काम तब कर लेना।
0: सरकार, बिरादरी में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं बहुत मजबूरी में।

0: आपके पास आया हुजूर, जिंदा रहूंगा तो एक एक कौड़ी मैं सूद की अदा कर दूंगा हुजूर। इस घड़ी ना ही ना कीजिएगा सरकार, ना ही ना कीजिएगा।
1: तुम्हें कितने रुपए की जरूरत है
0: हुजूर? सरकार 200 मिल जाए तो काम चल जाएगा।
1: देखो रहमान, रुपए तो तुम्हें दे देता हूँ
0: सरकार,
1: लेकिन इस बार वादे पर न लौट आए तो मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा।
0: अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा हुजूर। कौड़ी कौड़ी
1: यहाँ दस्तखत करो।
0: आपकी बहुत मेहरबानी है,
1: ये लो कलम।
0: बहुत मेहरबानी है रहमान बकलम खुद, ये लीजिए हुजूर। अच्छा हुजूर, अब चलो। सलाम हुजूर।
1: सलाम
0: सलाम।
1: अगले हफ्ते अम्मा को गए हुए 2 बरस हो जाएंगे।
2: अम्मा होती तो इस बार की ऊख देकर कितनी खुश होती।
1: अल्लाह के फजल से ऐसी ऊख लगी है कि हाथ ही भी घुसे तो समा जाए।
2: ए, तुमने कलेजा तोड़कर मेहनत भी तो की है, दिन को दिन और रात को रात ना समझा।
1: मैंने ही क्या, तुम और दोनों लड़के भी तो जी जान से लिपट गए थे।
2: सुनो।
1: हाँ बोलो।
2: आपके लाला का कर्जा चुक जाएगा?
1: आपकी ज्यों ही गुड़ के रुपए हाथ में आए, सब के सब ले जाकर लाला दाऊ दयाल के कदमों पे रख दूंगा।
2: ऐसे कितने रुपए मिल जाएंगे?
1: अरे हारे दर्जे 700 तो कहीं नहीं गए। लाला चाहेंगे तो उसमें से 2-4 रुपए निकाल कर दे देंगे तो ले लूंगा, नहीं तो अबकी साल और चूनी चोकर खाकर काट लूंगा।
2: लेकिन वादे की मियाद तो अगले हफ्ते पूरी हो जाएगी ना?
1: अरे उन्हें ऊख की खड़ी फसल के बारे में बताकर गुड़ बिकने तक की मोहलत मांग लूंगा।
2: अल्लाह करे फसल सही सलामत गुड़ साल में आ जाए।
1: हाँ कहावत भी है, खेती की हालत यतीम बच्चे की सी है, पानी और हवा मुआफिक हुए तो अनाज के ढेर लग गए, और अगर इनकी मेहरबानी ना हुई तो लहलहाते खेत बेवफा दोस्त की तरह दगा दे जाते हैं।
2: और फिर ओला पाला सूखा बाढ़ दीमक आंधी से बची तो खलिहान में आती,
1: और खलिहान से आग और बिजली दोनों का ही बैर है।
2: बस ये समझ लो कि इतने दुश्मनों से बची तो फसल,
1: नहीं तो
2: फैसला।

0: रहमान ले एक दो दम तू भी लगा ले।
1: लाओ काका लाओ।
2: वाह वाह रहमान, अब के तेरी ऊंख बड़ी घनी उठी है भैया।
0: बस किसान की मेहनत का फल तो फसल ही है भैया।
2: ये तो सच है काका, मेहनत में रहमान की तरफ से कसर नहीं हुई।
0: तब देख ही लो कैसी जोरदार ऊंख है।
3: ये लो, तुम भी दो चार दम लगा लो भैया।
1: लाओ भैया लाओ।
3: भैया तुम बता सको ये कितने की फसल है?
1: ऊख तो भारी है, बहुत गुड़ निकलेगा।
2: भैया मैं तो समझू हूँ 800 का बिक जाएगा।
3: पर मंडी में नया गुड़ पहुँचते ही भाव गिर जाते हैं, ये मुश्किल है।
2: अरे कम से कम 700 750 तो कहीं नहीं गए।
3: तुम ठीक कहते हो भैया, ठीक कहते हो।
1: आज बड़ी ठंडी हवा चल रही है रहमान।
3: अगहन है, अब ठंड न पड़ेगी तो कब पड़ेगी। मैंने इसी मारे ऊख के सूखे पत्तों की आग जला ली थी।
0: चिलम ताजा करने के काम भी किया है।
3: तुम ठीक कहते हो काका।
0: अरे अरे क्या कर रहा है रहमान, आपको मत छोड़।
2: अरे अरे हवा से जलता हुआ पत्ता उड़ गया। अरे कमबख्त ऊख के बीचों बीच गिरा है। अरे सत्यानाशी तूने काहे को आग जलाई ऊख के पास।
3: अरे खेत में लग गई। अरे इसे बुझाओ किसी तरह से। अरे उधर तो ऊख तोड़ने दे।
2: अरे

0: ये आग नहीं है, पैदी गुस्सा है। इस आग को कोई नहीं बुझा सकता।
1: या अल्लाह, ये मुझे कौन से गुनाह की सजा दी?
2: रहमान भैया, रहमान भैया सब्र करो। उसकी मर्जी के आगे किसकी चली?
0: जो होना था सो हो गया। किस बुरी तरह रूप चल रही?
1: मैं तो हो गया।

0: ये तो लाला का चपरासी आ रहा है, अब क्या होगा? खुदा अब तू ही इस मुसीबत को आसान कर, कहीं आते ही गालियां न देने लगे। या मेरे अल्लाह, कहां छुप जाओ, कहां छुप
1: जाओ। रुपए लेकर देना नहीं चाहते? मियाद कल गुजर गई, जानते हो सरकार को एक दिन की भी देर हुई और उन्होंने नालिश ठोकी, बेभाव की पड़ेगी।
0: यहाँ का हाल तो देख रहे हो ना भैया।
1: अरे ये हाल हवाल सुनने का काम नहीं है, ये चकमे किसी और को देना। 700 रुपए ले चलो और चुपके से गिनकर चले आओ। हाँ
0: देखते हैं जमादार साहब, सारी भूख जल गई, नहीं तो अल्लाह जानता है आपकी कौड़ी कौड़ी बेबाक कर देता।
1: मैं ये कुछ नहीं जानता, तुम्हारी भूख का किसी ने ठेका नहीं लिया। अब चलो, सरकार बुला रहे हैं।
0: मेरा हाथ छोड़ दो भैया।
1: अरे चल,
0: मुझे मत
1: कर। चल चल चल,
0: मैं खुद चल रहा
1: हूँ। चलता है या मैं? चल चल चल चल चल
0: हुजूर, मुझे बचाइए, मुझे बचा लीजिए हुजूर।
2: अरे ये क्या करते हो, मेरे पांव मत पकड़ो, छोड़ो।
0: मुझे अब इन्हीं कदमों का सहारा है हुजूर। खुदावन बड़ी विपत पड़ी हुई है, अल्लाह जानता है कहीं का नहीं रहा हुजूर, कहीं का नहीं रहा।
3: क्या सब भूख चल गई?
0: सरकार जैसे किसी ने खेत में झाड़ू लगा दी हो। सारे गांव से बढ़कर ऊख लगी हुई थी सरकार, गरीब परवर ये गैबी आफत ना पड़ी हुई होती तो हुजूर से उरीन हो जाता।
3: अब क्या सलाह है, देते हो कि नालिश ही कर दूं?
0: हुजूर मालिक है, जो चाहे करे। मैं तो इतना ही जानता हूँ, हुजूर के रुपए सर पर हैं और मुझे कौड़ी कौड़ी देनी है। अपनी सोची नहीं होती हुजूर, दो बार वायदे किए, दोनों बार झूठा पड़ा, अब वायदा नहीं करूंगा हुजूर। अब जो कुछ मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों में रख दूंगा। मेहनत मजदूरी से पेट और तन काट कर जिस तरह होगा आपके रुपए भरूंगा हुजूर, आपके रुपए भरूंगा।
3: तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी आरजू कौन सी है?
0: यही हुजूर कि आपके रुपए अदा हो जाएं। सच कहता हूँ हुजूर, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है हुजूर।
3: उठो रहमान, समझ लो मेरे रुपए अदा हो गए।
0: अरे हुजूर ये कैसे समझ लो, यहाँ न दूंगा तो वहां देने पड़ेंगे हुजूर।
3: नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजमाता था।
0: सरकार?
3: हाँ रहमान, हाँ।
0: नहीं नहीं सरकार, नहीं, इतना बोझ सिर पर लेकर नहीं मरूंगा हुजूर।
3: कैसा बोझ, मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ भी आता नहीं, और कुछ आता भी था तो मैंने माफ कर दिया, यहां भी वहां भी। अब तुम मेरे एक पैसे की भी देनदार नहीं हो।
0: पर हुजूर, मैंने तो आपसे रुपया कर्ज के तौर पर लिया था हुजूर।
3: नहीं रहमान, असल में तुमसे कर्ज मैंने लिया था, वही अदा कर रहा हूं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मेरी कर्जदार नहीं हो।
0: नहीं हुजूर, नहीं।
3: तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान न किया हो, पर असल में वो मेरी धर्म पर एहसान था।
0: हुजूर,
3: मैंने भी तुम्हें धर्म के काम ही के लिए रुपए दिए थे, बस हम तुम दोनों बराबर हो गए।
0: सरकार।
3: और रहमान, तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाहे लेते जाओ, तुम्हारी खेती के काम आएंगे।
0: हुजूर को इस नेकी का बदला खुदा देगा, मैं तो आज से अपने आप को आपका गुलाम समझूंगा।
3: नहीं रहमान, नहीं, तुम मेरे दोस्त हो।
0: नहीं हुजूर, गुलाम।
3: गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे

0: कहते हैं, तुम बहुत पहली मुक्ति धन अदा कर चुके हो रहमान, अब भूल कर भी ये लफ्ज मुंह से न निकालना मेरे दोस्त।
1: सरकार, खुदा आपको सलामत रखे हुजूर, खुदा आपको सलामत रखे।

शक्ति धन। अभी आपने मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी का ये रेडियो नाट्य रूपांतर सुना। रूपांतर श्री बी एस भटनागर ने किया था। निर्देशक थे सुशील बैनर्जी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री बाकर मुज्तबा, राजेंद्र वर्मा, रईस मिर्जा, एच के वैश्य, एल एन भारद्वाज, आर एच चिश्ती, कारी मोहम्मद इलियास, मुमताज मिर्जा, जया मेहता और ललिता शंकर।

0: मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम मन भावन।
1: बिजलियां चमके कभी

ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। एस एच बिहारी के लिखे गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद किया था हमारे इन श्रोताओं ने। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने। इसी गीत को पसंद किया था एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना और लव्या ने। सहारनपुर से पसंद किया था सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया और इब्राहिम ने। और इसी गीत को पसंद किया था मुल्लापुर दारबा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन और शुभचंद्र ने। गुन्नौर से पसंद करते हैं आदिल कुमार, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली और उनके परिवार के लोग। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं गगनदीप थांदी और साथ में हमें ये मेल किया है पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा ने। तो लीजिए हमारे श्रोताओं की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

इसी गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता थे पंजाब फजिल का पंजाब से भूषण खेरा, विशाल खेड़ा, विशु खेरा, लड्डी खेरा, शालिनी खेरा, टिवांशी खेरा और वानी खेरा और उनके परिवार के लोग। इसी गीत को पसंद करने के लिए हमारे पास मेल किया था दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने बीकानेर राजस्थान से, माफ कीजिए मेरठ कैंप से, बीकानेर राजस्थान से पसंद किया था रानी और बिट्टू झांप ने। हमें इस गीत के लिए मेल आया था हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोटखे, नंदा बोटखे और हनुमान बोटखे का, अंबेडकर नगर चौक बाकोडी से उत्तम जमदाड़े और स्वराज जमदाड़े का। इसी गीत को पसंद किया था सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा और उनके परिवार के लोग। पसंद किया था इस गीत को गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ने। इसी गीत को पसंद किया था हमारे श्रोता पद्मा टाकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह ने। और लीजिए हमारे श्रोताओं की पसंद का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं।

साहिब फिल्म का आपने गीत सुना किशोर कुमार की आवाज में। अनजान के लिखे गीत को संगीत दिया था बप्पी लहरी ने और पसंद किया था हमारे इन श्रोताओं ने। इस गीत को हमारे श्रोता पसंद करने वाले थे पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, बेबी अरीबा हबीबा और उनके परिवार के लोग।

अभी आपने ये गीत सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम था आप तो ऐसे ना थे। निदा फाजली के लिखे गीत को संगीत दिया था उषा खन्ना ने और पसंद किया था हमारे इन श्रोताओं ने। पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्णा देवांगन ने। इसी गीत के लिए हमारे पास मेल आया था। पसंद करने वाले हमारे जो श्रोता हैं, ग्राम रजौनी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और उनके परिवार के लोग। इसी गीत को सुनना चाहा था मेल के माध्यम से हमारे श्रोता रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जीशान खान ने।

हनुमानगढ़ राजस्थान से। हमें इसी गीत की फरमाइश की थी जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने। तो लीजिए हमारी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दो दिलों की दास्तान। इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में। अनजान के लिखे गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और पसंद किया था हमारे इन श्रोताओं ने। अलिका डब्बाली से बसंत सिंह चांद, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी और उनके परिवार के लोग, बठिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और उनके मित्र। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दतरेंगी से भागवत वर्मा ने। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से पसंद करने वाले हमारे श्रोता थे अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रश श्रीवास्तव। इसी गीत को पसंद किया था अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव ने। स्टार रेडियो श्रोता संघ रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से पसंद किया था जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक ने। बेमेतरा नया पारा से पसंद करने वाले श्रोता ईश्वरी प्रसाद साहू, भावना साहू, नीलेश कुमार साहू और श्रद्धा साहू। कटघोरा छत्तीसगढ़ से पसंद किया था चंद्रपाल सिंह, शकुंतला, मरोजपाल सिंह, लखनपाल सिंह और दिनेश पाल सिंह। भिलाई स्टील सिटी से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिलाक श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर और ज्योति श्याम कुंवर ने। कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से प्रताप पांडे, रेखा पांडे, लोकेश पांडे, भाग्यश्री पांडे और शौर्य पांडे ने। इसी गीत को पसंद किया था नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। और फरमाइश का ये अगला गीत।

0: ये है मुंबई मेरी जान। इस फिल्म का गीत आपने सुना कुमार सानू की आवाज में। इंदिवर के लिखे गीत को संगीत दिया था जतिन ललित ने और पसंद किया था हमारे इन श्रोताओं ने। कोटवा, नारायणपुर, बाबापट्टी, बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय और अमित कुमार राय। दुबिहा, नेवादा, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय ने। शेरपुर कलां, गाजीपुर से अवधेश, प्रीति और नवनीत राय ने। आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहरा जहां ने। जिला रायसेन, खापरखेड़ा से तुलसीराम साहू, मुकेश कुमार साहू, आरती, ममता और गोमती ने। छत्तीसगढ़, देवरी भाटापारा से पसंद करने वाले श्रोता गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। छत्रपति नगर, संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने। मोरक्का माफी, जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस पटेल और मन पटेल ने। बिलसराया से रामकेश चक्रवर्ती, पुष्पेंद्र सोनम, गोल्डी, दीप्ति अनुज और ओमजी चक्रवर्ती ने इसी गीत को पसंद किया था। बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर और तनु करमरकर ने। और इसी गीत को पसंद करने वाले श्रोता थे महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे। खुर्दी रोड, मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

अभी आपने ये गीत सुना आशा भोसले की आवाज में। शब्द रचना थी नूर देवासी की और संगीत दिया था ओपी नैयर ने। पसंद किया था हमारे इन श्रोताओं ने। कोटरा जिला जालौन से अमित तिवारी, पूजा तिवारी, राम बिहारी शास्त्री, इंदिरा विहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, वसीम नूरजहां और वसीउल्लाह नूरजहां, राजनांद गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इरफान आसमा और इमरान आसमा ने

मिल रोड रायगढ़ से रेशमा सोनम तिवारी और अदीवा तिवारी ने, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा और परिवार के लोग, पुरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन से पसंद किया था विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पंवार, दीक्षा और कुश मूड़त ने, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता ने, और इसी गीत को पसंद किया था सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मंडू प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान ने। और लीजिए हम आपको कार्यक्रम के आखिर में सुनवा रहे हैं शबनम फिल्म का गीत, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने, शब्द रचना है जावेद अनवर की और संगीत दिया है उषा खन्ना ने, पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतेक विरक और मीका विरक ने, ग्राम वुडगहन छत्तीसगढ़ से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति, ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा और रेखा धनेश्वरी वर्मा, सारा गांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा, आयुषी और कृत वर्मा ने। इसी गीत को पसंद किया है डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये ने। तो लीजिए हमारे श्रोताओं की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं मन भावन कार्यक्रम की ये आखिरी पेशकश।

0: इस गीत के साथ ही मनभावन कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडिया वेव और न्यूज ऑन EIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और

अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देशभर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमरीका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर मालिक गलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।